रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 सितंबर 2026। सुबह के 5:53 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के संबंध में।

हमेशा की तरह हर घंटे मुख्य समाचार तो हम आपके लिए लाएंगे ही, साथ ही अब से कुछ ही देर में यानी मुख्य समाचारों के तुरंत बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुप्रभात और 6:30 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण का।

प्रातः 7 बजे मुख्य समाचारों के बाद आपके लिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर हाजिर होंगी खुशबू घई और 8 बजे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आपके साथ होंगे रविंद्र सिंह।

9 बजे मुख्य समाचारों के बाद दिल के तराने गाने नए पुराने में खुशबू गई एक बार फिर होंगी आपके साथ और 10 बजे समाचारों के तुरंत बाद वेस्टर्न म्यूजिक मैचलेस म्यूजिक आर आप एंजॉय करेंगे विदुषी वत्स के संग।

11 बजे मुख्य समाचार और उसके तुरंत बाद बॉलीवुड ट्रेल्स में आपके साथ होंगी आरती मल्होत्रा और 12 बजे पहले मुख्य समाचार और फिर एंजॉय कीजिएगा वेस्टर्न म्यूजिक प्लेट कूल विदुषी वत्स के साथ।

श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। 6 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे आप।

अब आप सुनेंगे मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे इंडिया वॉल्स 2026 में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह 8 से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। वे कल गृह मंत्रालयों के विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय और विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने अपने ई नाविक पोर्टल पर एक सी फेरर ट्रैकिंग मॉड्यूल लॉन्च किया। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने व्यापक तैयारियां शुरू की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस महीने की 9 और 10 तारीख को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी किए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। और अब खेल समाचार। महिला एशिया कप 2026 के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। पिकलबॉल वर्ल्ड कप में भारत ने वियतनाम के डॉक्टर नांग में दूसरे दिन लगातार मैचों में चीन और फिलीपींस को हराकर टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। और अंत में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

आपकी वाणी आकाशवाणी। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुप्रभात में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र सिंह, और हमेशा हमारा हर आरजे यहां पर जो भी बैठता है आपके साथ सुबह 6 बजे के सुप्रभात कार्यक्रम में कोई ना कोई ऐसा विषय लेकर आता है जो हमसे और आपसे सरोकार रखता है और हमें मजबूर कर देता है सोचने के लिए कि भाई हम असल में हैं क्या। ईश्वर की बनाई वो कृति जिसने कुछ भी करने की अगर ठान ली ना तो कुछ भी कर जाएंगे। और आज विषय है कि भाई साहब सफलता की क्या कोई उम्र होती है, इस पर हम बढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले जिंदगी की तरफ जब हम देखते ना तो बड़ी खूबसूरत तब नजर आती है जब हम अपना नजरिया बदलते हैं। तो चलिए जीते हैं इन पलों को, इन पलों में।

भाई जिनको जीने की कला आती है वही इस बात को कह सकते हैं कि जीते हैं चल, और जिनको कला नहीं आती वो थोड़ा सा उनको इंतजार करना पड़ता है कि जीने का सही तरीका क्या है, क्योंकि कभी कभी उम्र आड़े आ जाती है और हम दूसरों की सफलता कम उम्र में देखकर, या हमसे कम उम्र का कोई व्यक्ति अगर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ गया है तो हम उससे अपनी तुलना करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि कहाँ पीछे रह गए हम, कहाँ कमी रह गई हमें, जबकि क्या पता कि आप कुछ उससे भी बड़ा करने वाले हैं जो उसके बस की बात नहीं। इसलिए शायद आपको समय रखना है, क्योंकि बड़ी इमारत खड़ी होने में वक्त तो लगता है। इसलिए आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। इसलिए आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि भाई दूसरों की सफलता देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत करो और गौर से देखो कि आपका रास्ता कैसा है। बस कभी निराश हो तो एक जज्बा, एक आवाज दिल की जरूर सुनो कि भाई साहब किसकी तरह जोश जुनून अपने अंदर भरते हुए चलना है। मंजिल तक तो पहुंचेंगे, पहुंचेंगे कैसे नहीं, दिल में आग जो है।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: अंजी, छोटा सा ब्रेक लिया था भाई साहब, यूं गए और यूं आए, क्योंकि हमें बड़ी बेताबी रहती है आपसे बात करने की और लोगों के, हमारे जो बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो उस तरफ हमें बैठकर सुन रहे हैं, उनके संदेश भी आने शुरू हो गए हैं गुड मॉर्निंग के। तो हम आप सभी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं भाई। और अगर इस प्रातःकाल में आप जाग गए हैं, वो भी कन्हैया जी का यानी झूलेलाल की जन्माष्टमी मना के, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपका दिन और आपकी दिनचर्या दोनों ही बेहतरीन तरीके से आपने तैयार करके रखी हुई हैं। तो हम आप सभी को नमस्कार करते हैं और एक बार फिर से जो लोग अभी अभी जिन्होंने ट्यून इन किया है 102.6 एफएम रेनबो को और कार्यक्रम चल रहा है सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र। चूंकि बात उम्र की हो रही है कि क्या सफलता उम्र की मोहताज होती है, तो भाई साहब तजुर्बे उम्र से नहीं, तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से।

होते हैं, इसलिए उम्र मत देखिए कि कौन किस उम्र में अपनी सफलता की ओर पहुंच गया, बल्कि हम अपने पड़ाव तक इसलिए थोड़ा सा डिले हैं या थोड़ा देर हो रही, क्योंकि हमारा हो सकता है हमारी मंजिल बड़ी हो, हमारी मंजिल ऊंची हो, इसलिए चलिए, चलते रहिए। और कहा है ना कि वो नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, ऐसा जज्बा लो। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। और जब हमारे आप जुड़ेंगे तो हमारा आपका साथ बहुत मायने रखता है भाई साहब। इन पूरे पलों में हम और आप इस तरह से जुड़ते हैं कि अगर थोड़ी सी बैटरी उधर से कम है तो इधर से हम रिचार्ज कर देंगे।

वो अंदर सुलगती हुई वो ज्वाला थी जो हमें अपनी मंजिल की ओर लगातार धकेल रही थी। लोगों को लगा होगा कि हम स्लो हो गए। आपको भी कभी ये लगे ना कि वो तो कम उम्र में सफल हो गया और हमारी इतनी उम्र है। तो जनाब, मंजिलों तक पहुंचने के लिए उम्र नहीं, रास्ते तलाशने होते हैं। और जितना बेहतर या कठिन या संघर्ष भरा रास्ता होता है, मंजिल पर पहुंचकर खुशियां उतनी ही खूबसूरत हो जाती हैं। तो बस, अगर को कभी आपको ये लगे कि वो हमसे आगे क्यों निकल गया, तो एक बात ध्यान रखना, अपने लक्ष्य की तरफ देखना और उसकी तरफ किसका बड़ा है ना। और फिर सफलताओं में अगर देर हो जाए तो क्या हुआ, मंजिल तक पहुंचना जरूरी होता है। वो कहते हैं ना कि उम्र कम थी तो दिल बड़ा जिंदा दिल हुआ करता था, उम्र कम थी तो दिल बड़ा जिंदा दिल हुआ करता था, उम्र बढ़ती गई तो जज्बात और दिल छोटा होता चला गया। लेकिन ना भाई ना, हम कहते हैं दिल छोटा नहीं करना है, बल्कि दिल बड़ा करना है और पाना है उस मंजिल को जिसमें मेरा सब कुछ दांव पर लगा है। तो एक बार स्वाद चख लें तो फिर क्या कहने। और वैसे भी मंजिल तक पहुंचना हर किसी की बात और हर किसी के अवश्य की बात नहीं होती। पहुंचते वही हैं जिनमें जज्बा, जोश, जुनून होता है।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: छोटा सा ब्रेक, कार्यक्रम चल रहा है सुप्रभात। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र सिंह और हम तो यही कह रहे थे भाई, उम्र को मत देखे, क्योंकि किसी की सुबह भैया 6 बजे होती है तो किसी की उम्र सुबह 10 बजे, लेकिन सूरज दोनों के लिए निकलता है। तो अगर कोई अपना सपना अभी भी आपके अंदर जिंदा है, उसे सिर्फ इसलिए मत छोड़ दीजिए कि आपको लगता है कि देर हो गई। कौन जानता है आपकी सबसे बड़ी सफलता आपकी जिंदगी के अगले अध्याय में आपका इंतजार कर रही हो। भैया हम तो आपसे इतनी कहेंगे कि अगली मुलाकात जब हो तो अपनी रफ्तार को थोड़ा सा और बढ़ा लो, क्योंकि है तो चैंपियन आप, है ना। चलिए सुनिए इस गीत का।

0: तो भैया हम तो ये कहेंगे कि चैंपियन तो आप हैं और इस चैंपियनशिप का ध्यान रखिए, क्योंकि ये चैंपियनशिप जीतनी तो आपको है और जिंदगी में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी संघर्ष क्यों ना आए, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचनी है। किसी दूसरे को देखकर हमें ठीक वैसे ही नहीं सोचना कि मान लो अगर हम साइकिल पे हैं और वो बाइक पे है, तो आप ये थोड़ी ना सोचेंगे कि वो हमसे आगे निकल गया। ना भाई ना, आप अपने लिए सोचेंगे। तो इसी सोच के साथ नजर बदलिए, नजरिया बदल जाएगा। चलिए अब वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण का, इसको सुनिए, आत्मसात करिए, समझिए जिंदगी बहुत कीमती है।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के आठवें अध्याय को, जहाँ पर महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी से फिर से कुछ एक प्रश्न पूछ रहे हैं। और उससे पहले वो अपनी उत्कंठा अभिव्यक्त कर रहे हैं कि आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए हे सुखदेव जी कि मैं आसक्ति रहित मन को, यानी उस उपदेश को सुनकर मेरा मन सब जगह की आसक्ति को त्याग दे और उस आसक्ति रहित मन को मैं सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर सकूं और तब ही मैं अपना शरीर छोड़ पाऊं। यानी उस समय मानसिक स्थिति ऐसी ही हो जाए। तो आप ऐसी कथा मुझे बताइए भगवान की। और हमने ये भी सुना जहाँ उन्होंने अपने अनुभव को बांटा हम सबके साथ, जहाँ उन्होंने कहा कि जो लोग भगवान की लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं और जैसे शरद ऋतु जल का गंदलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मन के मल को भी नाश कर देते हैं। और आज एक और सुंदर बात कह रहे हैं छठे श्लोक में, जहां उन्होंने कहा धूतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथः स्वशरणम यथा। अर्थात जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वो श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को कभी नहीं छोड़ता। कितनी सुंदर बात है। तो देखिए, सारा खेल चित्त का है, हृदय का है, शुद्ध और अशुद्ध हृदय। अशुद्ध हृदय हमारा तब रहता ही है जब हम इस जगत में कोई चीज अपना बनाना चाहते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को अपना बनाना चाहते हैं, ये मेरा है, समस्या वहीं शुरू हो जाती है। क्योंकि इस जगत में सब कुछ जगत का है, भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। चाहे वो रिश्ते हो, नाते हो, धन हो, संपत्ति हो, यहीं से लिया, यहीं छोड़ के जाना है ना। तो ये भाव तो भक्ति के बिना आता नहीं है मन में, ऐसा वैराग्य आता नहीं है। इसीलिए तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि मेरे मन की समस्त आसक्तियां हट जाएं और तब मैं अपने शरीर को छोड़ूं। तो आसक्तियां हटेंगी भक्ति से, और भक्ति यानी शुद्ध भक्ति का जो लक्षण है वो यही है कि भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना है और कीर्तन करना है, कथन करना है। जो ऐसा करते हैं उनके हृदय में स्वयं भगवान आ जाते हैं। हमने पिछली बार सुना था जहां यही बताया आचार्यों ने कि भगवान को अपने हृदय में प्रकट करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस आराम से बैठकर भगवान की कथा सुननी होती है। और ये जो कथा है श्रद्धा के साथ सुननी होती है। श्रद्धा कैसे आएगी? श्रद्धा आएगी भक्तों के संग से। भक्तों का जब संग होगा तो जैसा संग वैसा रंग चढ़ेगा ही। तो धीरे धीरे धीरे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होगी और भगवान की लीला कथा सुनने की उत्कंठा पैदा हो जाएगी, उत्सुकता आ जाएगी हृदय में, और तब उस हृदय में भगवान आ जाते हैं। क्योंकि हमने सुना था कि कथाओं को सुनते सुनते भक्तों का जो भाव है भगवान के लिए वो निर्मित हो जाता है उनके संस्कारों के अनुसार। किसी का वात्सल्यमय भाव हो जाता है, किसी का अन्य कोई भाव हो जाता है। कौन से भगवत स्वरूप के लिए ये भाव है, ये तो जिस प्रकार के भक्तों का हम संग करते हैं वैसे ही भगवत स्वरूप के प्रति हमारा भाव भी बनने लगता है ना। तो जब भाव होने लगते हैं भगवान के लिए हृदय में, तो भगवान उस भाव में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं और हमारे मन का यानी भक्तों के मन का समस्त मल नाश कर देते हैं। तो जहां एक व्यक्ति इसलिए दुखी होता है कि अरे
मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ये होना था, वो होना था, ये बनाना था अपना, उसको अपना करना था, मेरे पास ये होना था, वो होना था। वहीं जो भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं वो असलियत को जान जाते हैं, वो समझ जाते हैं यहाँ तो कुछ भी अपना नहीं है। पर एक जो अपना है, जो हमेशा हमारे हृदय में थे, हैं और रहेंगे, वो हैं भगवान परमात्मा के रूप में, जहां वो उदासीन रूप में रहते हैं। लेकिन जब कोई उनका भक्त बन जाता है, भगवान के जिस भी स्वरूप का भक्त बन जाता है, तो भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं उसी स्वरूप में। तो मन का मैल नष्ट होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसे व्यक्ति खुद नहीं कर सकता। परीक्षित जी इस बात को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान ही भक्तों के मन का मल वैसे ही नाश कर देते हैं जैसे शरद ऋतु जल के गंदेपन को हमेशा के लिए मिटा देती है ना। तो जिसका हृदय इस तरह से भगवान शुद्ध करते हैं, तो वो श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता, एक क्षण के लिए भी वो छोड़ना नहीं चाहता है। कुछ भी वो करेगा भगवान से संबंधित करेगा, चाहे वो भगवान का नाम ही लेता रहे, चाहे वो भगवान की कथा सुनता रहे, चाहे वो भगवान की लीलाओं का स्मरण करे, चाहे वो अर्चन करे, चाहे वो धाम में जाए, चाहे वो परिक्रमा करे, कुछ भी वो भगवान से संबंध लेकर ही करेगा, है ना। अन्य काम भी अगर वो करेगा अपनी जीविका के लिए, तो भी वो भगवान को याद करता रहेगा, भूलेगा नहीं भगवान को। तो जो भक्त या जो जीव या जो मनुष्य भगवान की कथाओं को सुनते हैं, उनका हृदय भगवान ही शुद्ध कर देते हैं। और शुद्ध हृदय जिसका होता है, वही भगवान की महिमा को समझ पाता है, वही भगवान के सौंदर्य माधुर्य के प्रति आकर्षित होता है, वही उस माधुर्य का आस्वादन करना चाहता है, वही भगवान की सेवा को करना चाहता है, भगवान को सुख देना चाहता है। तो वो भगवान के बिना नहीं रह सकता। इसका अर्थ यह है कि अगर हम भगवान को याद नहीं करते हैं, या भगवान के चरण कमलों की तरफ हमारा आकर्षण नहीं है, तो हमारा हृदय फिर शुद्ध भी नहीं है, अशुद्ध हृदय है, अशुद्ध विभिन्न कामनाओं वासनाओं का मारा हुआ हृदय है ना। अनंत वासनाएं भरी पड़ी हैं इस हृदय में, इस मन में, इसलिए ये जो मन है वो मैला हो रखा है। तो ये जो मैलापन है, ये जीव अपनी कोशिशों से हटा नहीं सकता है, चाहे वो तपस्या करे, चाहे वो ज्ञान मार्ग का सहारा ले, चाहे वो योग मार्ग का सहारा ले, ये मैलापन हटता नहीं है। जरा सा विषय का संपर्क होता है तो ये मैलापन फिर से उभर जाता है ना। लेकिन जो भगवान के चरण कमलों का भक्त बन जाता है, भगवान की कथाओं को श्रद्धा से सुनते सुनते, कीर्तन करते करते, वो श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है। जैसे कि मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर। जैसे कि मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता है ना। कोई गया हो कहीं बाहर, गर्मी, धूप, मुसीबतें, ट्रैफिक जैम, ना जाने क्या क्या, मीटिंग, ये वो, बहुत कुछ होता है, लेकिन उस व्यक्ति को अपने घर में आके ही चैन मिलता है। चाहे घर छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं, घर में आ गया, अब कहीं कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, अब कहीं कोई मीटिंग्स नहीं है, अब कहीं भागना दौड़ना नहीं है, अब मुझे आराम से बैठना है। ये तो एक आम आदमी की बात है ना, एक आम आदमी की बात है, उसके साथ ऐसा ही तो होता है। वो यही सोचता रहता है कि कब छुट्टी हो, ऑफिस में होता है तो सोचता है कब 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे घर जाऊं। पढ़ाई करता है तो सोचता है कब बेल बज जाए। दुआएं भी मांगने लगते हैं कि अरे कहीं कोई मर जाए, कुछ हो जाए, ऐसी न्यूज आ जाए और अचानक छुट्टी हो जाए, हम घर जाएं। क्यों भाई, क्या पढ़ना लिखना क्लेश है जो ऐसी दुआएं मांगी जाती है बच्चों के द्वारा, या ऑफिस में काम करना क्लेश से

कि व्यक्ति सोचता है, देखूं तो कैलेंडर में कब छुट्टी होगी, घर में बिताएंगे समय, क्लेश है क्या? तो उत्तर है हाँ। श्री कृष्ण के अलावा, उनके संबंध के अलावा, उनकी भक्ति के अलावा सब जगह क्लेश ही है, क्योंकि इन सब चीजों को करके कोई भजन प्राप्त करे या शरीर की आवाजाही से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त करे, ऐसा नहीं होता है। तो क्लेशों से मुक्ति पाना चाहता है इंसान, पर वो ये भी नहीं जानता कि क्लेश कहते किसे हैं। अविद्या से उत्पन्न जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, वो सब क्लेश हैं। और अविद्या का मूल ये है कि इस शरीर को हमने मैं मान लिया और शरीर से संबंधित हर वस्तु को मेरा। जैसे आपसे कहा गया ना कि इस जगत में हर चीज है जो हमें मिली हुई है भोग करने के लिए। समस्या वहां आ जाती है जब हम उसे अपना बनाने का प्रयास करते हैं। मिली है, ठाकुर जी की इच्छा है, लेकिन ये अपनी नहीं है। मकान बना लिया, ठीक है, मकान बना लिया, हम इसमें रहेंगे भी, लेकिन इस मकान में मेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मकान नहीं है। भगवान ने दिया, हम रहते हैं, जब तक वो चाहेंगे रहेंगे, इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब प्रभु की कृपा है। तो ये भाव जो है वो तो बहुत मुश्किल से आता है। भाव तो यही आता है कि सब कुछ मेरा है, बस यही समस्या है सबकी, और समस्याओं की जड़ भी यही है, अविद्या। अविद्या से उत्पन्न अभिनिवेश, अविद्या से उत्पन्न द्वेष, राग, यही है क्लेश। तो श्री कृष्ण से अभिन्न कृष्ण गाथा को जो श्रवण करते हैं, कथाओं को जो श्रवण करते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और फिर वो श्री कृष्ण के चरण कमल कभी भी त्याग नहीं सकते हैं, है ना। जैसे यहां पर उदाहरण दिया गया कि कोई पथिक है, कोई व्यक्ति है, वो धन कमाने के लिए गया, विदेश गया, बाहर गया, कहीं भी गया, धन कमाया उसने खूब, और प्रचुर मात्रा में, परिपूर्ण मात्रा में उसने धन कमा लिया है, और अब वो अपने घर आ रहा है कि अब मुझे कमाने के लिए नहीं जाना, इतनी कमाई हो ही गई है कि मैं अब घर में रह सकूं। तब ऐसा व्यक्ति अपने घर में आकर शांत होता है, क्योंकि धन कमाने में बहुत समय लगा, बहुत मेहनत लगी, बहुत भाग दौड़ लगी, लेकिन अंततः धन आ गया है तो चलो अब घर में आराम से रहेंगे, ये अवस्था आ जाती है। तो यहां पर यही उदाहरण दिया गया। तो धौत आत्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द, धौत आत्मा यानी जिसकी आत्मा धुल गई है, शुद्ध हो गई है, जिसका अंतःकरण धुल गया है, शुद्ध हो गया है। धुला हुआ अंतःकरण या शुद्ध अंतःकरण भगवान की तरफ मुड़ता है, भगवान की तरफ जाता है, है ना। तो विशुद्ध चित्त का चिन्ह यहां बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं कि जिसका चित्त विशुद्ध है उसका लक्षण है कि वो श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक पल के लिए भी नहीं त्याग सकता है, है ना। और उसका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया, उदाहरण कि सर्व प्रकार के कष्ट से मुक्त होकर के पथिक जब अपने घर आकर के उसे छोड़ने की इच्छा नहीं करता, शांति प्राप्त करता है, ऐसे ही श्री कृष्ण लीला श्रवण करके जिनका चित्त पवित्र हो गया है, वो फिर देहात्म भ्रम और अहंकार जैसे क्लेश से मुक्त होकर शांतिमय श्री कृष्ण चरण कमलों का त्याग करने की इच्छा नहीं करते हैं। क्योंकि देहात्म भ्रम, देह को मैं समझना, ये तो एक भ्रम है ना भाई। देह तो जल जाती है, सड़ जाती है, राख बन जाती है, कीड़े खा जाते हैं, दबा दो तो कुत्ते और सियार उसे निकाल के खा जाते हैं। तो देह तो बहुत ही भ्रम वाली वस्तु है। देह तो एक माध्यम है जिससे हमें कुछ प्राप्त करना है, देह अपने आप में तो कुछ भी नहीं है, अर्थात माध्यम के सिवा देह तो अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है ना।

0: ये तो हमेशा रहती नहीं है, हम जगत में देखते हैं। अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति इहियम आलयम, हर सेकंड में देखते हैं लोग शरीर त्याग करते हैं, है ना। कोई मरता है, किसी को दबा दिया जाता है, कोई यूं ही बह जाता है। तो शरीर तो जड़ है, लेकिन मैं जड़ नहीं हूं। ये जो ज्ञान है ये भक्ति से ही आता है, ये ज्ञान। और तब अहंकार रूपी क्लेश से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अहंकार, ये मैं हूं, ये मेरा है, बस इसी में पूरी दुनिया लगी है, इसी के कारण युद्ध है और यही सब है। तो इनसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है जब भगवान के चरण कमलों का सहारा लिया जाए, और वो तब हो सकता है जब श्रद्धा से भगवान की कथा सुनी जाए, और श्रद्धा तब आ सकती है जब कोई भगवान के रसिक भक्तों का संग करे। याद रखिए,
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे हैं कि जो धोतात्मा पुरुष हैं, यानी जो समस्त क्लेशों से मुक्त हो गए हैं भगवान की कथा सुनते सुनते, तो ऐसे लोग अर्थात ऐसे भक्त भगवान के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागते हैं, है ना। तो अगर कोई कहे कि आप कह रहे हैं कि वही लोग शुद्ध होते हैं जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अरे योगी भी तो भगवान के ध्यान में बैठे रहते हैं, वो कथा नहीं भी सुनते तो भी तो आनंदित रहते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि देखो, योगी गण भगवान के ध्यान में आनंद निमग्न रहते भी हैं, तो भी जैसे मछली को कोई बेध दे बड़िश से, बड़िश यानी मछली को फंसाने वाला कांटा, कांटे से उसको बेध दे, और सामने उसके आहार है, तो बिधी हुई मछली जो है वो आहार को देखेगी, लेकिन बार बार वो अपने शरीर को भी देखेगी। इसी तरह से योगी गण अनेक बार अपने ध्येय पदार्थ से हिल जाते हैं, उनका चित्त हिल जाता है। तो शास्त्र में ही कहा गया है, भागवत जी में ही बताया गया है, जब कपिल जी कह रहे थे, अपनी माता देवहूति जी को बता रहे थे, तो उन्होंने कहा, कृष्ण पाद मूल त्यागी योगी धौतात्म मान्येव न तु धौतात्मेति गेयम्। यानी श्री कृष्ण के चरण कमलों को जो ग्रहण नहीं करते, जो उनका आश्रय नहीं लेते, ऐसे योगी स्वयं को धौतात्मा समझते हैं कि हम पवित्र हो गए, शुद्ध अंतःकरण हो गया हमारा, ऐसा अभिमान अगर वो करते भी हैं तो भी वो धौतात्मा नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग अगर भगवान की कथा सुन भी लें, जैसे कर्मी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी, ये लोग भी कई बार भगवान की कथा सुन लेते हैं एक साधन के रूप में, परंतु वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते हैं। कर्मी को अपने कर्म पर विश्वास होता है, ज्ञानी को ज्ञान पर, योगी को अपने योग पर, तपस्वी को तप पर, और भक्त सिर्फ भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चलता है, उसे भगवान पर विश्वास होता है ना। उसका अपना कोई बल नहीं होता, सब कुछ ठाकुर जी हैं। वो समर्पित होता है, शरणागत होता है। तो कर्मी, ज्ञानी, योगी और तपस्वियों को भगवान के चरणों में अपराधी बताया गया है, क्योंकि कई बार ये लोग भगवान के श्री विग्रह को माइक मान लेते हैं, जबकि भगवान का श्री विग्रह उनका शरीर सच्चिदानंद घन विग्रह है। यानी कि भगवान के शरीर और भगवान की आत्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। मनुष्य जैसा कुछ नहीं है भगवान में। तो अगर कोई कहे कि अच्छा मान लो जो पथिक वापस आया है, कुछ दिन बाद वो धन आदि कमाने के लिए अपने घर से चला भी तो जाता है, ऐसा भी तो देखा गया है। तो यहां पर शब्द आया है मुक्त सर्व परिक्लेशः, यानी जिन्होंने धन उपार्जन रूपी क्लेश को भी त्याग दिया है, ऐसे लोग अपने घर में जिस तरह से शांति पाते हैं, ऐसे ही हरि चरणों को आश्रय करने वाले भक्त भगवान को छोड़कर एक पल के लिए नहीं रह सकते हैं। वो भगवान के चरण कमलों में ही शांति पाते हैं, वही उनका आलय है, वही उनका घर है, भगवान के चरण कमल, उनकी सेवा, वही उनका सब कुछ है, है ना। तो हरि कथा श्रवण कीर्तन ही शुद्ध भक्तों का साध्य और साधन है, ये समझना होगा। और श्रवण कीर्तन रूपी भक्ति अंग में ना तो कर्म, ना ही ज्ञान, ना ही योग, ना तपस्या, किसी की भी अपेक्षा नहीं है, स्वतंत्र साधन है ये। स्वतंत्र साधन। तो जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, जो लोग, उनकी प्रशंसा करते हैं शास्त्र, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थ है, स्वसुख की कामना है कि मुझे मोक्ष चाहिए समस्त दुखों से, तो वो लोग भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए भगवान की कथा सुनते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ हमारा चित्त स्थिर हो गया है, चित्त शुद्ध हो गया है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन तब भी उनका चित्त शुद्ध होता नहीं, क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं कृष्ण भक्ति बिना, क्योंकि भगवान का भजन वो करते नहीं है, श्री कृष्ण के चरण कमलों का वो अनादर करते हैं, और अनाश्रित भाव से जीव कभी भी रह नहीं सकता है, है ना, कभी भी नहीं रह सकता है। अनाश्रित भाव से चूंकि रह नहीं सकता है, आश्रय वो लेते नहीं है, इसलिए अनंत काल तक उन्हें कर्म मार्ग के भंवर में डूबते रहना पड़ता है, कर्म मार्ग में बार बार आते रहते हैं, या फिर वो बहुत कठोर साधना आदि करते हैं तो भी उनका पतन हो जाता है। किंतु जो लोग मोक्ष नहीं चाहते हैं, भगवान से ही प्रेम कर बैठे हैं, भगवान की कथा को सुनते सुनते, तो वो समस्त चेष्टाओं को, यानी ज्ञान आदि, तपस्या आदि, कर्म आदि, कर्म का अर्थ यहां भगवान से संबंधित कर्म नहीं है, अन्य कर्म या यज्ञ जिनका लक्ष्य होता है स्वर्ग की प्राप्ति, उन सब चेष्टाओं को पूरी तरह से त्याग करके साधु मुख से निकली हुई श्री हरि कथामृत का पान करते हुए शरणागत हो जाते हैं भक्त, और हरि कथा का श्रवण करके अजित भगवान को भी जय कर लेते हैं। आपको तो पता है ना, भगवान का एक नाम अजित है, जिनको जीता नहीं जा सकता है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया, भागवत जी में ही एक श्लोक है जहां कहा गया कि प्रभु यूं तो आप अजित हैं, परंतु आपके भक्त आपको जीत लेते हैं आपकी कथा सुनकर, क्योंकि जब वो आपकी कथाएं सुनते हैं तो आपको लगता है कि आह ये मेरे भक्त मुझसे कितना प्रेम करते हैं, बिना प्रेम हुए क्या कोई मेरी कथा सुनना चाहेगा, अर्थात मेरी कथा सुनते हैं तो मुझसे प्रेम ही करते हैं। तो बस आप उन भक्तों के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान जो कि अजित हैं, वो भी भक्तों के द्वारा वश में आ जाते हैं, है ना। तब क्या करते हैं भगवान, तब भगवान ऐसे भक्तों के निकट अपने नाम, अपने रूप, अपने दिव्य गुण और अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकटित कर देते हैं। यूं तो भगवान को कहा जाता है कि आप अधोक्षज हैं प्रभु, इन इंद्रियों के द्वारा आपको देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता है। परंतु हम देखते हैं कि ये जो हमारी जीव है, इसी जीव के द्वारा हम भगवान का नाम ले रहे होते हैं, है ना। लेकिन सबके जिह्वा पर भगवान का नाम आ जाता है ऐसा भी तो नहीं है। कितना आसान है कृष्ण कृष्ण कहना, लेकिन क्या सब लोग कह पाते हैं? उनको कई सारे मतवाद घेर लेते हैं, कई सारी कल्पनाएं, मनगढ़ंत विचार। सबके जुबान पर भगवान का नाम नहीं आता है, ये तो हम अनुभव करते हैं। भगवान का नाम ना लें इसके लिए उनके पास अनेक बहाने होते हैं, अनेक अनेक बहाने होते हैं। तो जो भगवान का नाम लेना चाहता है, भगवान स्वयं कृपा करके नाम रूप में उसके उसी जुबान पर जो कि भौतिक जुबान है, जड़ है, उस पर वो अवतरित हो जाते हैं। बस वो वासना देखते हैं, इच्छा देखते हैं कि अच्छा ये मेरा नाम लेना चाहता है तो ठीक है, इसके जुबान पर मैं अवतार ले लूं। तब भगवान ऐसे भक्त के निकट अपने नाम, अपने रूप को प्रकट कर देते हैं, लीलाओं को प्रकट कर देते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में लीला स्फुरित होने लगती है, भक्त आत्महारा हो जाता है भगवान के माधुर्य का आस्वादन करके। और तब ऐसे भक्त भगवान के नित्य नव नवायमान सेवा सुख में मत्त होकर के इतर आशा से निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं और परम शांति प्राप्त कर लेते हैं, तथा नित्य सेवा में ही नित्य काल के लिए नियुक्त हो जाते हैं। तो कितनी सुंदर बात है, और बहुत ही सुंदर चर्चा हुई आज हमारी। इसी चर्चा को जारी रखेंगे हम, सुनते रहिए समर्पण। इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए, प्रेम धारा को कीजिए स्वीकार। मेरा नमस्कार।

नमस्कार। स्टूडियो की घड़ी में 7 बज गए हैं और लीजिए सुनिए अभी तक की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार पर पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे इंडिया वॉल्स 2026 में शामिल होंगे। ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। वे कल गृह मंत्रालय के विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय और विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने अपनी ई नाविक पोर्टल पर एक सी फेयरर ट्रैकिंग मॉड्यूल लॉन्च किया। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने व्यापक तैयारियां शुरू की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के दोबारा होने वाले पेपर के लिए प्रवेश पत्र जारी किए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ आने के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है। महिला एशिया कप 2026 के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। पिकल बॉल वर्ल्ड कप में भारत ने वियतनाम के डानांग में दूसरे दिन लगातार मैचों में 3 और फिलीपींस को हराकर टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाई। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल्स में पहुंच गई है और विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। ये थी अभी तक की खास खबरें। बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।

आपकी वाणी आकाशवाणी। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

बंदों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

ये गाना उन्हीं सब तारों के लिए जो जमीन पर है, यानी उन बच्चों के लिए जिन्हें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे मनाया जाता है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि स्पेसिफिकली ऑन 5 सितंबर क्यों, क्योंकि ये दिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। वर्ष 1962 में जब वे राष्ट्रपति बने तब उनके छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई थी और इस पर उन्होंने कहा था कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने की बजाय अगर हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा, और वो सम्मान हम उन्हें हमेशा देते चले आ रहे हैं और देते चले जाएंगे। तभी से ये परंपरा शुरू हुई। ये गाना उन सभी शिक्षकों के लिए जो हर कोशिश करते हैं अपने बच्चों को मोटिवेट करने की।

0: सुखविंदर सिंह की आवाज में दिस ट्रैक वॉज फ्रॉम द मूवी संजू और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली आपके आरजे खुशी के साथ ओनली ऑन रेनबो स्टेशन 102.6। आज है 5th ऑफ सितंबर और आज के दिन और क्या मनाया जाता है, आज के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस भी आज मनाया जाता है। और ये जो दिवस है वो मदर टेरेसा की पुण्यतिथि से जुड़ा हुआ है। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर से छोटे से ब्रेक के बाद।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because

0: सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
1: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: स्टूडियो के खड़े में समय हो रहा है 7:28। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को जिन महान हस्तियों ने हमें अलविदा कह दिया उनमें है मदर टेरेसा जी जो कि विश्व प्रसिद्ध समाज सेविका थी, रतन जी टाटा जो कि टाटा समूह को खड़ा करने वाले 4 लोगों में से एक थे, और इनके साथ ही नीरजा भनोट जो कि अशोक चक्र से सम्मानित थी, विमान परिचारिका थी। और मैं लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर से छोटे से ब्रेक के बाद।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: सोना महापात्रा की आवाज में ट्रैक चल रहा था फिल्म फुकरे से, ओनली ऑन रेनबो स्टेशन 102.6। आज के दिन जिन महान हस्तियों ने जन्म लिया लेकिन अब हमारे बीच में नहीं रहे, वो है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और जिनके सम्मान में हम हर वर्ष 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। और इनके साथ ही लक्ष्मी नारायण रामदास जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे। अगर आज आपका जन्मदिन है तो आप अपना जन्मदिन किनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं बताती हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

5th सितंबर यानी आज के दिन अगर आपका हैप्पी वाला बर्थडे होता है, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, तो आप अपना जन्मदिन जो है वो शेयर कर रहे हैं अजीत सिंह यादव के साथ, जो कि भाला फेंक के भारतीय पैरा एथलीट है। इनके साथ ही विधु विनोद चोपड़ा, जो कि एक बहुत ही फेमस फिल्म निर्माता और निर्देशक है, और साथ ही पंकज त्रिपाठी, हु इज अ वर्सेटाइल एक्टर। हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर, स्त्री और मिर्जापुर जैसी मूवी से ये काफी ज्यादा फेमस हो गए थे, और अब तो इनकी काफी सारी नई मूवीज आ रही है। एक बार बस पॉपुलर होने की देरी होती है और उसके बाद तो फिर काम ही काम इनके पास आता ही रहता है। बहुत ही वर्सेटाइल और अच्छे एक्टर हैं, और इन्हीं की मूवी स्त्री से ये गाना आप सभी लिसनर्स के लिए, और इनको और आज जिन जिन का जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली आपके आज खुशी के साथ। और सप्ताह जो चल रहा है वो भी आपको बता देती हूँ, राष्ट्रीय पोषाहार दिवस सप्ताह चल रहा है। और कहते हैं ना, हर मौसम अपने साथ कुछ खास लेकर आता है और हमारी थाली भी अगर मौसम के हिसाब से बदल जाए ना तो टेस्ट के साथ साथ हेल्थ का भी ख्याल रखा जा सकता है। बारिश जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है लेकिन हवा में नमी अभी भी है, तो ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि डाइट में लोकल और सीजनल फूड को ज्यादा जगह दें। फलों की बात करूं तो अमरूद, पपीता और अनार अच्छे ऑप्शंस हैं। अमरूद में विटामिन सी होता है, फाइबर का अच्छा सोर्स है, पपीता डाइजेशन में मदद करता है और अनार एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अब तो लोग कह रहे हैं कि अनार के छिलके में अनार से ज्यादा दम होता है, मतलब बालों के लिए, खाने के लिए नहीं, वो अनार के छिलके को सुखा कर उसको ग्राइंड कर ऐसा कुछ होता है जो मैंने पढ़ा था, वो बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो उसका छिलका भी बहुत आपके काम आ सकता है। सब्जियों में लौकी, तोरी, टिंडा, भिंडी और परवल जैसे सीजनल वेजिटेबल्स को आप थाली में शामिल कर सकते हैं। ये हल्की होती हैं, डाइजेस्ट करने में बहुत इजी होती हैं और इनमें फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और सिर्फ गेहूं चावल ही क्यों, बाजरा है, ज्वार है और रागी है, मिलेट्स अपनी डाइट में आप जैसे जैसे शामिल करते जाएंगे ना आपकी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी। ये फाइबर और कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो लोकल फूड चुनने का ना एक फायदा और भी है, खाना अक्सर ज्यादा फ्रेश मिलता है और साथ ही हमारे लोकल फार्मर्स को भी सपोर्ट मिल जाता है। तो आज का ना एक छोटा सा हेल्थ मंत्रा है, ईट लोकल चूज सीजनल, और अपनी थाली को ना कलरफुल रखिए क्योंकि मौसम के साथ बदलती हुई थाली स्वाद भी देती है और सेहत का साथ भी।

रविंदर आ गए स्टूडियो में. गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपसे मिलूंगी 9 से 10 गाने दिल के तराने, गाने नए पुराने प्रोग्राम में. और आप बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ.

अब आप सुनेंगे मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के दौरे पर चेन्नई जाएंगे। इस दौरान वे इंडिया वॉल्व 2026 में शामिल होंगे। ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह 8 से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। वे कल गृह मंत्रालय के विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत रूस और यूक्रेन दोनों के लगातार संपर्क में है। भारत ऐसे सुझावों पर विचार कर रहा है जिनसे युद्ध को कम करने या खत्म करने में मदद मिल सके। देश का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले महीने की 28 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 11.4 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर रिकॉर्ड 740 अरब डॉलर से अधिक के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने व्यापक तैयारियां शुरू कर ली हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र के दोबारा होने वाले पेपर के लिए प्रवेश पत्र जारी किए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। और अब खबरें खेल जगत से। विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। महिला एशिया कप 2026 में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। और अंत में, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। और अब तक तो आप खुश हुए होंगे क्योंकि बहुत प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आई थीं, और अब उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी चूंकि हमारी है, तो हम कैसे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे आप तो जानते हैं। ढेर सारी जानकारियों का पिटारा हमारे पास है और इसके साथ साथ दिल को छू लेने वाली बातें हैं। सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे भाई, आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग रात भर जागे हैं, वो अगर सुबह अपने समय पर जाग गए हैं तो फिर उनसे बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि उगते हुए सूरज को वो देख पाते हैं, ताजी हवा का झोंका का महसूस कर पाते हैं और इसके साथ साथ खुद को देखकर खुश हो लेते हैं, प्यारी सी स्माइल देते हैं, तो बन जाता है हमारा दिन। तो चलिए, बात एक दूसरे की खैरियत की हो रही है तो खैरियत से ही शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र सिंह और कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

खामोशी का मतलब ये नहीं होता कि हम खामोश हैं भाई साहब। हम तो देख रहे थे कि आप कितना इंतजार कर रहे हैं हमारा, है कि हम कब बोलें, कब मुंह खोलें और ढेर सारी आपसे बातें करें। वैसे खुशबू जी, खुशबू बिखेर के गई हैं, तो कुछ तो सांसों में रहने दें, कुछ तो दिमाग में रहने दें कि वो जानकारी और वो प्यारी सी आवाज जो आपको अभी अभी आपकी नींद उड़ा कर गई है, थोड़ा सा एहसास रखें, क्योंकि वो फिर आएंगी लौट कर 9 बजे। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बताते हैं भाई कि बदलती चीजों के बीच और भी कुछ बदलता है जो आपकी सेहत पर असर डाल सकता है, और वो है मौसम का मिजाज। तो मौसम का मिजाज क्या कहता है भाई साहब, समझ लेते हैं। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। यानी अब तापमान धीरे धीरे धीरे करके जो पारा है नीचे उतरता चला जाएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दिन भर जो है आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे, इसलिए ये मौसम जो है ठंडा ठंडा कूल कूल बना रहेगा। तो आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि बदलते मौसम में कहीं आप ढीले मत पड़ जाना, क्योंकि आप ढीले पड़े तो फिर मुस्कान पर आपके असर पड़ जाएगा, आपके चेहरे पर असर पड़ जाएगा, और हम नहीं चाहते कि आपकी मुस्कान को कोई भी परेशान करे, है ना। तो फिलहाल गीतों का सफर चलता रहेगा, मौसम की जानकारी दे दी, इसके बाद बात करेंगे कि अगर आप किसी रास्ते से होकर गुजर रहे हैं तो उस रास्ते का हाल क्या है, यानी ट्रैफिक अपडेट देते हैं बस इस गीत के बाद। और कहते हैं मौसम को बयां करना हो तो अगर खूबसूरत खूबसूरत से अल्फाज हो तो फिर कह नहीं क्या। सुनिए।

तो भाई आंखें कैसी भी हों, चाहे कत्थई हों, चाहे नीली हों, चाहे ब्राउन हों, चाहे ब्लैक हों, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो तब पड़ता है जब उन आंखों से हम ये ना देख सकें, ये ना जान सकें कि भाई साहब दूर तक जो रास्ता जा रहा है वो आगे बंद है, हमें दूसरी तरफ से जाना है। ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर दिखनी चाहिए, और ख़ासकर जो लोग चल रहे हैं ना भाई साहब, उनको सिग्नल ज़रूर दिखना चाहिए, क्योंकि अगर सिग्नल नहीं दिखा तो फिर समझ सकते हैं ना आप क्या होगा, सीधे चालान कटता है ना। खैर, हम बताना चाहते हैं कि आप अगर किसी रास्ते से होकर गुजर रहे हैं तो वहां के हालात क्या है। सबसे पहले बात करते हैं नाला निर्माण की, जो कि नाला निर्माण से एमबी रोड पर जो यातायात प्रभावित हुआ उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल लाडो सराय से पुल प्रहलादपुर के बीच एमबी रोड पर पीडब्ल्यूडी की ओर से इस वक्त जो है ड्रेन का निर्माण कार्य चल रहा है, और इसी के चलते एमबी रोड पर यह यहां से गुजरने वाला जो यातायात है वो प्रभावित होगा। तो लाडो सराय से पुल प्रहलादपुर जाने वाले वाहन जो है वो अरबिंदो मार्ग, आउटर रिंग रोड और मां आनंदमयी मार्ग के रास्ते जा सकते हैं। पहली चीज, कई रास्ते और भी हैं, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन की बात है तो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 35 से अधिक सड़कें ऐसी हैं जो प्रभावित रहेंगी, जहां से आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों के प्रयोग करने की सलाह दी है। थोड़ा सा आप संभल के रखें, क्योंकि भारत मंडपम में यह आयोजित होने जा रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, और इसकी तैयारियों को परखा जा रहा है, उसके लिए आज का दिन चुना गया है, और काफले यानी कि मोटर कारकेट का जो यहां पर है रिहर्सल किया जाएगा, और इसके लिए यह समय नियुक्त किया गया है। फिर से सुन लीजिए, सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक लगभग 22 स्थान ऐसे हैं जहां पर ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू रहेगा, और 35 से अधिक सड़कें इससे प्रभावित रहेंगी। और कौन कौन सी सड़कें प्रभावित रहेंगी ये आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप रास्ते में हैं या आप उन रास्तों से होकर गुजरने वाले हैं। ये रास्ते हैं सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रीसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मथुरा रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू रोड, शांति मार्ग, जनपथ, अशोक रोड, बाराखंबा रोड, टॉलस्टर मार्ग, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग, कमाल आतातुर्क मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, प्रिंस एनक्लेव रोड और लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, जोसेफ ब्रोस टीटो मार्ग और लाला लाजपत राय मार्ग से कई प्रमुख मार्ग इस दौरे में, और एडवाइजरी जरूर आप ध्यान रखें, राइट हो, जहां भी ट्रैफिक स्लो हो कोई बात नहीं, गीत बजते रहेंगे, आपका मनोरंजन जहां आप हैं वहां पहुंचता रहेगा, क्योंकि हम है ना आपके साथ।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ ऑनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये ऑनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो

0: नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
5: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: और कहते हैं कि जीवन में भी इतनी मिठास होनी चाहिए, लेकिन जीवन को समझने का नजरिया जब तक बेहतर नहीं होगा तब तक कैसे संभव होगा कि हम जीवन के सार को समझ पाए। कई बार ऐसा होता है कि हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जीवन समझ में नहीं आता, और तब हम इस अफसोस में पड़ते हैं कि काश कोई हमें रास्ता दिखा दे भाई इस जीवन रूपी सागर से बाहर निकालने का। तो ऐसे में सिर्फ एक ही शख्सियत ईश्वर ने बनाई है जो हमें इस मझधार से बाहर निकाल सकता है, और वो है हमारे गुरु। और आज शिक्षक दिवस भी है, तो शिक्षा के साथ साथ जो हमारे रास्तों को आसान बना दे, जीवन के रास्तों को, और हमें जीवन समझने में सहयोग करे, वही तो सबसे बड़ा गुरु होता है। और कहते हैं ना कि शिक्षक दिवस को लेकर गुरु की महत्ता पर यह दिवस आधारित है। बताते हैं कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है। भारत में शिक्षक दिवस हर सितंबर 5 को मनाया जाता है, यानी 5 सितंबर को मनाया जाता है। और शिक्षक का समाज में कितना सम्मान है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हर कोई नतमस्तक होता है। हर पेरेंट जो है, हर माता पिता अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं उस गुरु के पास जो उसका मार्गदर्शन कर दे। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस और उनकी स्मृति के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। शिक्षक दिवस एक पर्व की तरह मनाया जाता है जो शिक्षक समुदाय के मान और सम्मान दोनों को बढ़ाता है। वहीं हिंदू पंचांग के मुताबिक माने तो गुरु पूर्णिमा के दिन को ही गुरु दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। वैसे दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग तारीखों में शिक्षक दिवस को मनाते हैं। बहुत सारे कवियों गद्यकारों ने भी कितने ही पन्ने गुरु की महिमा में रंग डाले हैं। और कहते ना, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। चलिए, ऐसे ही गुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम रूबरू करवाने जा रहे हैं आपको, क्योंकि उनसे हम ये समझेंगे कि आखिर क्या महत्ता है एक गुरु की। हमारे साथ जुड़े हैं श्री अमित अग्रवाल जी, जो कि लेक्चरर हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर CM श्री स्कूल से। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: राजीव जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो आज के शिक्षक दिवस की, और FM रेनबो सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, वंदन। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्कूल की तरफ से, मेरा स्कूल सेक्टर 21 रोहिणी में है, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा सर, मेरा नाम अमित कुमार है
0: जी। अमित
1: राजीव जी,
0: अमित जी,
1: जी
0: वैसे अमित जी बोला तो शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया, हमारा नाम रविंद्र है। तो सर, सिर्फ ये है कि चूंकि शिक्षक की बात चलती है और शिक्षक ही एक ऐसी शख्सियत होती है जो हमारे जीवन के सार को हमें समझाता है, हमें संघर्ष करना सिखाता है और उस संघर्ष के महत्व को भी सिखाता है, उससे ऊपर कोई नहीं होता। आपसे समझना चाहेंगे कि आप शिक्षक दिवस को लेकर आपका नजरिया क्या है और एक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का क्या महत्व होता है, इस बात के साथ आपको हम

0: शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं सर।
1: जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी को उनके जन्मदिन पर याद करता हूँ, तो नमन करता हूँ। और इसका इतिहास भी बड़ा खूबसूरत है शिक्षक दिवस का, कि 5 सितंबर जो उनका जन्मदिन होता है, तो उनके प्रशंसक और उनके छात्र उनके पास जाते हैं और उनका जन्मदिन मनाना चाहते हैं सब। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं ये दिवस टीचर को समर्पित करता हूँ, क्योंकि वो खुद आत्मा से शिक्षक रहे, प्रोफेशन
0: जी
1: से भी शिक्षक रहे लेकिन आत्मा से भी शिक्षक रहे। तो जो कहते हैं बड़ा व्यक्ति होता है वो हमेशा बड़ा सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता है। तो उन्होंने ये दिवस अपने जन्मदिन को शिक्षकों के लिए दे दिया।
0: जी
1: तो मैं शिक्षक दिवस को देखता हूँ साहब कि ये शिक्षकों के लिए सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
0: जी
1: आज हमारे पास इतना काम है शिक्षक के पास में कि वो अपने आप को खुद को भूल जाता है, लेकिन ये 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस का मनाया जाता है बच्चों की तरफ से या पूरे देश में मनाया जा रहा है शिक्षक को सम्मान करने के लिए, तो हमें याद आता है कि हम भी शिक्षक हैं।
0: जी
1: हमें हर रोज क्लास में याद रहता है हम शिक्षक हैं, लेकिन ये विशेष रूप से याद रहता है कि गुरु की क्या महिमा है। गुरु
0: जी
1: को यहाँ भगवान का दर्जा दिया जाता है साहब।
0: जी
1: तो वो जब चीजें हम सामने देखते हैं बच्चों के माध्यम से हमारे सामने आती हैं, तो हमें भी वो सोए हुआ तो हनुमान जी होते हैं, शक्तियां सो जाती हैं जाग, तो उनको जावत की तरह से हम देखते हैं कि बच्चे या जो हमारे भारतवासी वो हमें हनुमान को जो सोई हुई शक्तियां हैं उनकी तरह से हमें जामत बनकर जागृत करते हैं, और फिर हम दोबारा से अपनी मेहनत ईमानदारी के साथ में अपने उसी काम में जुट जाते हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और
0: जी
1: इसका एक महत्व और समझिए सर, कि
0: जी
1: छोटे बच्चे हैं जब नर्सरी क्लास में जाते हैं वो अपने माता पिता की इतनी बातें नहीं मानते हैं जितनी वो अपने टीचर की बातें मानते हैं, तो इससे बड़ा और क्या बात हो सकती है। तो ये हमारी जिम्मेदारियों को और बढ़ा देता है साहब।
0: बिल्कुल, चूंकि जिम्मेदारियों की आपने सर बात की है, तो पहले और अब की शिक्षा प्रणाली और परिस्थितियों में भी काफी बदलाव आ चुका है अमित जी। ऐसे में वर्तमान में एक शिक्षक के सामने क्या बड़ी चुनौती है? हालांकि चुनौतियां तो हर काल में रही हैं कि कैसे हम विद्यार्थी को अपने स्तर तक उठाकर ला पाएं। तमाम ऐसे उदाहरण भी हैं गुरुओं के जिन्होंने, कि कहते हैं ना, गुरु गुड़ रह गए चेला शक्कर हो गए, ऐसी भी बातें कही जाती हैं। तो गुरु गुरु ही एक ऐसा है जो अपने छात्र के कुछ बनने पर बहुत प्रसन्न होता है, गदगद हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं, बहुत कुछ बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, क्या चुनौतियां हैं आज के वर्तमान दौर में शिक्षकों के सामने?
1: निश्चित रूप से इंद्र जी बहुत कुछ बदला है। पहले जो गुरु के साथ में बैठ के हम ज्ञान लेते थे, आप सामने बैठ के ज्ञान लेते थे, आज वो परिदृश्य और परिघटनाएं सब कुछ बदल चुकी हैं। वो कहते थे कि पहले कि मैं इस टॉपिक को इस तरह से बोलना चाहूंगा कि वो शंकाओं को दूर करता है शंकर बनता है,
0: जी
1: वो भ्रम को दूर करता है ब्रह्मा बन जाता है,
0: जी
1: अपने आपके जीवन से विषाक्तता को दूर करता है भाव निकालता है विष्णु बन जाता है, और दुर्गा बन वो दुर्गति दूर करता है। हमारे अंदर फिर भी गुरु रह जाता है, तो गुरु ही है जो गुरु को तोड़कर हमें इंसान बनाने की लाइन में खड़ा करता है, पंक्ति में खड़ा करता है।
0: जी
1: तो चुनौतियां तो बहुत है सब। पहले गुरुकुल में रहकर हम गुरु के सामने बैठकर ज्ञान सीखते थे, लेकिन आज आज इंफॉर्मेशन का जमाना है सब, और आपके पास सोशल मीडिया है, दुनिया भर के ऐप्स हैं, इंटरनेट है, आपके गूगल है, पता नहीं कौन कौन से ऐप्स आपके पास में है, और इंटरनेट जुड़ चुका है आपकी जिंदगी में, तो इंफॉर्मेशन लेना बहुत आसान है।
0: जी
1: उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि तो बच्चे के पास में मोबाइल है, वो पूरा दुनिया लेके घूम रहा है, वो महासागर लेके घूम रहा है इंफॉर्मेशन को, और इंफॉर्मेशन के महासागर में हमें अंधकार भी दिखाई देता है ना, तो उसको हम फिल्टर ना कर पाए तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो टीचर का काम यहाँ पर चुनौती भरा तो है ही, लेकिन जरूरी भी ये है कि वो फिल्टर के रूप में बच्चों के सामने उस इंफॉर्मेशन को कैसे नॉलेज में कन्वर्ट करें, ये बेहद जरूरी है। और हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो इसके ऊपर बेहद जोर देती है, बुद्धिज्म की तरफ हमें लेके जाती है। देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन मैं समझ पाता हूँ कि इंफॉर्मेशन जब गौतम को, जो राजकुमार गौतम है और अपने घर से निकलते हैं, तो उनके सामने चार चीजें आती हैं, चार इंफॉर्मेशन मिलती हैं कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है, रोगी क्यों होता है, उसकी डेथ क्यों होती है ना, और ये साधु क्यों बनता है, ये इंफॉर्मेशन थी। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को क्यूरियोसिटी में बदलना।
0: अच्छा सर, एक एक बात और है जो लोगों को गहराई से समझनी होती है, कि बुद्ध किन्हें कहते हैं? वो कहते हैं कि जिसको स्वयं का बोध हो गया वही बुद्ध हो गया।
1: हाँ,
0: तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चूंकि तमाम मंत्र तमाम ऐसी बातें रही हैं और ये चुनौतियां भी हैं, आज के पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि उनके सामने भी परेशानियां हैं, लेकिन गुरु और पेरेंट्स के बीच का जो एक रिश्ता है वो थोड़ा सा क्या लगता है कहीं पर उसमें गैप आ गया है, उसको और गहराई से जुड़ना चाहिए।
1: हाँ, गैप सब दोनों साइड से आए हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी है और हम टीचर्स की तरफ से भी है। वो कहते हैं ना कि एक कढ़ाई में अगर दूध रखा है, 100 क्विंटल दूध रखा है, तो उसको 2 बूंद फाड़ने के, खट्टे की फाड़ने के लिए काफी होती है। तो 1-2 घटनाएं ऐसी होती हैं जो शिक्षक समाज की तरफ से हो जाती है अनजाने में, या जाने में, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि जाने अनजाने में होते, लेकिन कुछ ऐसे केसेस आते हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या होती है वो जांच करने के बाद पता चलता है। लेकिन उससे जो शिक्षक की जो भूमिका है वो धूमिल होती है, सभी धूमिल होती है। तो ये गैप आया है टीचर्स की तरफ, टीचर्स और पेरेंट्स में। हाँ, आज जो भागदौड़ की जिंदगी है, माँ बाप के पास भी इतना टाइम नहीं है जो पूरी तरह से बच्चों की केयर करके, मोबाइल हाथ में दे देते हैं माँ बाप भी, तो बच्चा क्या करे, बच्चे के पास दूसरा सोर्स है। हमारी जो ज्वाइंट फैमिली है, पहले होती थी तो बच्चे के ऊपर केयर की जाती थी, हर कोई दादा है, दादी है, चाचा ताऊ, सब बच्चे को ध्यान देते। आज जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली, अब जरूरत है न्यूक्लियर फैमिली की, बन गई है ना, क्योंकि आज रोजी रोटी का सवाल है, तो वो ज्वाइंट फैमिली टूटती जा रही है। ये एक गहरी चिंता का विषय है कि हम अपने जो मूल्य है, अपने जो रिश्ते हैं, उनसे दूर होते जाए और मोबाइल की तरफ बढ़ गए हैं।
0: चलिए, उम्मीद तो यही करते हैं कि ये दूरी कम हो, और चूंकि ये एक लंबा विषय है और इस पर तो पूरी चर्चा जितनी देर हम करेंगे ये कम पड़ेगी शायद, लेकिन अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे अपने विद्यार्थियों को और समाज को आप एक शिक्षक के रूप में?
1: हाँ, मैं यहाँ पर, मुझे एक शेर याद आ रहा है वसीम बरेली जी का
0: जी।
1: वो कहते हैं कि जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा।
0: वाह,
1: जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, चरागाह अपना मकान कहाँ होता है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, और ढेरों शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की आपको।
1: धन्यवाद, आप सबको भी, सभी देशवासियों को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू।
0: तो हमारे साथ अमित कुमार जी जुड़े जो कि लेक्चरर हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सीएम श्री स्कूल से हमारे साथ जुड़े, और मंत्र भी बड़ा खूबसूरत है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक गुरु ही है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमसे कहता है जमे रहो। और ये जमे रहना इतना आसान नहीं होता, गुरु हमें जड़ कर देता है और फिर जड़ों से जो वृक्ष उत्पन्न होता है वो समाज का बेहतरीन

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

अरे कस्में बहुत खाई जाती हैं जीने मरने की भाई साहब। ले भाव हैं और भावनाएं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं और कुछ भी कर गुजरने की चाहत रखते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि भाई अपने श्रोताओं के लिए हम भी कुछ भी कर गुजरें। इसलिए ढेर सारी जानकारियां अलग अलग जगह से जुटाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। संदेश आपके जब हम तक पहुंचते हैं तो हम समझ जाते हैं कि आपके दिल के तार हमारे दिल के तार से जुड़े हुए हैं, और बस यही हमें इतना ऊर्जावान कर देता है कि बस मन करता है कि जितना वक्त मिला है उससे ज्यादा कुछ खर्च आए। लेकिन वक्त वक्त की बात है भाई साहब। कहते हैं ना कि समझ के समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझ है मेरी समझ में वो ना समझ है। समझदारी बढ़ाइए भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं कदम, है ना। तो अगर आप आवास योजना के बारे में सोच रहे हैं तो हम बता दें कि भाई साहब फ्लैट बुकिंग की जो तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। बात कर रहे हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण की, जहां पर जिसने डीडीए कर्मयोगी आवास योजना के तहत फ्लैट बुक करने की जो आखिरी तारीख थी वो 30 सितंबर 2026 तक कर दी है। फ्लैट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जा रहे हैं। और अधिक जानकारी आपको चाहिए और ज्यादा, तो आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं dda.gov.in पर, और वहां भरपूर फायदा उठाइए, है ना। और जो लोग सफर करने के लिए ललायत रहते हैं तो दिल्ली से ब्यास के लिए अब विशेष रेलगाड़ियां चलने वाली हैं, जिसकी सूचना है वो हम आपको बता देते हैं। नई दिल्ली से ब्यास जंक्शन के बीच विशेष गाड़ी चलेगी और गाड़ी संख्या है 04508 यानी 04508, ब्यास जंक्शन से 6, 13 और 20 सितंबर को चलेगी। 1, 8, 15 नवंबर और 13, 20 और 27 दिसंबर को चलेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04507 यानी 04507 नई दिल्ली से 7, 14, 21 सितंबर और 2, 9, 16 नवंबर और 14, 21, 28 दिसंबर को चलेगी। आपके लिए खुशखबरी है ये, है ना भाई साहब। तो बस करना क्या है, अगर किसी अपने से मुलाकात हो तो सफर, यादें और मजेदार हो जाती हैं, सुहाना हो जाता है। तो चलिए एक मुलाकात की बात कर लेते हैं। वैसे कुछ गीत जो हैं दिल में उतर जाते हैं, कुछ बातें दिल को छू जाती हैं, कुछ जज्बात, कुछ हालात, बहुत कुछ बिना कहे कह जाते हैं।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

अरे वाह, मुलाकात में और मुलाकात हो जाए हमारी आपकी, और एक चाय मिल जाए भाई साहब, सब कुछ दिन एकदम बढ़िया बिंदास हो जाएगा। इतनी सी तो बात है, सोचिए, चाय तो एक बहाना है, हमारे जज्बात, हमारी बात आपके दिल तक जाना है, ये मुद्दा है भाई साहब, समझे आप। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वक्त हमसे कुछ कह रहा है कि जितना बचा है ना उसका इस्तेमाल कर लो, ढंग से कर लेते हैं भाई साहब, क्योंकि बात सेहत की है, तो सेहत की भी बात कर लेते हैं। कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई कुछ बुखार ऐसे होते हैं, कुछ वायरल फीवर ऐसे होते हैं जो दवा खाने पर ठीक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा है जिसका संक्रमण दोबारा हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू ठीक होने के बाद फ्लू का संक्रमण दोबारा भी हो सकता है, इसलिए इससे बचने के लिए जो भी पीड़ित है, पीड़ित होने वाले लोगों को थोड़ा सा जागरूक रहने की जरूरत है और थोड़ा सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि 121 ऐसे नए मामले मिले हैं दिल्ली में कि 24 घंटे में स्वाइन फ्लू के 121 ऐसे मामले सामने हैं, और 30 मामले बाहर के भी सामने आए हैं जिसमें दोबारा से संक्रमण हुआ। इस वजह से अब तक स्वाइन फ्लू के कुल मामले 3582 हो चुके हैं। तो सचेत ये किया गया, भाई थोड़ा सा एहतियात बरतें, जब तक पूर्णतया ठीक ना हो जाए, आप स्वस्थ महसूस ना करने लगें, डॉक्टर आपको ना कह दे कि हाँ ठीक है, तब तक थोड़ा सा एहतियात बरतिए ताकि आपके आसपास जो बाकी लोग हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। तो 15.2 ऐसे प्रतिशत मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ी, लेकिन वो ठीक हो गए पूरी तरह से और अब अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। बट ये है कि चूंकि वापस हो सकता है, दोबारा से जोर पकड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। बाकी तो कहते हैं कि सब ठीक रहता है, अगर सेहत ठीक है तो भैया मूड भी ठीक है, और मूड ठीक है तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। और कहते ना कि सबसे बड़ा धन क्या है, स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी नहीं है जिंदगी में, है ना। तो बेहतर रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। एक प्यारा सा गीत आपके लिए।

नमस्कार, चूड़ी की घड़ी में 9 बज गए हैं और लीजिए सुनिए अभी तक की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के दौरे पर चेन्नई जाएंगे। इस दौरान वे इंडिया वॉल्स 2026 में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। गृहमंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। वे कल गृह मंत्रालय के विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले महीने की 28 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 11.4 अरब अमरीकी डॉलर बढ़कर रिकॉर्ड 740 अरब डॉलर से अधिक के उच्च स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली में भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने व्यापक तैयारियां शुरू की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के दोबारा होने वाले पेपर के लिए प्रवेश पत्र जारी किए। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू। और महिला एशिया कप 2026 में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर अब जो प्रोग्राम शुरू हो गया है उसका नाम है दिल के तराने गाने नए पुराने आपके आरजे खुशी के साथ, जहां पर आरजे खुशी की वाणी बहुत ही कम रहेगी सुनने को मिलेगी आपको, क्योंकि बैक टू बैक गाने चलेंगे, क्योंकि दिल के तराने हैं गाने नए और पुराने हैं, और पुराने गाने यानी कि रेनबो की ओल्ड डायरी से आपके लिए ओल्ड इज गोल्ड वाले सॉन्ग लेकर आऊंगी 9:15 बजे 9:30 बजे 9:45 बजे। तो बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ और सुनते रहिए बैक टू बैक म्यूजिक ओनली ऑन रेनबो स्टेशन 102.6।

0: journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: रेनबो के स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 9:15 और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लेकर आऊंगी ओल्ड इज गोल्ड वाला सॉन्ग रेनबो की ओल्ड डायरी से, तो इस डायरी से मैं निकाल के लेकर आई हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक किशोर दा की आवाज में फिल्म जवानी दीवानी से।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: FM रेनबो के स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है 9:30 और रेनबो की ओल्ड डायरी से आप सभी लिसनर्स के लिए आज खुशी लेकर आई है ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक लता मंगेशकर जी की आवाज में फ्रॉम द मूवी दिल अपना प्रीत पराई।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर। आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
8: पता का चाय, गजब का स्वाद।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है दिल के तराने, गाने नए पुराने, आपकी आशी खुशी के साथ। और इस वक्त दिल्ली का तापमान है 26 डिग्री सेल्सियस, बारिश के आसार पूरे बने हुए हैं, बादल पूरे छाए हुए हैं, धूप सूर्य देवता नहीं दिखा रहे हैं, सूर्य देवता के दर्शन आज नहीं हो रहे हैं, लेकिन कल से मौसम साफ होने की संभावना है। संडे के दिन थोड़े बहुत बादल और सूर्य देवता की थोड़ी बहुत लुक्का छुपी का खेल चलता रहेगा। मंडे ऑनवर्ड्स कोई बादल नहीं है, मंडे ट्यूजडे वेंसडे, लेकिन थर्सडे फिर से बादल थोड़े बहुत छाए रहेंगे। अगर मैं पूरे की बात करूं तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वीक रहेगा 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। और ये गाना हनुमान अंशिक मूवी आई है जो वर्ड ऑफ माउथ से बहुत ही चर्चित है, मतलब आप हॉल चले जाओ पहले ही बुकिंग करवा लेना क्योंकि हाउस सारे फुल जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है ना तो आपने एक एक्सपीरियंस मिस कर दिया। ये गाना साधु तिवारी की आवाज में फ्रॉम द मूवी हनुमान अंशिक।

सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन टू लर्न To imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं? इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: और आकाशवाणी पर अगले आने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी आपको दे देती हूँ। विदुषी आ गई है स्टूडियो में विद द प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर, विच इज अ वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम जो आप सुनेंगे 10 से 11, 11 से 12 आपके साथ रहेंगे आरती मल्होत्रा प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में, और किसी ना किसी को बनाएंगी बॉलीवुड का सरताज। विदुषी प्ले करेंगी प्ले इट कूल प्रोग्राम, ये रहेगा जो कि एक वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम है। आप सुनेंगे 12 से 1, 1 से 2 आपके साथ रहेंगे आरती मल्होत्रा प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में, जहां पर आप रिक्वेस्ट सकते हैं अपने पसंदीदा सॉन्ग, और उसका ना मजा ही अलग होता है जब आप अपने नाम के साथ अपना फेवरेट गाना रेडियो पर सुनते हैं। तो दीपिका आपके साथ रहेंगे प्रोग्राम आशियाना में 2 से 3, और ऐसे ही रेनबो पर प्रोग्राम्स का सिलसिला यूं ही कंटिन्यू रहेगा।

भाई लग तो रहा है, इनकी आवाज ऊपर तक जा रही है और बारिश के आसार बिल्कुल लग रहे हैं कि होता है, हो सकता है कि आज बारिश हो ही जाएगी। आज एक खुशी यानी कि मेरे जाने का टाइम आ गया है, और जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि अ टीचर टेक्स अ हैंड, ओपन्स अ माइंड एंड टचेस अ हार्ट। माँ बाप की मूरत है गुरु, इस कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु।

0: यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow. A golden opportunity for those making outstanding contributions to animal husbandry. The National Gopal Ratna Award 2025 will honor dairy farmers, AI technicians and dairy cooperative societies nationwide for adopting innovative technological practices. Selections will be made in 3 categories: dairy farmer, dairy cooperative and AI technician. Special awards will be given to winners from the Northeast region and Himalayan states in each category to encourage and promote dairy development activities. Apply now. The application window is open from August 15 to September 30th, 2025. Visit www.awards.gov.in or your nearest common service center to submit your nomination. Celebrate your hard work with a national award.
2: Welcome back to the Matchless Music Hour at 102.6 MHz. And before we continue, here's a quick check on the roads for all the commuters and travelers today. So, Delhi Traffic Police issued an advisory as traffic will be diverted at 22 points on 35-plus roads, including Sardar Patel Marg, Mathura Road and Janpath. It already started from 10 a.m. today and it's going to continue till 4 p.m. Now, this is due to a motorcade rehearsal ahead of BRICS Summit at Bharat Mandapam. So all the travelers, commuters are urged to plan journeys in advance and use public transport. And now, great music at the Matchless Music Hour.

0: It's time for a quick break, but don't go anywhere because we have Diana Ross right after it for you.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़. सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल.
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
0: You are listening to the Matchless Music Hour on 102.6 MHz and now we are heading towards the final stretch of the hour. Let's bring in Diana Ross with Upside Down.

पेशे अब तक एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के दौरे पर चेन्नई जाएंगे। इस दौरान वे इंडिया वेल्स 2026 में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। वे कल गृह मंत्रालय के विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। भारत ऐसे सुझावों पर विचार कर रहा है जिनसे युद्ध को कम करने या खत्म करने में मदद मिल सके। देश का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले महीने की 28 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 11.4 अरब अमरीकी डॉलर बढ़कर 740 अरब डॉलर से अधिक के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने व्यापक तैयारियां शुरू की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के दोबारा होने वाले पेपर के लिए प्रवेश पत्र जारी किए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। महिला एशिया कप 2026 में आज भारत और पाकिस्तान

विजेता आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

वेल वेल वेल, आप सभी के साथ है आपकी दोस्त आरती मल्होत्रा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, बॉलीवुड ट्रेल से लेकर आई हूँ आपके लिए स्पेशल सैटरडे सीरीज। और शुरुआत कर चुके हैं हम चिकरी चिकरी के साथ। जी हाँ, रहेगा बॉलीवुड सरताज का सवाल भी, लेकिन चिकरी से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है। एनीवेज, आजकल मौसम बड़ा सुहाना है, बारिश खूब अपने शबाब पर है। और देखिए जी, ये जो जलवा था चिकरी का, यानी पेडी फिल्म की हम बात कर रहे हैं, रामचरण जानवी कपूर और बुच्ची बाबू सना ने इसे डायरेक्ट किया था। कुछ बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हिट तो नहीं रही, लेकिन रामचरण का जो जादू है वो तो हमेशा बढ़ चढ़ कर रहता ही है। वेल एनीवेज, बट बॉलीवुड ट्रेल्स के अंदर हम और भी बहुत सारी खूबसूरत से ऐसे गीत आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ बॉलीवुड गपशप। और बात करते हैं अगर 19 अब जो अभी रिलीज हुई थी फिल्म 2014 अगस्त 2026, बंटवारा 1947 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक। इसके बाद आप उसी का सॉन्ग सुनने वाले हैं, सोनू निगम और हीर की वॉइस पे, राजकुमार संतोषी, आमिर खान ने प्रोड्यूस किया, उन्होंने डायरेक्ट किया था, सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल, अली फैसल, इन सभी का अभिनय जबरदस्त रहा। ए आर रहमान का संगीत और जो स्टोरी लाइन थी वो बहुत ही खूबसूरत रही। कुछ प्लस पॉइंट्स थे और कुछ माइनस पॉइंट्स भी थे। काफी लेंदी रही ये पिक्चर, फर्स्ट हाफ काफी स्लो बताया गया। सनी देओल को लोगों ने मुस्लिम कैरेक्टर में बहुत ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाए। एनीवेज, अगर रेटिंग की बात करो तो 5 में से 2.5 स्टार इनको मिलता है। चलिए अभी आपके लिए तबस्सुम, सोने निगम एंड हीर फ्रॉम द बंटवारा 1947।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
4: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
5: इग्नोर नहीं, याद करो।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
8: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
9: आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स। एंड आपको जरूर बताऊंगी मैं कि बॉलीवुड सरताज का वो सवाल क्या है क्या है, लेकिन उससे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। कहते हैं दोस्त के माँ बाप की मूरत है गुरु और इस कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु। तो गुरु आपको किसी भी रूप में मिले उसका स्वागत सत्कार जरूर कीजिए, दिल से उन्हें प्रणाम कीजिए। गुरु एक की कोई उम्र नहीं होती, एक छोटा सा बच्चा भी आपको जिंदगी के वो फलसफे सिखा सकता है जो शायद हम पूरी जिंदगी ना सीख पाए। एंड वेल, अगर मैं बात करूं बॉलीवुड सरताज के उस सवाल की, तो आज जब कैरेक्टर रोल बहुत पावरफुल हो जाता है तो वो कई बार उन बड़े बड़े रोल्स पर, लीड रोल्स पर भी भारी हो जाता है। ऐसे कुछ बहुत ही महान कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं हमारे साथ जिन्होंने लीड रोल्स की भी धज्जियां उड़ा रखी है। तो ऐसे ही एक हमारे जो है आज के बॉलीवुड सेलेब जिनका आज हैप्पी हैप्पी बर्थडे है, हम उनको हैप्पी बर्थडे करते हैं। और आपका सवाल यही है कि कौन है वो, और उसकी जो हिंट्स है वो जरूर दूंगी मैं आपको। आपने उनको बहुत सारी फिल्मों में देखा है, बहुत सारी OTTs पे देखा है, मिर्जापुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर 3, मिमी, ओमजी 2। आई होप इतना काफी है आपके लिए। 2 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं उनको और एक फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। तो आप मुझे बताएंगे उनका नाम, और आप, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीतम एंड अमिताभ भट्टाचार्य की वॉइस में कॉकटेल 2 से।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: बॉलीवुड ट्रेल्स में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आपकी दोस्त आरती मल्होत्रा। एंड भाई, कौन कहता है कि हमें सिर्फ एक्शन मूवीज पसंद है, हमें सिर्फ रोमांटिक मूवीज पसंद है। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप दिल से, कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, जब भी कोई दिल से फिल्म बनाते हैं और वो अगर ऑडियंस के दिलों तक उतरती है, फिर चाहे वो किसी भी बजट की फिल्म हो, ऑडियंस उसे हाथों हाथ लेती है। और इसका बहुत बड़ा सबूत है हाल ही में रिलीज हुई हनुमान अंश, एक बहुत ही छोटे से बजट की फिल्म और इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर उसने जो बिजनेस किया है और अभी भी कर रही है रनिंग में। नीम करोली बाबा के जीवन पर बनी ये स्पिरिचुअल बायोपिक है जो बहुत टाइम के बाद हमें देखने को मिली है। विशाल चतुर्वेदी जो डायरेक्टर रहे, उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है और विदाउट यूजिंग एनी VFX। आप समझ रहे हैं ना, एक स्पिरिचुअल फिल्म बनाना, एक पौराणिक फिल्म बनाना और उसमें किसी भी VFX का इस्तेमाल ना करके दर्शकों के दिलों को छू जाना, ये है इस फिल्म की बहुत सारी अच्छी बातें हैं। मैंने इसे देखा और मुझे बहुत पसंद आई ये फिल्म। लीड एक्टर शोभिन शॉ, सत्या की अगर बात करें तो बिल्कुल नेचुरल, शांत और पावरफुल कैरेक्टर जैसा कि होना चाहिए था। सेकेंड हाफ काफ़ी एंगेजिंग रहा, बहुत मज़ा आया। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो था, लेकिन डॉक्यूमेंट्री जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी इफेक्ट थे। 2 करोड़ की छोटी सी फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा का 2026 की सबसे प्रॉफिटेबल फिल्म बन चुकी है दोस्तों ये। और जो कमजोरी रही वो बहुत मामूली है, म्यूजिक थोड़ा सा कमजोर रहा, प्रमोशन उतना उस लेवल का नहीं लगा, लेकिन अगर आपको शांत, भक्ति भरी और दिल को छू लेने वाली फिल्म पसंद है तो ये फिल्म एक बार थिएटर में जरूर देखिएगा। फैमिली के साथ देखने में इसे आपको बहुत मजा आएगा और बहुत टाइम के बाद जो स्पिरिचुअलिटी का जो तड़का लगा है ना, वो बहुत शानदार है। इसके भजन बहुत जबरदस्त, निवेदिता पद्मनाभन की वॉइस में, आप सभी के लिए राम भजन की ओर चले।

0: है बबई, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: A golden opportunity for those making outstanding contributions to animal husbandry. The National Gopal Ratna Award 2025 will honor dairy farmers, AI technicians and dairy cooperative societies nationwide for adopting innovative technological practices. Selections will be made in three categories: dairy farmer, dairy cooperative and AI technician. Special awards will be given to winners from the Northeast region and Himalayan states in each category to encourage and promote dairy development activities. Apply now. Now, the application window is open from August 15 to September 30th, 2025. Visit www.awards.gov.in or your nearest Common Service Center to submit your nomination. Celebrate your hard work with a national award.
3: वेल, देखिए अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन उससे पहले जो हमारे बॉलीवुड सरताज हैं, जी हाँ आप सभी हमारे बॉलीवुड सरताज हैं, क्योंकि आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। पंकज त्रिपाठी सही जवाब था, जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, जिनको हम विश करते हैं। और प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से सही जवाब दे रहे हैं, साथ ही हमें सलीम मलिक, इन्होंने मेरठ से सही जवाब दिया है। राजकुमार अंकोला जी ने सही जवाब दिया है, ये बिहार से। सोनू राज सिंह ने सही जवाब दिया है, विष्णु गार्डन से हमें सही जवाब मिला है। एंड इसके अलावा तनुजा शाह महाराष्ट्र से, इन्होंने भी हमें सही जवाब दिया। और आप सभी बनते हैं हमारी बॉलीवुड सरताज। एंड वेल, अब समय हो चला है आगे चलने का, लेकिन उससे पहले हाल ही में रिलीज हुई कॉकटेल 2 का वर्जन आप सभी को लिए मैं लेकर आई हूँ। उसका गीत अमृता फडणवीस की वॉइस में आनंद राज आनंद के साथ, और उसके रिव्यूज भी कुछ मिक्स्ड रिव्यूज ही आ रहे हैं। वेल, आप खुद देखिए और जज कीजिए कि आपको कैसी लगी ये फिल्म। और कीर्ति सनन का तो वाकई जवाब नहीं, इतना जरूर मैं बोलूंगी आपको। चलिए इसी के साथ मुझे यानी आरती को दीजिए इजाजत, दोबारा होगी मुलाकात, अभी आपके साथ रहूंगी मेरा वाला सॉन्ग में। एंजॉय कीजिए, दीवाने हैं फ्रॉम कॉकटेल 2।

0: come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
4: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
5: इग्नोर नहीं, याद करो।
6: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: वेलकम बैक टू प्ले इट कूल ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ एंड नेक्स्ट अप फॉर यू इज मरून 5।

0: and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
5: अरे अंजलि अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
6: प्रिया ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
5: वाह नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
8: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: वेलकम बैक टू प्ले इट कूल ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ एंड नाउ वी ब्रिंग टू यू अनदर कोलैबोरेशन दैट कैप्चर्स द सर्टेनिटी ऑफ अ रिलेशनशिप व्हेन यू डू व्हाट यू डू इन द नेम ऑफ लव।

पेश है एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष 3 विभागों से कुल 82 शिक्षकों और शिक्षाविदों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। देशभर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने देशभर के शिक्षकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। वे कल गृह मंत्रालय के विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वरिष्ठ उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने व्यापक तैयारियां शुरू की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस पर गिद्धों के संरक्षण पर बल दिया है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कई हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा और महिला एशिया कप 2026 में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग अपनी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ। एंड वेल, मेरा वाला सॉन्ग में रहेंगे आपकी फरमाइशी गीत और फरमाइशी गीतों के साथ रहेगी हमारी आपके साथ बातचीत। और बातचीत में सबसे पहले तो आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज है शिक्षक दिवस और कहते हैं दोस्त के गणित के सवालों को आपने सुलझाया, भूगोल में अटके तो रास्ता दिखाया, विज्ञान का ज्ञान आपने समझाया, शिक्षक होने का हर फर्ज निभाया। आज हमारे उन सभी टीचर्स को हम शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी को सही राह दी, हमें सोचने समझने की शक्ति दी। और कहते हैं कि सबसे पहला जो आपका टीचर होता है किसी भी इंसान के लिए, वो उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी फैमिली होती है, और उसके बाद आते हैं हमारे वो लोग, हमारे शिक्षक, जिनके साथ पास जाकर, चाहे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हम जाकर अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। तो आज का दिन उन सभी के लिए शत शत नमन है और सभी को डेडिकेटेड है। एंड वेल, क्योंकि मेरा वाला सॉन्ग है तो आप डेफिनेटली मुझे भेजेंगे अपनी फरमाइश आप मुझे भेजेंगे 9868107070। एंड बिलीव मी, टुडे इज गोइंग टू बी अ रॉकिंग डे, बिकॉज पुराने गीतों का तड़का नए गीतों के साथ मिला के और खूबसूरत चाशनी शब्दों के मिलाकर आप सभी के साथ आज मनाएंगे शिक्षक दिवस पर। और मैं चाहती हूँ कुछ ना कुछ एक ऐसा चटपटा सा आप कोई मुझे बताएं कि क्या वाक्य आपका रहा आपके स्कूल के डेज में, जिसे हम लोग शेयर कर सके अपने लिसनर्स के साथ 9868107070। आपकी दोस्त आरती मल्होत्रा, एक और खूबसूरत से गीत आप सभी के लिए आशा भोसले की वॉइस में। एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल सही कहा, आप सभी से बात करने को जी चाहता है और बहुत जी चाहता है। माय वन ऑफ वेरी वेरी वेरी फेवरेट जो मैंने आज आपके लिए डेडिकेट किया, एंड डेफिनेटली आपकी फरमाइशें भी इतनी अच्छी होनी चाहिए, क्यों मैच करेंगे ना मेरे साथ। एंड वेल, आपके मैसेजेस मिलने शुरू हो गए। मेरा वाला सॉन्ग आपकी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ, शुभ दिन रेडियो मित्र जी, प्यार भरा नमस्कार। एनी सॉन्ग, कोई भी गाना सुनवा दीजिए, सिर्फ इनका नाम लीजिए। संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, ये सभी कह रहे हैं हेलो मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आए हाय, दिल खुश हो गया अरिजीत सिंह की वॉइस में, ए दिल है मुश्किल, ये गाना सुनने की फरमाइश की है कोमल आयुष पूजा हरिनगर न्यू दिल्ली से। राइट, कविता देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से कह रही है सिर्फ तुमसे एक मुलाकात जरूरी है सनम, गाना सुनवा दीजिए फिल्म बेवफा ए दिल रुबा। एंड एंड एंड अरे बाबा रे, इतना बड़ा मैसेज, शोभापुर मेरठ से ये है, दिग्दर्शन और कविता गौड़, कृपया हमारी प्ले लिस्ट में से या फिर कोई भी सदाबहार नगमा सुनवा दीजिए। कुछ तीन चार मूवीज की इन्होंने फरमाइश दी है, आई विल सी इफ आई कुड। गुड मॉर्निंग दोस्त, वेलकम, सौरभ अनेजा जी बोल रहे हैं, जब भी आपको टाइम मिले आप मेरे ओके, ये थोड़ा पर्सनल मैसेज है, एनीवेज आई विल सी टू इट। एंड जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा साहब, प्रत्येक कन्या शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, इन सब ने इस गाने की फरमाइश की है। साथ ही फिल्म दबंग, बोल तूने तो पल भर में चोरी किया रे, उत्तम नगर दिल्ली से गीतिका खोरवाल, बोधराज, कमला रानी, भानु प्रकाश, इन सभी ने सुनना चाहा है। एंड एंड एंड ये प्लीज कौन भेज रहा है हमारे को, प्लीज रीड दिस मैसेज, जिंदगी में जो चाहो वो मिलता नहीं, इसीलिए जिंदगी जीते जाओ। ये रायबरेली यूपी से कह रहे हैं अमर राज कुंवर, शाहरुख खान की फिल्म परदेश का गाना मेरी महबूबा सुनना चाहते हैं। एंड गुड आफ्टरनून दोस्त, मेरा नाम रिंकू है, कुमार यूपी बुलंदशहर से, मैं गाना सुनना चाहता हूँ हंसता हुआ नूरानी चेहरा मूवी फिल्म पारसमणि से। ओके, बहुत अच्छी फरमाइशें हमारे पास आई है। और एक और फरमाइश जो मुझसे मिस हो गई है, लेकिन उन्होंने फिल्म का जो रिक्वेस्ट किया था वो था इम्तिहान रुक जाना नहीं, इवन आप सभी को जरूर ये सुना है। और आज जैसे शिक्षक दिवस है तो हमें यही सिखाया जाता है, रुकना नहीं है जिंदगी में, रुक

0: रुक जा।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, AI तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन, डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और AI तकनीशियन डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए। तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping

0: swag.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: कोयल सी तेरी बोली
3: आए हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू.
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे.
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था.
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो. अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है.
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर.

लड़की का गीत सुनने की बात की गई है। नाम मुझे आपका नहीं दिखाई दिया। एनीवेज ये सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी कह रहे हैं शांति नगर से। रिस्पेक्टेड आरती मल्होत्रा जी, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी सैटरडे, गुड आफ्टरनून, विशिंग यू अ हैप्पी टीचर्स डे टू यू एंड रेनबो फैमिली। ऑन आर रिक्वेस्ट प्लीज प्ले द ड्यूएट मुझे कुछ कहना है बॉबी फिल्म से। ओके आई विल सी इफ आई कुड। एंड नमस्ते मैम, गुड आफ्टरनून, मैं नवूल वर्क फ्रॉम गांव उत्तर गोवा से बोल रहे हैं। सबसे पहले सभी को टीचर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। आज मुझे एक गाना सुनवा दीजिए, दूल्हे राजा का कौन सा भी गीत। ओके एंड इसी के साथ ही नमस्कार मैडम जी, हैप्पी टीचर्स डे। कश्मीर की कली का गाना सुनने की फरमाइश की गई है लखन गोगोई ने, दीवाना हुआ बादल। एंड नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर से कह रहे हैं जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, फिल्म चांदनी रंग भरे बादल से। हेलो मैम, हैप्पी टीचर्स डे, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, फ्रॉम द मूवी बलमा से ये सॉन्ग सुनने की फरमाइश की है पूजा ने जनकपुरी से। एंड इसी के साथ ही शागिर्द फिल्म से दिल वाला प्यार व्यार, दिल विल प्यार व्यार, मैं क्या जानू रे, उत्तम नगर दिल्ली से बोथरा जी। ओके आपके बड़े अलग अलग नंबरों से आपके मैसेजेस आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून, टीचर्स डे पर आधारित कोई भी सॉन्ग सुनवा दीजिए। ये कंचन सोनिया बिहार दिल्ली से बोल रही हैं। ओके आई विल सी। अभी जिनकी फरमाइश पूरी हो रही है, वेल उनका नाम तो निकल गया, लेकिन इन्होंने बीवी नंबर वन से चुनरी चुनरी फिल्म की फरमाइश की थी।

जी बिल्कुल, वापस आप सभी के साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग अपनी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ। एंड हैप्पी टीचर्स डे की बहुत सारी बधाई आ रही है कथई आंखों वाली।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
3: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
2: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
5: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
6: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
5: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
7: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
8: इग्नोर नहीं, याद करो।
9: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग अपने दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। एंड आपके मैसेजेस मैं पढ़ रही हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग आरजे मैम, हैप्पी टीचर्स डे। आवर फर्स्ट टीचर इज ऑलवेज द मदर। नाइस प्रेजेंटेशन, द लवली वॉइस ऑफ योर्स, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड, रवि जोशी पेरेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच रवि जोशी जी फॉर सच अ वंडरफुल वर्ड्स, इट मींस अ लॉट टू अस। एंड इसी के साथ ही ये मैसेज है हमें राजकुमार के संतानी ओके और ये कह रहे हैं कि आरजे आरती जी वेलकम जी, आप कैसी हैं, हैप्पी टीचर्स डे। संगीत कार्यक्रम, आपकी बातचीत भी बहुत अच्छी है, इतनी शक्ति दे हमें दाता। अंकुश मूवी का ये सॉन्ग सुनने की फरमाइश की है। ओके सर, एंड नमस्कार जी आपको, जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, काजल, सीमा, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी और बलवीर, इन सभी ने किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल कर लीजिए। तो चलिए जी, कर लिया हमने। गुड आफ्टरनून मेरा वाला सॉन्ग किशोर कुमार की आवाज में, गीत रिमझिम गिरे सावन सुनवा दीजिए। ये किशन वंजाली, नीलम, स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से कह रहे हैं। बहुत सारे गीतों की फरमाइश इन्होंने भेजी है मुझे बैक टू बैक। मिस्टर नटवरलाल का परदेसी, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, इन सभी ने। और इसी के साथ ही हमें ये फरमाइश है राहत और गजाला, इन्होंने आशिक मूवी का सॉन्ग पहले भी फरमाइश की थी। जैद और हुडा गाजियाबाद से, राजपूत मूवी से, मेरा संग संग आए तेरी यादों का मेला। ओके बिल्कुल, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी ने जो भी फरमाइश की है उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरी कर सकें। फिलहाल ए हैरत आशिकी इस फिल्म की फरमाइश की गई थी गुरु फिल्म से, ये आपके लिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

जी नजर के सामने और जिगर के पास आप सभी हैं और आप सबकी फरमाइश और अब समय हो चला है हमारे चलेगा, लेकिन उससे पहले जो दो तीन फरमाइश मैं पढ़ना चाहूंगी। गुड्डू धाकड़ उज्जैन जिले के बीडवान गांव से पूरा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, हमारी कोई विशेष फरमाइश नहीं है, सभी की फरमाइश हमें अच्छी लग रही है। थैंक यू गुड्डू जी, प्लीज प्ले माई सॉन्ग मैं अगर सामने आ भी गया मूवी राज से। ये वसीम दर कह रहे हैं। आरती जी नमस्कार कार ये बहुत बड़ा मैसेज है संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध कार्यक्रम को सुनने की, इन्होंने पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब से ये मैसेज है। राधे राधे अपिता मोहिनी राहुल यूपी से कोई भी गाना सुनवा दीजिए, तो हमने बहुत अच्छे गाने सुनवाए हैं। कोलार रोड भोपाल से रामबाबू मालवीय मनीषा मालवीय फिल्म दिल है कि मानता नहीं इसकी फरमाइश की है। और साथ ही लास्ट मैसेज मैं लेने वाली हूँ आपका है, ये है आरजे जी फिल्म हंसते जख्म से इन्होंने गीत की फरमाइश की है। मेरा वाले सॉन्ग आरती साहिबा जी को प्यार भरा नमस्कार गन्नौर से, ये हमें बोल रहे हैं आदिल कमर। और अब किसी की फरमाइश पूरी नहीं होगी। हैप्पी हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। और ठीक इसके बाद और कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो आप सुनेंगे वो जरूर मैं आपको बता के जाऊंगी। आप सुनेंगे ठीक इसके बाद दीपिका भटनागर के साथ आशियाना, एसएम शहीद आपके लिए लेकर आएंगे रेडियो डॉक्टर का प्रोग्राम, और सिटी लाइट्स में भी रहेंगे एसएम शहीद आपके साथ, अमरीन खान के साथ रहिएगा मैसेज मसाला मिक्स में, वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम सुहासिनी के साथ रहेगा, और यूं ही 24/7 हम आपके लिए काम करते रहेंगे। एनीवेज अब तो समय हो चला है मेरे चलने का, बहुत जल्द मिलेगा मैं वादा करती हूँ, और दिल से यही दुआएं करती हूं कि आज का टीचर्स डे आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी सहित कई अन्य नेताओं ने शिक्षकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। वो कल गृह मंत्रालय के विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कोयला मंत्रालय ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के तहत कोई आवेदन नहीं मिलने की खबरों को खारिज किया है। मध्य प्रदेश में भोपाल देवास रोड पर स्थित फांदा टोल प्लाजा पर बैरियर मुक्त टोल वसूली प्रणाली की पायलट टेस्टिंग शुरू हो गई है। भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने व्यापक तैयारियां शुरू की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। डेनमार्क और यूरोपीय संघ के 4 अन्य देशों ने यूरोपीय संघ से बाहर के देशों में प्रवासियों की वापसी के लिए केंद्र स्थापित करने की एक रूपरेखा पर सहमति जताई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस पर गिद्धों के संरक्षण पर बल दिया है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। बिहार में गंगा, गंडक और कोसी नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और महिला एशिया कप 2026 में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। ये थे अब तक के AIR मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस वक्त आपके साथ जुड़ चुकी है आपकी दोस्त दीपिका। लेकर हाजिर हूँ मैं प्रोग्राम आशियाना। सुहाना सा काफी मौसम हो रहा है और इस सुहाने से मौसम में एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर आपसे बात करने वाली हूँ। खूबसूरत गानों का साथ रहेगा, तो बस आप थाम लीजिए मेरा हाथ और निकल पड़िए इस सफर पर मेरे साथ, जिसमें पूरे एक घंटे मैं आपके साथ रहने वाली हूँ।

इस खूबसूरत से प्यारे से गाने के साथ हो चुकी है शो की शुरुआत। यहाँ इस वक्त हैं आप दीपिका के साथ, प्रोग्राम सुन रहे हैं आशियाना। और जिक्र मैंने छेड़ा था गाने से पहले कि भाई एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर यहाँ मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। देखिए, वक्त बदलता है, हम सभी जानते हैं वक्त बदलता है, वक्त को बदलने से रोका नहीं जा सकता। इस बारे में हजारों बातें की जाती हैं, लिखी जाती हैं, कही जाती हैं, सुनी जाती हैं कि वक्त अपनी स्पीड से चलता है। हाँ, वो बात और है, जब हम किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हमें वक्त की रफ्तार बहुत धीमी लगती है। जब हम ये वक्त किसी ऐसे इंसान के साथ बिता रहे होते हैं जिसके साथ में हमें खुशी और सुकून मिल रहा होता है, तो लगता है कि अरे ये घड़ी तो बहुत तेजी से भाग रही है, अभी तो हम मिले थे और अभी जाने का वक्त हो गया। इसी तरह से मुश्किल का वक्त बहुत धीमे धीमे कटता है, लेकिन जो अच्छा वक्त होता है वो लगता है चुटकी बजाते ही बीत गया। तो वक्त के बदलने, बीतने, आगे बढ़ने के बारे में तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं, पर क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे ये वक्त बदलता है उसके साथ हम कितना बदलते हैं? जी हाँ, हर इंसान वक्त बदलने के साथ बदलता है, क्योंकि ये बीतता हुआ वक्त बहुत सारे सबक देकर जाता है। तो बदलते हुए वक्त के साथ हम कैसे बदल रहे हैं, इसी बारे में करेंगे बातें। फिलहाल के लिए एक और खूबसूरत सा ट्रैक मोनाली ठाकुर की आवाज में एंजॉय कीजिए दीपिका के साथ 102.6 आकाशवाणी FM रेनबो।

कहते हैं ना, वक्त कभी एक जगह ठहरता नहीं, वो चलता रहता है, कभी धूप बनकर, कभी छांव बनकर, कभी किसी याद की तरह, तो कभी किसी नए ख्वाब की तरह। और इस बदलते वक्त के साथ बदलते हैं हम, हमारी पसंद, हमारी प्राथमिकताएं, हमारे लिए रिश्तों के मायने, हमारा जिंदगी देखने का नजरिया। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कभी कभी हम आईने में खुद को देखते हैं और सोचते हैं, मैं हूं, ये मैं ही हूं, मैं पहले तो ऐसा नहीं था। या फिर कभी किसी बात से हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और हमें लगता है कि अरे ये बात अगर कुछ वक्त पहले हुई होती तो मुझे इससे कितना फर्क पड़ता। कुल मिलाकर बदलते वक्त के साथ जो बहुत कुछ बदलता है ना, उसमें सबसे ज्यादा हम बदलते हैं। अब देखिए, इसे गलत या सही कहना बिल्कुल जायज नहीं होगा, क्योंकि वक्त के साथ आप किस तरह से बदल रहे हैं ये मैटर करता है। अगर आप वक्त के साथ एक अच्छी डायरेक्शन में बदल रहे हैं, अगर आपने वक्त के साथ उन चीजों को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिया है जो पहले आपकी एनर्जी ड्रेन करती थी, आपको परेशान करती थी, तो ये अच्छा है। लेकिन अगर वक्त के साथ आप मायूस होते जा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बदलते वक्त के साथ कैसे बदलते हैं हम, इसी बारे में बातें हो रही हैं। आकाशवाणी FM रेनबो पर प्रोग्राम है आशियाना, आपके साथ है आपकी दोस्त दीपिका।

0: पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, AI तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन, डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और AI तकनीशियन डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Dadi, dadi, mehki, mehki, josh hai zabardast, ye chai badi hai mast.
3: Pata ka chai, gazab ka swaad.
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस

0: become progress.
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

वक्त की खासियत है ये बदलता जरूर है, इस बारे में तो ढेर सारी बातें होती रहती है, कहते रहते हैं हम, लेकिन वक्त के साथ जो हम बदल जाते हैं उस पर भी तो जरा ध्यान देना जरूरी है ना। कभी ऐसा होता है कि कोई सपना हमारी पूरी दुनिया हुआ करता था, लेकिन फिर रास्ते कुछ यूं बदले, मंजिल कुछ यूं बदली कि हमें पता चला कि जिस सपने को हम दुनिया समझ रहे थे वो हमारी दुनिया नहीं था। दुनिया तो उस सपने के बिना भी खूबसूरत है। अब ऐसे में कई बार क्या होता है कि जब कोई सपना टूटता है, कोई अपना साथ छोड़ देता है, कोई मंजिल जिसकी तलाश थी वो मिल नहीं पाती है, तो हम बहुत मायूस हो जाते हैं, हमें लगता है दुनिया खत्म हो गई है। लेकिन नहीं, दुनिया खत्म नहीं होती है, बदलते वक्त के साथ थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा कई बार हम बदल जाते हैं, बदलना भी चाहिए। लेकिन अगर आज आपको आपका आने वाला कल अजनबी सा लग रहा है या बीते हुए कल को लेकर बहुत सारा मलाल है तो घबराइए मत, आप बदले हैं, वक्त भी बदला है और बदलना अच्छा भी होता है। इसीलिए वक्त के साथ बदलिए, नया सीखिए। पर हाँ, अगर आप में कुछ बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जिन्हें आप को लगता है कि आपके अंदर जरूर होना चाहिए था, या जिन्हें आपके अंदर वो चीजें हैं तो इस बात से आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, उन चीजों को कभी मत बदलिएगा। क्योंकि देखिए, वक्त लौट कर नहीं आता, लेकिन वक्त के साथ हम हर बार एक नया हम जरूर पाते हैं, और उस हम के साथ ही हमें जिंदगी को आगे बढ़ाना है। आकाशवाणी एफ एम रेनबो पर दीपिका है आपके साथ, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आशियाना, बातें हो रही हैं बदलते वक्त के साथ हम कितना बदलते हैं।

0: रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM रेनबो। आपके साथ है आपकी दोस्त दीपिका। प्रोग्राम है आशियाना।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: कभी आपने गौर किया है, एक ही शहर होता है, एक ही सड़क, वही आसमान, लेकिन जब कुछ साल बाद हम उस जगह लौटते हैं तो सब कुछ बदला बदला होता है। असल में वो शहर जितना बदला होता है उससे कहीं ज्यादा हम बदल गए होते हैं, क्योंकि वक्त के साथ ये जो हमारा रिश्ता है ये हमें बहुत बदल देता है। कल तक जो बात हमें रात भर सोने नहीं देती थी, आज वही बात जो है बस चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देकर गुजर जाती है। कल तक जिस इंसान का एक मैसेज हमारे दिल की धड़कन बढ़ा देता था, आज उसका नाम भी यादों की भीड़ में खो चुका है। कल तक जिन बातों पर घंटों बैठकर हम पछताया करते थे, आज बस जिंदगी की किताब के एक पन्ने में वो सबक बनकर कैद हो गई है। और अब समझ आ रहा है कि असल में ये अंत नहीं था जिसे हम अंत सोच रहे थे, असल में बस हमारा रास्ता बदल रहा था। देखिए, हम सभी अपने अपने हिस्से का वक्त जी रहे हैं। किसी का अच्छा वक्त चल रहा है, किसी का मुश्किल दौर चल रहा है, किसी की जिंदगी में नया प्यार दस्तक दे रहा है, कोई पुराने रिश्ते की यादों को समेट रहा है, किसी को पहली नौकरी मिली है शायद आज, लेकिन किसी की नौकरी आज अचानक से छूट गई है, किसी के घर में नई किलकारी गूंजी है, लेकिन कोई आज भी किसी के लौटने का इंतजार कर रहा है। और यही जिंदगी है। इस जिंदगी में आपको ये याद रखना है कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, और बदलते वक्त के साथ जब हम बदलते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो ये अपने आप में बहुत खास एक्सपीरियंस है। इससे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। कई बार हम अपने कंफर्ट जोन से निकलने से घबराते हैं, हमें लगता है कि चेंज पता नहीं ठीक होगा।

या नहीं होगा, या अगर चीजें बदलेंगी तो कैसा होगा, तो कुछ नहीं होगा। वक्त बदल रहा है, आप बदल सकते हैं और नए वक्त में कुछ नया सीख सकते हैं। अगर कुछ ऐसा है जिसे पीछे छोड़ने से आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो बेशक उसे छोड़ दीजिए। चाहे वो कोई बात हो, कोई गिला हो, कोई शिकवा हो, कोई ग्रज हो जो आपने जिंदगी में अपने अंदर दबा कर रखा है, कोई ऐसी बात हो जो मायूस कर रही है, छोड़ दीजिए और निकल पड़िए उस रास्ते पर जहां वक्त ढेर सारी खुशियां लेकर आपका इंतजार कर रहा है। आकाशवाणी FM रेनबो, आप सुन रहे हैं इस वक्त, आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका।

बदलते वक्त के साथ जब हम खुद बदलते हैं तो एक गलती करते हैं अक्सर। जानते हैं क्या, हम जिंदगी के अगले पड़ाव की तैयारी में उस पड़ाव को जीना भूल जाते हैं जहां अभी हम खड़े हैं, जहां अभी हम हैं। आज ये बात मेरी मानकर देखिए कि जिंदगी में जिस पल आप अभी जी रहे हैं उसे महसूस करके देखिए, क्योंकि बदलते वक्त के साथ आप कब बदल जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसीलिए आज की चाय को जरा थोड़ा धीमे पीजिए, आज जो भी इंसान आपसे मिल रहा है उसकी बात थोड़ी ध्यान से सुनिए, माँ की आवाज में छुपी फिक्र को समझिए, पापा की खामोशी को पढ़िए, कोई दोस्त है जिससे हफ्तों से बात नहीं हुई है उसे

फोन मिला दीजिए, कोई अपना है जिसके लिए नाराजगी लेकर दिल में बैठे हैं तो जरा वो नाराजगी सुलझा लीजिए, क्योंकि वक्त के साथ चीजें बदल जाती हैं और इसीलिए जरूरी है हर पल को, हर वक्त को खुलकर जीना, क्योंकि वक्त कब बदलेगा, वक्त के साथ हम कब बदलेंगे, ये हमें पता भी नहीं चलता है।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर दीपिका के साथ हैं आप। प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं आशियाना, और अभी बस घड़ी की सुई इस तरफ इशारा कर रही है कि इस प्रोग्राम में आपसे इजाजत लेने का जो वक्त है वो आ गया है। क्योंकि देखिए, वक्त तो आगे बढ़ रहा है, वक्त की ही आज यहां पर हम बात कर रहे थे कि कैसे वक्त आगे बढ़ता है, कैसे वक्त बदलता है, और कैसे बदलते वक्त के साथ बदलते जाते हैं हम। यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल है। कई बार हम टूटने के बाद थोड़े और ज्यादा संभल जाते हैं, थोड़े ज्यादा समझदार हो जाते हैं, कई बार थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो कई बार जब बहुत इंतजार कर लेते हैं किसी चीज का तो थोड़ा और पेशेंस रखने लग जाते हैं। लेकिन हर बदलते वक्त के साथ हम बदलते हैं, और ये जो हमारे अलग अलग वर्जन्स होते हैं ना, क्योंकि आप मानिए या नहीं मानिए, महसूस ये हम सब करते हैं।

कि जिंदगी में हम भी बहुत अलग अलग वर्जन्स में आगे बढ़ते हैं. हम जैसे थे वैसे नहीं हैं, जैसे हैं वैसे आगे चलकर नहीं होंगे. और ये मैं एज के हिसाब से बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं सोच के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से, चीज़ों को देखने के नज़रिए के हिसाब से बात कर रही हूँ. तो बस इसीलिए वक्त के साथ बदलिए, आगे बढ़िए. लेकिन हाँ, वक्त की जो सबसे खूबसूरत बात है वो यही है कि रुकता भले ही किसी के लिए नहीं है, लेकिन हमेशा सबको मौका जरूर देता है. बस इसीलिए थोड़ा ठहरिए, अगर जिंदगी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही है. जो बीत गया है उसे खूबसूरत याद रहने दीजिए, जो आने वाला है उसे एक उम्मीद रहने दीजिए, जो आज आपके पास है वही जिंदगी है, उसे शिद्दत से जी लीजिए. और फिलहाल दीपिका को इजाजत दीजिए, 3 बजे से आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर. लेकिन अभी इस प्रोग्राम में यानी कि आशियाना में आपसे मैं ले रही हूँ इजाजत. दोबारा जुड़ूंगी आपके साथ 4 बजे, लेकर आऊंगी प्रोग्राम अल्फा जैन. आप अपने साथ को आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ बनाए रखिए. और यहां अभी इस वक्त दीपिका को इजाजत दीजिए, सुनते रहिए और वक्त के साथ जिंदगी को जीते रहिए.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
3: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो 102.6 के माध्यम से प्रस्तुत होने वाले खास कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। रेडियो डॉक्टर में हम एक खास विषय लाते हैं जो हमारी लाइफस्टाइल से, हमारी ऐसी समस्याओं से जुड़ा है जो कि हमें जिंदगी में कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। इसके लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है, बस एयरवेव्स 102.6 के इस रोजाना प्रतिदिन आने वाले कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर से 3 से 4 दोपहर में जुड़ना है और अपनी समस्याओं को लेकर बस यूं ही निदान पाकर जब आप सफल होंगे तो यकीन मानिए जो खुशी होगी ना, वो जो दिल से खुशी होगी वो हमसे कनेक्टेड होगी, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी दिल से दिल तक काम कर रही है। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है स्पाइनल डेफोर्मिटीज टाइप्स कॉसेस एंड ट्रीटमेंट। रीढ़ की हड्डी से जुड़े विकार और क्या प्रकार हो सकते हैं कारण और इलाज, सभी तरह की रीढ़ की हड्डी से जुड़ी विकारों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भावुक गर्ग। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार,
4: धन्यवाद।
3: तो अपने सभी लिसनर्स के लिए बता दूं कि हम डॉक्टर से पहले तो जान लेते हैं कि ये बीमारी क्या है, क्या डेफोर्मिटी हो सकती है रीढ़ की हड्डी में, लेकिन आपको भी बता दूं अगर आप जानते हैं और ऐसी किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं या प्रॉब्लम में हैं तो आप हमसे जरूर कनेक्ट करें। डॉक्टर, आपके स्वागत के साथ साथ हमारे बहुत से लिसनर्स के मैसेजेस आने लग गए हैं और सब जानना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या, रीढ़ की हड्डी के जो विकार हैं, इस पर बात करने से पहले इसको जान लेते हैं।
4: देखिए, रीढ़ की हड्डी के जो विकार हैं, जिसको हम बेसिकली जो डिफॉर्मिटीज की बात करते हैं, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कुबड़ापन, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं बच्चे हैं या बड़े में भी है, स्पाइनल कॉर्ड जो स्पाइनल कॉलम है वो टेढ़ा हो जाता है
3: जी।
4: अब ये टेढ़ा जो है या तो साइड में कर्व हो सकता है जिससे कि स्पाइन जो है वो सी शेप का हो जाता है, या फिर ये जो है पीछे की तरफ भी कुबड़ निकल सकता है, और ये यूजली बच्चों में कॉमन होता है, बट आज की तारीख में बड़ों में भी ये, चूंकि हमारी एज जो जीने की एज है वो काफी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से एल्डरली एज ग्रुप में भी देखा जाने लगा है, जिसको हम डीजनरेटिव स्कोलियोसिस कहते हैं, जो कि डीजनरेशन की वजह से होता है, बट मोस्ट कॉमनली ये जो है बच्चों में देखा जाता है। नाउ बच्चों की अगर बात करें तो ओवरऑल अगर हम परसेंटेज की बात करें जनरल पॉपुलेशन में, तो जनरल पॉपुलेशन में इसका इंसिडेंस 0.7% तक होता है। मतलब अगर हम 1000 बच्चे लें तो किसी एक जो है 7 बच्चों को ये प्रॉब्लम मिलेगी। अब ये उनमें से भी, उन 7 बच्चों में से भी जो है अगर हम ऐसे 700 बच्चे लें तो किसी एक कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम होती है। सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम से मतलब क्या है कि जिससे बच्चे का टेढ़ापन हो जाता है। तो अब इसके काफी सारे कारण होते हैं कि जन्म से कोई हड्डी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी बनी है जिसकी वजह से टेढ़ापन है, या मांसपेशियां ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं, एक साइड की ज्यादा काम करती हैं एक साइड की कम काम करती हैं, तो उसकी वजह से स्पाइन में टेढ़ापन आ जाता है, या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जेनेटिक बीमारियां ऐसी होती हैं जिनसे कि बैलेंस नहीं बनता है तो स्पाइन का टेढ़ापन शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं इसके, स्पेशली अगर ये छोटे बच्चों में हो जाता है तो बहुत ज्यादा चिंता की जनक बात है, क्योंकि उससे लंग्स की डेवलपमेंट भी नहीं होती है, जो शरीर के वाइटल्स ऑर्गन्स है, स्पाइन जो है सपोर्ट देता है सारी मसल्स को, तो वो सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो खाली स्पाइन से रिलेटेड नहीं, ये हार्ट को भी लंग्स को भी इफेक्ट कर सकता है, स्पेशली अगर बच्चों में है तो।
3: तो श्रोताओं, जैसे आपने हमारे विषय को जाना और विषय की गंभीरता से आप सभी अब परिचित हैं कि कितना जरूरी है इस बारे में जानकारी रखना कि अगर आपके किसी परिचित को ऐसी कोई समस्या है और आप नहीं ध्यान दे रहे हैं कहीं ये बढ़ ना जाए। स्पाइनल डेफोर्मिटीज पर बात करेंगे, इसके क्या टाइप हो सकते हैं, कॉसेस और ट्रीटमेंट, सभी कुछ इस प्रोग्राम में। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो से कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: श्रोता हूँ, कभी कभी तो जज्बा भी हमारा पूरा होता है, लेकिन हमारी शारीरिक समस्याएं हमें इस तरह से घेर लेती हैं कि हम चाहते हुए भी किसी काम को नहीं कर पाते, है ना? आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप अपनी इस समस्या को हमें जरूर लिख भेजें। हम बात कर रहे हैं आज रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से स्पाइनल डेफोर्मिटीज के बारे में, क्या टाइप्स, कॉसेस और ट्रीटमेंट हो सकते हैं, ये हमारा आज का विषय है। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर भावुक गर्ग हैं। सर, पहले क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही है, तो हम जो ये हमारा स्पाइनल स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है और इसमें क्या कर्व्स हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स आती है, इस टॉपिक को आपसे जानना चाहेंगे।
1: देखिए, स्पाइन को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो नेक वाला रीजन हो गया, उसके बाद हमारा चेस्ट वाला रीजन हो गया, उसके बाद नीचे जो कमर वाला रीजन है वो हो गया, और एक नीचे सैक्रल रीजन जिसको हम बोलते हैं वो हो गया। तो ये अगर आप देखें, इसको अगर हम सामने से देखें तो पूरा स्पाइन स्ट्रेट दिखता है नॉर्मली, और अगर हम इसको साइड से देखें तो जो गर्दन के अंदर है ये उल्टा सी बनाता है, फिर चेस्ट वाले रीजन में ये उल्टा सी बनाता है, फिर लंबर रीजन में, कमर वाले रीजन में अगेन से ये सी बनाता है, और फिर अगेन सैक्रल नीचे की जरूरत टेल बोन वाला रीजन है उसमें ये फिर से सी बनाता है। तो ये नॉर्मल एंगुलेशन होते हैं, चार कर्व होते हैं स्पाइन के अंदर, और इनकी यूजुअली जो वैल्यू है वो कुछ वैल्यू होती है इस कर्व की, अगर ये एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो यूजुअली जैसे सर्वाइकल स्पाइन में अगर हम गर्दन की बात करें तो 20 से 30 डिग्री का नॉर्मल कर्व होता है, चेस्ट की बात करें तो 40 से 60 डिग्री तक नॉर्मल होता है, कमर में बात करें तो अगेन 40 से 60 डिग्री तक नॉर्मल होता है। तो ये चीजें वैल्यूज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है
0: जी।

0: बता रही थी कि शुरुआती समय में बच्चों में ये बीमारी होती है और समय पर पता चल जाए तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा इलाज किया जा सकता है। तो क्या इससे रिलेटेड क्या हमें ऐसी कुछ अवेयरनेस की जरूरत है कि हम स्कूलों में या फिर बच्चे स्कूल जा रहे हैं या पेरेंट्स भी उस वहां अपनी भूमिका निभाएं, वहीं अगर वहां पहचान हो जाए इस प्रॉब्लम की, स्पाइनल डेफोर्मिटीज की, तो जल्दी उसको पकड़कर इलाज के लिए ठीक किया जा सकता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, जो स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम है, ये यंग लड़कियों में ज्यादा कॉमन होती है। अगर हम रेशियो की बात करें तो 7:1 का रेशियो है कि 7 लड़कियों और 1 लड़के को ये प्रॉब्लम होती है। और चूंकि लड़कियां हैं, इंडियन जो हमारा कल्चर है वो थोड़ा सा ज्यादा कपड़े पहनने का है उस तरीके से, तो ये यूजली पता भी लेट चलता है। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर ट्रीटमेंट भी फिर काफी जो है उस हिसाब से चेंज हो जाता है। इसको हम नेग्लेक्टेड स्कोलियोसिस बोलते हैं। तो यंग लड़कियों में इसका पता लगाना जो है, अगर जल्दी पता चल जाए तो ट्रीटमेंट भी ईजी हो जाता है और अच्छा भी हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग, हमारी सोसाइटी ने भी जो है वो स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसमें कि हम लोग स्कूल जाते हैं और बच्चों के शोल्डर्स वगैरह देखते हैं, शोल्डर्स पे लेवल पे है कि नहीं है, कूल्हे सेम लेवल पे है कि नहीं है, कोई चेस्ट जो है, छाती जो है वो पीछे से उठी तो नहीं हुई है एक तरीके से। तो ये जस्ट सिंपल देखने से ही हमें समझ में आ जाता है कि इसको प्रॉब्लम है कि नहीं है। और फिर अगर उसको हम प्रॉब्लम सस्पेक्ट करते हैं तो फिर उसको हम एक्सरे कराते हैं और एक्सरे में ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि उसको, बच्चे को जो है वो स्पाइनल डिफॉर्मिटी है कि नहीं है।
0: जी सर, ये जो आपने कुछ बिंदु बताए कि हाँ इस तरह से आप जज करते हैं, तो पेरेंट्स को भी थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है कि वो भी अपने बच्चे में चलते फिरते या उठते बैठते समय ये देखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनको लगता है कि उनके शोल्डर्स बच्चों के सेम लेवल पे नहीं है या गर्दन एक तरफ झुका हुआ है या चलते हुए पैर जो है वो एक तरफ ज्यादा पड़ता है, तो ये सब चीजें सिग्नल हो सकते हैं कि बच्चे को स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो सकती है, उसको वो कराना चाहिए। इसीलिए जैसे इंडिया में एक और चीज है कि टीबी बहुत कॉमन है, तो बच्चों में टीबी अगर हो जाता है तो जो है बोन घिस खराब हो जाती है, तो बच्चों में भी कुबड़ निकल आता है। तो टीबी भी जो है वो इंडिया में एक बहुत बड़ा कॉमन कॉज है। तो अगर किसी को, बच्चे को टीबी की शिकायत है तो उसको भी रेगुलर फॉलोअप जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता बहुत जरूरी है, क्योंकि वो डिफॉर्मिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है।
0: जी सर, आपने एक अनुमान बताया कि 7:1 मतलब अगर 7 है तो और 1 लड़के को होती है, लेकिन ये तो आपने बताया कि बचपन से ही होता है, लेकिन हम तो मानकर चलते हैं कि महिलाओं में आगे चलकर जब वो गर्भावस्था के बाद की एक सिचुएशन आती है वहां जाके उन्हें स्पाइनल से जुड़ी प्रॉब्लम ज्यादा आने लग जाती हैं, लेकिन ये तो बहुत शुरुआती दौर से ही होना।
1: ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो हम फीमेल्स में, नॉर्मल फीमेल्स में बात कर रहे हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है। जो उनको लेटरल डिफॉर्मिटीज हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस, चूंकि फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है इसीलिए उनमें आती है। वो प्रॉब्लम्स अलग तरीके की डिफॉर्मिटीज होती है। डिफॉर्मिटीज अगेन वो भी डिफॉर्मिटीज हैं, बट ये जो है मैं डिफॉर्मिटीज की बात कर रहा हूँ ये जन्म से जो शुरू होती हैं या यंग एज ग्रुप में होती है। जो ऑस्टियोपोरोसिस वाली हैं वो फीमेल्स में विटामिन डी की कमी की वजह से और जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उनमें फ्रैक्चर होने की वजह से स्पाइन झुकता हुआ चला जाता है। तो जो स्पाइन आगे झुकता हुआ चला जाता है उससे फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं।
0: जी, तो दोनों अलग अलग चीजें। आपसे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि महिलाओं में ये बहुत जल्दी से हो जाता है और ये स्पाइनल डेफोर्मिटीज का ही एक रूप है, तो ऐसे में शुरुआत से क्या करना चाहिए जिससे कि हम इस समस्या से ना ही ग्रसित।
1: देखिए ऐसा है कि 30 से 35 साल की जो एज है फीमेल्स में, उसी टाइम तक जो है बोन्स बनती हैं, जो उसके बाद ये हार्मोनल्स का डिक्लाइन शुरू हो जाता है, तो फिर वो जो है वो बोन से कैल्शियम और ये सब निकलना शुरू हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत अगर हम माने कहें तो वो 35 साल की एज में अप्रॉक्सिमेटली स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए बेस्ट ये कि जितना, जैसे बैंक में आप जितना डिपॉजिट करेंगे उतना ही जो है आपका आगे का काम ठीक चलेगा। तो 30-35 साल की एज तक आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, विटामिन डी लेना है, कैल्शियम का एडिक्वेट इनटेक रखनी है, एक्सरसाइजेस करनी है रेगुलर, वेट को जो है वो कंट्रोल में रखना है। तो ये सब चीजें जो आप करेंगे तो आपका बैंक में डिपॉजिट बढ़ेगा और उसी हिसाब से जो है फिर आपकी आगे की लाइफ में ऑस्टियोपोरोसिस लेट आएगा।
0: सर एक, क्योंकि आपने लक्षण बताया कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों में देखें तो उनके चलने को लेकर, उनके गर्दन के झुकाव को लेकर भी वो पहचान करें, कुछ और लक्षण या सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे कि हम स्पाइनल डिफॉर्मिटीज को पहचान कर लें?
1: बेसिक तो यही जो मैंने आपको बताया, यही प्रॉब्लम है। लेकिन इसके अलावा अगर बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत है और थोड़ा टेढ़ापन भी दिखता है स्पाइन में, तो ये भी एक साइन हो सकता है। इसके अलावा अगर पैरों में कमजोरी आ रही है, वीकनेस आ रही है, सेंसेशंस में प्रॉब्लम है, तो भी ये हिडन साइंस हो सकते हैं कि बच्चे को जो है स्पाइन में प्रॉब्लम्स है।
0: एक प्रश्न हमारे पास आया है हमारे लिसनर का, ये मनोहर लाल गांधी जी हैं चाणक्य चौक गाजियाबाद से, जानना चाहते हैं कि रीढ़ की हड्डी 50+ के बाद, 50+ के बाद झुकने में, बैठते उठते समय दर्द होना, चलते समय परेशानी होना, इसका क्या समाधान है? क्या रीढ़ की हड्डी से दिमाग का सीधा कनेक्शन है, कॉन्टेक्ट है?
1: रीढ़ की हड्डी का दिमाग से सीधा कॉन्टेक्ट है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो दिमाग से ही, ब्रेन से ही आती है, नर्व्स का कंटिन्यूएशन है। जो ये प्रॉब्लम बता रहे हैं कि झुकना और इस 50 साल के बाद में, उसके तो काफी सारे कारण हो सकते हैं। एज रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं, अंदर नर्व्स के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, नर्व दब भी रही होती हैं, तो वो काफी सारे कारण हो सकते हैं। वो तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इनको बेहतर है कि एक डॉक्टर के पास जाके अपना पूरा इवेल्यूशन कराना चाहिए, और उसके लिए एक्सरेज भी और जरूरत पड़ी तो MRI भी फिर करा के उसके हिसाब से इलाज किया जाता है।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 के माध्यम से कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हम बात कर रहे हैं स्पाइनल डेफोर्मिटीज के बारे में, टाइप्स, कॉसेस एंड ट्रीटमेंट, डॉक्टर भावुक गर्ग से। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा कनेक्ट होते हैं, तब तक आपके प्रश्नों का मैं इंतजार करूंगी।
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजे healthairdelhi@gmail.com पर।
0: एक बार पुनः मैं सृजन राजपूत आपका स्वागत करती हूं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। हम बात कर रहे हैं आज स्पाइनल डेफोर्मिटीज के बारे में, रीढ़ की हड्डी में क्या विकार हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होता है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर बता रहे थे कि लाइफस्टाइल हमारा आजकल का ऐसा हो गया है कि हम ज्यादा ऐसी डेफोर्मिटीज से घिर चुके हैं, चाहे अब देख लीजिए हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है या फिर हमने एक्टिविटीज कम कर दी है। एग्जैक्टली क्या हमने कर लिया है अपने लाइफस्टाइल के साथ इस समय कि हम इतनी डेफोर्मिटीज से घिर चुके हैं सर?
1: देखिए, जो कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज हैं, आजकल पॉल्यूशन बहुत है जिसका हमें नहीं मालूम है, तो उसका भी जो है फर्क पड़ता ही है प्रेगनेंसी में और उन सब चीजों के, जो ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। एग्जैक्ट कारण तो पॉइंट आउट करना मुश्किल है, बट ये सब पॉल्यूशन है, दवाइयां हैं, लेट ऑन जो मैरिजेस हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं से इस सबके लिए जिम्मेवार है। दूसरा, जो आगे चल के जैसे हमारी पॉस्चर है उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जैसे कंप्यूटर पे काम करना बढ़ता जा रहा है, कंप्यूटर वाले प्रोफेशनल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो चेयर पे बैठने का पॉस्चर गलत है हमारा, टीवी देखने का पॉस्चर गलत है, मोबाइल फोन्स हैं जिनको हम रेगुलरली एक तरफ झुक के यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे स्पाइन को अफेक्ट करती हैं और उसकी वजह से जो है पॉस्चर में चेंजेस आते हैं और अल्टीमेटली डिजनरेशन और वो सब चीजें लेके जो है स्पाइन को टेढ़ा मेढ़ा कर देती हैं।
0: जी सर, क्या ये जो डिफॉर्मिटीज होती हैं स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, ये क्योरेबल हैं? और क्या इसकी स्टार्टिंग से अगर बात करें, अगर ये क्योरेबल है तो क्या बिल्कुल फर्स्टली हम सर्जरी की तरफ आ जाते हैं या फिर पहले उसे देखा जाता है, ऑब्जर्व करते हैं कुछ फिजियोथेरेपी, या फिर कैसे उसको हम आगे बढ़ने से रोकते हैं अगर ये प्रॉब्लम हमें हो चुकी है, कोई डिफॉर्मिटीज हमसे कनेक्टेड है?
1: स्पाइनल डिफॉर्मिटीज की ट्रीटमेंट बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है और ट्रीटमेंट ये क्योरेबल है, ऐसा नहीं है कि क्योरेबल नहीं है। सबसे पहले जैसे हम हमारा ये भी देखते हैं कि कितना कर्व है, कितना डिग्री का एंगल है, अगर जरूरत से एक फिजियोलॉजिकल रेंज में अगर ये है तो उसको फिर हम, हमारा मेन एम ये रहता है इसको आगे बढ़ने से रोका जाए, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराते हैं, स्पेशल एक्सरसाइजेस हैं, ब्रेसेस हम देते हैं बच्चों को, ब्रेसेस बनके उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रेगुलर फॉलोअप करें, हर 6 महीने में आके हमें दिखाएं, हम देखते हैं कि वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट में चेंजेस करते हैं। ब्रेसेस भी कई तरीके के होते हैं, आजकल हम लोग 3D प्रिंटेड ब्रेसेस भी यूज करते हैं कि पेशेंट के मेजरमेंट के हिसाब से जो है उसको स्पेशल तरीके के ब्रेसेस देते हैं। फिर इसके अलावा सर्जरीज होती हैं, सर्जरीज भी कई तरीके की सर्जरीज हैं, छोटा बच्चा है तो उसमें चूंकि हमें ग्रोथ भी करनी है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए स्पेशल तरह की सर्जरीज होती हैं ताकि ग्रोथ भी होती रहे, और अगर बड़ा है तो फिर उसमें अलग तरीके से होते हैं कि उसमें स्क्रू रॉड लगा के जो है उसको फिक्स किया जाता है। तो एज के ऊपर, कॉज के ऊपर और प्रेजेंटेशन के ऊपर कितनी सिवियर डिफॉर्मिटीज, इसके हिसाब से इसके अलग अलग तरीके के इलाज होते हैं।
0: जी सर, क्या छोटी उम्र में अगर ये कोई डिफॉर्मिटीज है किसी बच्चे में तो उसमें ऐसी समस्या आगे थोड़ा कि हाइट नहीं बढ़ रही है या फिर अब उसको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होने लग गई, ये जल्दी देखने में मिलता है?
1: जी बिल्कुल, ये जितना देखिए स्पाइन अगर डिफॉर्मिटी है किसी के अंदर तो ऑब्वियसली उसके स्पाइन पे अबनॉर्मल प्रेशर्स पड़ रहे हैं, तो सारी चीजें इफेक्ट होते हैं। 10 साल से उम्र में अगर बच्चा छोटा है तो उसके लंग्स और हार्ट की डेवलपमेंट पे भी काफी इफेक्ट पड़ते हैं, स्पेशली अगर 10 साल से छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें हमें और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि उनकी किडनीज की भी प्रॉब्लम होती है, उनके हार्ट में भी प्रॉब्लम्स मिलती हैं, हमें लंग्स में भी प्रॉब्लम मिलती है, तो सारे टेस्ट भी जो है कराना चाहिए।
0: बिल्कुल श्रोताओं, जिस तरह आप जान पा रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी का जो जुड़ाव है वो हमारे पूरे शरीर में, एक ऐसा मेरुदंड का ये जो जुड़ाव है जो हमारे पूरे शरीर को चलने फिरने में, उठने बैठने में और हमारी पूरी लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर सकता है। वहीं डॉक्टर बता रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो आपके कंधे में या सर में दर्द कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके लंग्स को भी अफेक्ट कर रहा है, आपके किडनी को भी अफेक्ट कर रहा है, और फिर अगर बच्चों में ऐसी समस्या आ गई है और नहीं उसको टाइम पर जज किया गया, नहीं रोका गया, तो आगे चल के उनकी हाइट बढ़ने से रिलेटेड और भी समस्याएं हो सकती हैं। एक प्रश्न हमारे पास आया है, ये मिस्टर सिंह है सुभाष नगर से, ये जानना चाहते हैं कि जो ये रीढ़ की हड्डी में अगर ज्यादा प्रॉब्लम है स्क्रीन टाइम के चलते, तो इसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, क्या रीजंस और हैं ऐसे?

0: तो जैसे मैंने बताया, पॉस्चर को अगर आप करेक्ट करेंगे तो उससे काफी फर्क पड़ता है। रेगुलर स्पाइन की एक्सरसाइजेस, आपके एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आप करें, पॉस्चर ठीक रखें। चेयर पे जैसे अगर आप काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो चेयर आपकी इतनी हाइट पे हो कि लेग्स जो फीट हैं वो आपके ग्राउंड के ऊपर पूरी तरह से रखे हुए हों, ना ज्यादा ऊंचे हों ज्यादा नीचे हो। इसके अलावा जो आपको एल्बोज जो है वो आपके एल्बो रेस्ट होने चाहिए साइड में, टेबल चेयर के साइड में आपके एल्बोज जो है वो टेबल पे रेस्ट करनी चाहिए। जो कीबोर्ड पे अगर आप काम कर रहे हैं तो कीबोर्ड पे सिर्फ रिस्ट जो है रेस्ट होनी चाहिए, सिर्फ फिंगर्स मूव करनी चाहिए। स्क्रीन जो है वो आपके सामने आईज के लेवल पे होनी चाहिए, जो उसका अपर बॉर्डर है स्क्रीन का वो आपके आईज के लेवल पे होना चाहिए, और इतने डिस्टेंस पे होनी चाहिए स्क्रीन कि वो आपकी आईज के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये सब चीजें बेसिक हैं। हर एक घंटे के बाद हम लोग बोलते हैं, जिनके 6-7 घंटे की डेली की सिटिंग होती है उनको हम ये बोलते हैं कि आप 50 मिनट्स एन आर का रूल फॉलो करिए। दैट मीन्स कि अगर आप 50 मिनट बैठे हुए हैं तो 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, खड़े होकर आ जाइए, वॉक करके आ जाइए, घूम के आ जाइए। या जिनका फील्ड वर्क है जो घंटे घंटे खड़े रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि आप 50 मिनट के बाद 10 मिनट का बैठने का ब्रेक ले लीजिए। वो चीजें सब जरूरी हैं।
1: जिस तरह डॉक्टर बता रहे हैं कि आपको अपना काम तो करना जरूरी है, चाहे आप फिजिकल वर्क करते हो या मेंटल वर्क करते हो, तो मेंटल वर्क अगर आप करते हैं तो वहीं 10 मिनट्स का ब्रेक आप अपने उठने के लिए लीजिए, और अगर आप फिजिकल वर्क करते हैं तो 10 मिनट्स का ब्रेक आप अपने बैठने के लिए लीजिए। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से रीढ़ की हड्डी से जुड़े विकारों के बारे में। डॉक्टर भावुक गर्ग, एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर आकाशवाणी रेनबो 102.6 के माध्यम से। मैं सृजन आपके साथ हूं और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर भावुक गर्ग। डॉक्टर भावुक गर्ग से आज हम बात कर रहे हैं रीढ़ की हड्डी से जुड़े विकारों के बारे में, उनके प्रकार, कारण और इलाज। ये हमारा आज का विषय, स्पाइनल डेफॉर्मिटीज। हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं, ये हैं रघुविंद्र सिंह जी सुभाष नगर नई दिल्ली से। डॉक्टर, ये जानना चाहते हैं कि रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होने पर बेल्ट का क्या रोल है, वो कितना रिलीवर हो सकता है।
2: देखिए, बेल्ट जो है कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, पहली बात तो ये। अगर बेल्ट आपको अपने आप वैसे भी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि बेल्ट अगर आप ऐसे यूज कर रहे हैं, रेगुलर यूज कर रहे हैं, तो उसके आपके जो मसल्स हैं वो वीक होती चली जाती हैं और फिर एक विशेष सर्कल बन जाता है कि आप बेल्ट पहनते रहेंगे, मसल्स कमजोर होती रहेंगे, रिकवरी होगी नहीं। तो बेल्ट के बहुत ही स्पेसिफिक यूज होते हैं और यूजली इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं कि कोई ऐसी चीज है, जैसे सपोज कोई इन्फेक्शन है जिसको ठीक होने के लिए हम दवाई दे रहे हैं और भी हम होप करते हैं कि वो एक दो महीने में ठीक हो जाएगा, तब तक पेन रिलीफ के लिए हम लोग बेल्ट दे देते हैं। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसे परमानेंट ट्रीटमेंट, तो वो नहीं, वो ठीक नहीं है।
1: और रोहित जी जानना चाहते हैं, सर परमानंद कॉलोनी दिल्ली से लिखते हैं, सुबह उठकर ऐसा क्या किया जाए कि पूरा दिन कमर में दर्द हो ही ना। एकदम से झटका आ जाने पर भी कमर में दर्द हो जाता है, कई बार ज्यादा वजन उठाने पर भी दर्द हो जाता है, तो ये क्या करें।
2: देखिए, जैसे आप जान की सेफ्टी करते हैं ना, 24 घंटे जान हर चीज में रहता है कि जान का खतरा वाला कोई काम नहीं करते हैं, तो ऐसे आपकी कमर में भी जो है, अब ऐसा नहीं कि आप सुबह ही आपकी इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग विच एवर यू डू 24 आवर्स इज इंपॉर्टेंट। आप कैसे उठते हैं, बिस्तर से उठने का जो तरीका है वो कैसे आप उठते हैं, पहले पैर नीचे रख के उठते हैं, झटके के साथ उठते हैं, खाना कैसे खाते हैं, नहाते हुए आप मग के लिए बार बार नीचे झुक रहे हैं या शावर में नहा रहे हैं, वो सब चीजें, सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं जो बैक पेन की केयर से रिलेटेड हैं। जैसे सपोज आप इनफैक्ट जो बिस्तर में आप सोते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सोने के टाइम में जो आपकी मैट्रेस है वो ठीक है कि नहीं है। अगर मैट्रेस खराब है, पुरानी है, इसके स्प्रिंग आपको फील होते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपकी कमर को जो है वो डैमेज करेगा। तो मैट्रेस चूज करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को पता भी नहीं होता है। हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि हार्ड बेड पे सोएं कि सॉफ्ट बेड पे सोएं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है जब भी आप मैट्रेस खरीदने जाएं, आप जिसको खरीदनी है, जिसके लिए चाहिए, वो आदमी उस पर लेटे, आप अपने साथ किसी फ्रेंड को लेके जाएं और उससे पूछें कि अपना जो हाथ है वो आपकी कमर के नीचे पास करने की कोशिश करें। अगर वो बहुत इजीली चला जा रहा है हाथ, तो इसका मतलब वो जरूरत से ज्यादा हार्ड है वो बिस्तर आपके लिए। अगर वो बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब वो जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट है आपके लिए। और अगर विद स्लाइट डिफिकल्टी आप हल्का सा विगल करके आप हाथ को ले जाते हैं, तो वो आपके लिए आइडियल मैट्रेस है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए आइडियल मैट्रेस है वो भी आप चूज करें। इसके अलावा बैठने का पॉस्चर, एक्सरसाइजेस, रेगुलर एक्सरसाइजेस, वो सब चीजें जो है, डाइट आपकी जो है, वो सारी चीजें हैं, सब चीजें इंपॉर्टेंट है।
1: का सर क्या बैलेंस बनाएं, मतलब अगर विटामिन अगर बात करें तो क्या उनकी इंटेक्स किस प्रकार से डिवाइड करें।
2: देखिए, अगर आप बैलेंस फूड खाते हैं, बैलेंस फूड मतलब कि आपके प्रोटीन्स का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस ठीक है बॉडी के अंदर, तो मतलब खाने में, तो फिर वैसे भी वो सब कुछ ठीक है। विटामिन वगैरह तो आप फ्रूट्स वगैरह के रेगुलर इनटेक, वो सब आपको रेगुलर करना चाहिए। नॉर्मली हम ये कहते हैं आज की तारीख में कि प्रोटीन्स का इनटेक जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, और उसी के हिसाब से अगर आप चलेंगे, आपका वेट कंट्रोल में है, आपका बॉडी जो बीएमआई इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, बीएमआई आपका कंट्रोल में लेस देन 25 है, तो ये सब चीजें जो है लॉन्ग वे जाएंगी आपकी बैक की केयर करने में।
1: जी, एक प्रश्न हमारे पास आया है सर प्रकाश जी का सीतामणी बिहार से। ये जानना चाहते हैं कि ठंड के दिनों में रीढ़ की हड्डी और पीठ में दर्द होता है, ज्यादा ठंडा पानी पीने पर भी इन्हें दर्द होता है, इसका क्या समाधान है। यहाँ पर एक बात मैं और जानना चाहूंगी आपसे कि सिकाई का चुनाव कैसे करें, कि हमें अगर पीठ में दर्द है, हमारे स्पाइनल में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें ठंडी सिकाई करनी है या गर्म सिकाई करनी है।
2: देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ठंडा या गर्म जो है, ये कॉमन जो डिक्टम हम लोग यूज करते हैं अपनी प्रैक्टिस में वही है कि फर्स्ट 24 आवर्स जो पेन होता है या इंजरी होती है, उसमें जो बर्फ का या ठंडी सिकाई का रोल काफी अच्छा रहता है। बट जब चोट पुरानी हो जाए या फिर जो है बीमारी पुरानी है, तो उसमें हॉट फर्मेंटेशन या हॉट फर्मेंटेशन इज बेटर देन दी कोल्ड फर्मेंटेशन, यूजली ये डिक्टम फॉलो करते हैं। अब समझने की बात ये भी है कि जो कमर का दर्द है वो जरूरी नहीं है कि कमर से ही आए, एसिडिटी जो होती है, गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी बैक पेन कर सकती हैं, काफी कॉमन होता है। तो जो ठंडे पानी से बता रहे हैं कि पीने से दर्द हो जाता है,

0: तो हो सकता है कि इनको एसिडिटी होती हो जो कि वो बैक पेन करती हो। इसके अलावा जो ठंड में जो पेन बढ़ते हैं, सारे तरह के जो पेन होते हैं ऑर्थोपेडिक रिलेटेड पेन्स होते हैं, वो ठंड के बढ़ जाते हैं। दैट इज नॉर्मल फिनोमेना, क्योंकि मसल्स की मूवमेंट नहीं होती है। आप जो है ठंड में सारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, खून की नसें, तो वो स्टिफनेस आ जाती है वो जोड़ के अंदर। अगर उसमें ऑलरेडी पहले से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो फिर मसल्स को मूव करने में पेन बढ़ जाता है। इसके अलावा जो इनको यूरिक एसिड का इशू होता है, उनको भी जो है ठंड में ये सब प्रॉब्लम पड़ जाती हैं।
1: जी सर, क्योंकि अभी कमर में दर्द, या हम ऐसे सब बोलते हैं कि दर्द है कमर में, या अभी ऐसे उठा नहीं गया, झुका नहीं गया, तो ये कब चिंताजनक सिचुएशन में आ जाता है कि अब ये स्पाइनल डिफॉर्मिटीज की तरफ पड़ रहा है, कब ये अलार्म हमें बज जाना चाहिए?
0: देखिए, जो बैक पेन है ना, वो सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम है, कॉमनेस्ट सिम्टम है। सबसे कॉमन है कोल्ड, कॉमन कोल्ड जिसको जुकाम
1: ठीक
0: बोलते
1: है।
0: हैं। जो बैक पेन है दैट इज द सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट सिम्टम, हर एक आदमी को अपनी लाइफ टाइम में होता ही होता है, कभी ना कभी जरूर होता है। तो ये बड़ा आपका वैलिड क्वेश्चन है कि कब चिंताजनक है ये।
1: जी
0: क्या जैसे एक दिन का बैक पेन हो हमें डॉक्टर के पास भागना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि एनी बैक पेन विच इज मोर देन 4 वीक्स, जो 4 हफ्ते से ज्यादा का दर्द है वो चिंताजनक है। 4 हफ्ते से ज्यादा कोई भी बैक पेन है तो आपको फॉरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा अगर 4 हफ्ते से कम का बैक पेन है और उसमें कुछ रेड फ्लैग्स हैं, रेड फ्लैग्स मतलब कि कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि फॉरन चिंता की तरफ कहते हैं। पहली बात है, चोट लगने के बाद आपको दर्द शुरू हुआ है एकदम से, वो चिंताजनक बात हो सकती है। कोई फ्रैक्चर हो सकता है तो फौरन जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बुखार आ रहा है मरीज को, बुखार के साथ बैक पेन आ रहा है, वजन कम हो रहा है, 18 साल से कम की उम्र का बच्चा है उसको बैक पेन हो रहा है, 60 साल से ऊपर का आदमी है उसको बैक पेन हो रहा है, तो ये सब चीजें जो है, या उसके अंदर जो है आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद टीबी की शिकायत है, उसके साथ में बैक पेन हो रहा है, तो ये सब सब चीजें रेड फ्लैग हैं बेसिकली, और ये किसी सीरियस बीमारी की तरफ भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिर 4 हफ्ते भी वेट करने की जरूरत नहीं है।
1: ओके सर, पेन किलर, क्योंकि जब भी दर्द होता है तो जनरली काम के लिए उठना है तो हम एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं कि पेन किलर लिया और उठकर खड़े हो गए, तो इसको कैसे ले, ना ले, और कितनी फ्रिक्वेंसी में अगर हमने लेना स्टार्ट कर दिया है तो भी ये अलार्म बेल है?
0: देखिए, अगर 2 या 3 दिन के बाद भी पेन किलर लेने पर भी आपको पेन ठीक नहीं हो रहा है तो आई विल सजेस्ट कि आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि पेन किलर जब ज्यादा लंबे टाइम तक, अगर 4-5 दिन से ज्यादा, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पेन किलर्स के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वो बड़ी चिंताजनक बात है कि ये लोग लेते रहते हैं फिर उसके बाद से और बैक पेन तो शायद ठीक ना हो और किडनी विडनी के इश्यू जो है वो काफी शुरू हो जाते हैं।
1: श्रोताओं, आज रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं स्पाइनल डेफोर्मिटीज के बारे में, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी जो विकार समस्याएं हो सकती हैं और क्या इलाज हो सकता है, इस पर भी आएंगे। डॉक्टर, आपने उम्र का तो बताया, लेकिन अभी हम किसी भी उम्र में हैं, मान लीजिए हम यंगस्टर हैं या कुछ है, लेकिन हमारे साथ कोई दुर्घटना घट गई है, कोई एक्सीडेंट सिचुएशन है, वहां हमारे साथ कब ये स्पाइनल डेफोर्मिटीज जो है हो सकती हैं, उस पर भी बात करना चाहेंगे।
0: स्पाइनल डिफॉर्मिटीज ट्रॉमा के बाद भी हो सकती है, इनको हम पोस्ट ट्रोमेटिक स्पाइनल डिफॉर्मिटीज बोलते हैं। अगर स्पाइन के अंदर डैमेज हुआ है और उसको कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला है, आपके लिगामेंट्स डैमेज हो गए हैं, तो वो धीरे धीरे स्पाइन टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो बॉडी का लोड है वो नहीं ले पा रहा है, तो वो धीरे धीरे टेढ़ापन होकर वो परमानेंटली भी फिक्स हो जाता है, फिर आपको फिर वो सर्जरी से ही यूजली ठीक किया जा सकता है। तो ये भी चिंताजनक बात है कि अगर आपका बैक पेन है, ट्रॉमा मैंने जैसे बताया कि चोट लगी और बैक पेन है, तो फिर फॉरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं तो फिर लेट जो है वो डिफॉर्मिटी के साथ ही फिर दिक्कत आती है।
1: जी श्रोताओं, जैसे डॉक्टर बता रहे हैं, कुछ सिचुएशंस तो बिल्कुल ऐसी हैं जिनमें कि आपको एकदम से डॉक्टर के पास जाना है और अपना ट्रीटमेंट के लिए आपको डायग्नोज भी करवाना है, स्टार्ट भी कराना है, लेकिन वहीं डॉक्टर ने ये भी बताया कि जनरल आपको आपको कमर में दर्द है तो ही आप ये ना मान लें कि आप किसी डिफॉर्मिटीज से कनेक्ट हो चुके हैं या आप उससे ग्रसित हैं। दोनों ही सिचुएशन में आपको ये जज करना है कि आप सीवियर हैं या कौन सी सिचुएशन है जहां आपको जरूरत है, तो वहां तो नजरअंदाज करना ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्पाइनल डेफोर्मिटीज के बारे में रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से, और यहां पर एक और खूबसूरत म्यूजिकल ब्रेक जो कि डॉक्टर ने आपके लिए खास पसंद किया है।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: इस गाने से पहले मैंने डॉक्टर से जानना चाहा था कि डॉक्टर क्या खास वजह है इस गाने को चुनने की। तो डॉक्टर ने बताया कि हौले हौले से ही दर्द होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं और फिर वो बड़ा बन जाता है। आकाशवाणी रेनबो 102.6 के माध्यम से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हम आज बात कर रहे हैं स्पाइनल डेफोर्मिटीज के बारे में, टाइप्स, कॉसेज एंड ट्रीटमेंट, रीढ़ की हड्डी से जुड़े विकार, प्रकार, कारण और इलाज विषय पर। हमारे कुछ लिसनर्स हमसे न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए भी जुड़े हुए हैं और उनके प्रश्न भी हम तक आए हैं, जिनका मैं स्वागत करती हूं। हमारे साथ कौशिक चौधरी जी हैं, ये बारो विशा नियर भूटान बॉर्डर से हमें लिखते हैं कि सुबह कमर में सर ज्यादा दर्द होता है और एक साल से हो रहा है, और जब मैं दिन में 2 घंटे बाइक चला लेता हूं तो मुझे और भी ज्यादा जो मेरी कमर में दर्द है वो फील होता है।
2: देखिए, जो बैक पेन नॉर्मली जो ज्यादातर तरह के बैक पेन है वो शाम के समय बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो है वो आपकी एक्टिविटीज रिलेटेड, पॉस्चर रिलेटेड होते हैं, तो वो शाम को थकान हो जाती है तो उसकी वजह से बढ़ जाते हैं। जो ये मॉर्निंग टाइप के बैक पेन है ये एक अलग ही स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, जो कि गठिया की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, आर्थराइटिस की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। सो एनी बैक पेन इफ इट इज मोर देन 30 मिनट्स, अगर आधे घंटे से ज्यादा आपको सुबह के टाइम उठने के बाद दर्द रहता है तो फिर अगेन आपको डॉक्टर को देखना चाहिए, गठिया भी हो सकता है।
1: जी, ये सच में एक ऐसा आपने डॉक्टर आंसर किया है कि आपको यहाँ थोड़ा सा जागने की जरूरत है। अगर आप ये बहुत सीवियर सिचुएशन में आपको मॉर्निंग में ऐसे पेन्स हो रही हैं तो ये आपके अर्थराइटिस की ओर भी इशारा करते हैं। और ये एक और प्रश्न है हमारे पास कि ये जानना चाहते हैं कि रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है इसमें मेडिसिन काम करती है, एक्सरसाइज काम करती है या फिर सर्जरी ही करवानी पड़ती है।
2: देखिए, 90% जो केसेस हैं बैक पेन के वो तो सिंपल एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाते हैं, उनमें दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती है।
1: ठीक है,
2: जो बाकी 10% बचते हैं उनमें से 6-7% जो केसेस हैं वो रेगुलर थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट टर्म मेडिसिन के थ्रू, फिजियोथेरेपी के थ्रू ठीक हो जाते हैं। कुछ केसेस में हमें जो है कुछ इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। सर्जरी तो सिर्फ 1% केसेस में रिक्वायर्ड होती है स्पाइन के अदर कॉजेस में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, और सर्जरी कराने के बाद भी एक्सरसाइज तो फिर भी आपको करनी ही करनी है।
1: ठीक है, और ये विश्वजीत जी हैं कोलकाता से, ये जानना चाहते हैं कि जब ये ज्यादा मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं तो इन्हें जो इनकी स्पाइन है वो दर्द करने लग जाती है।
2: देखिए, नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि हमारी बॉडी हमें खुद ही बता देती है कि कब आपको रुकना चाहिए, कब आपको जो है आपके लिए ठीक है। तो अगर बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि इतना चलने के बाद, सपोज आप 3 किलोमीटर चलने के बाद आपको बैक पेन होता है, तो उसको 2.5 कर दीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा बैक की एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दीजिए, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे तो आई होप कि उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए।
1: जी, हम बात कर रहे हैं श्रोताओं स्पाइनल डेफोर्मिटीज के बारे में, रीढ़ की हड्डी से जुड़े क्या विकार हो सकते हैं, और जैसे कि डॉक्टर बता रहे हैं कि जब आपकी बॉडी आपको कुछ सिग्नल देना तो उसे इग्नोर ना करें। ये दिव्या है, दिव्या मौर्य अमेठी से, ये जानना चाहती हैं कि जब ये ज्यादा पड़ती हैं, देर रात तक पड़ती हैं, तो इनकी गर्दन से लेकर कमर तक में दर्द हो जाता है, तो अब इन्हें क्या करना चाहिए?
2: ये कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रहा है कि आपका पोस्चर ठीक नहीं है, तो आप अपने पोस्चर को ठीक रखिए। जो आपके टेबल चेयर पे बैठ के पड़िए, जो आपकी सपोर्ट होना चाहिए बैक में, जो चेयर है उसकी सपोर्ट जो है, अगर आप ज्यादा पड़ती हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको अच्छा सपोर्ट भी चाहिए, आपके बैक फ्रेंडली सपोर्ट होना चाहिए। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि 50 मिनट्स एन आर का रूल फॉलो करें, कि 50 मिनट के बाद जो है 10 मिनट का ब्रेक लें, पानी पी लें, उठ के खड़े होकर पढ़ लें, और थोड़ा सा चेंज जो है वो पोस्चर में एवरी आर 5-10 मिनट का चेंज बहुत जरूरी है।
1: जी, यही प्रश्न हमारे एक और लिसनर का भी था, दीप्ति चंडीगढ़ से, और इन्होंने भी यही जानना चाहा था कि पढ़ाई के दौरान, एग्जाम्स के दौरान इन्हें स्वेलिंग भी हो जाती है दर्द की वजह से, तो ये भी अगेन पोस्चर पे अगर काम
2: अगर है। स्वेलिंग आपको आ रही है जो आपको दिख भी रही है, तो इसका मतलब ये कहीं कुछ और इश्यूज भी हो सकते हैं। आपको ब्लड टेस्ट आपके करा लेने चाहिए डॉक्टर से बात करके, और वो अपने किडनी और लिवर के टेस्ट भी आपको एक बार चेकअप करा लेना चाहिए।
1: जी, ओके। ये प्रश्न मोहम्मद इब्राहिम जी का है श्रीनगर से, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय कॉमन पीपल व्हेन दे टेक द स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पर्सन टू हॉस्पिटल।
2: ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर किसी को आप कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें अगर आपको सस्पेक्टेड है कि ये इसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। उसके लिए हम एक टेक्निक बोलते हैं लॉग रोलिंग, दैट मीन्स कि उसके में आदमी को ऐसे रोल करना चाहिए कि जैसे कि एक लकड़ी का जो पेड़ का लॉग होता है, जो पेड़ का तना है, बिल्कुल वैसे लॉग एक ही पोजिशन में वो होना चाहिए। तो 3 लोग जो है उसको मिलकर लॉग रोलिंग करते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल आस्पेक्ट है कि उसको उसकी ट्रेनिंग होती है, तो आई डोंट थिंक मैं रेडियो पे उसको समझा सकता हूं, लेकिन यह है कि वो 3 लोग मिलके जितना मिनिमम मूवमेंट पॉसिबल हो सके
1: जी,
2: उतना करने चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर उसने हेलमेट पहना हुआ है तो हेलमेट भी निकालने का भी एक तरीका होता है। अगर आप उसमें ट्रेन नहीं है तो अपने आप कोशिश नहीं करनी चाहिए हेलमेट निकालने की, क्योंकि उससे जो नेक में इंजरी है वो भी वर्सन हो सकती है।
1: जी बिल्कुल सर, ये तो बात हुई कुछ एक्सीडेंट्स की या फिर उम्र के बाद आपको हो रहे, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अगर ऐसी स्पाइनल डिफॉर्मिटीज हैं तो ये बिफोर बर्थ भी अल्ट्रासाउंड में अगर पता चल गई है तो इन पर कैसे काम करना चाहिए?
2: देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि अगर इसकी जानकारी हो जाए तो इसके साथ यूजली जो ये बर्थ से रिलेटेड स्पाइनल डिफॉर्मिटीज होती हैं, जो जन्म से होती हैं, वो खाली स्पाइनल डिफॉर्मिटीज अकेले नहीं होती, उनके साथ और भी हार्ट के भी इश्यूज होते हैं, किडनी के भी इश्यूज होते हैं। तो जो एक हम लेवल 2 स्कैन बोलते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, जो यूजली 16 से 18 हफ्ते की प्रेगनेंसी में किया जाता है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी स्पाइन की पूरी स्ट्रक्चर्स वगैरह दिख जाती हैं, पहले से पता चल जाता है, और फिर डिपेंडिंग अपॉन कि वो चीज कितनी सिवियर है उसके हिसाब से प्रेगनेंसी को, कई बार इतना सिवियर अगर प्रॉब्लम है तो एक ऑप्शन मरीज को यह भी दिया जाता है कि टर्मिनेट कर दिया जाए प्रेगनेंसी को, ताकि लॉन्ग टर्म सफरिंग से अच्छा है कि उसको उसी में, तो वो डिपेंडिंग अपॉन कितनी सिवियरिटी है, फिर डॉक्टर की राय के हिसाब से, फिर पेशेंट्स के की फैमिली के हिसाब से राय लेके फिर उसका एक्चुअल डिसीजन लिया सकता है। कुछ होते हैं जिनका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल होता है तो फिर उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं।
1: ओके डॉक्टर, एक और प्रश्न है, ये उसी हमारे लिसनर का है, दीप्ति का, जिन्होंने कहा था कि वो पढ़ने के दौरान ड्यूरिंग एग्जाम इन्हें स्वेलिंग तक आ जाती है दर्द के चलते, और आपने इन्हें कहा कि इन्हें ब्लड टेस्ट जो है करवाने चाहिए, तो ये कुछ सजेशन मांग रही है कि कौन से ब्लड टेस्ट जिनसे कि ऐसी डिफॉर्मिटीज पता चल जाए।
2: नहीं देखिए, इसके लिए जरूरी है कि आप एक बार डॉक्टर से मिलें, स्वेलिंग दिखाएं उनको, क्योंकि हर तरह की स्वेलिंग भी कई तरीके की होती है और उनके अलग अलग कारण होते हैं। इसको लाइटली मत लें, अगर स्वेलिंग आती है तो आई विल सजेस्ट कि आप डॉक्टर को फौरन दिखाएं।
1: जी तो अब बात करेंगे डॉक्टर की, अगर हमें ये तो पता चल गया है कि अब हमें कोई ना कोई स्पाइनल डिफॉर्मिटीज है, तो हमारी क्या लाइफस्टाइल में हमें चेंज करने हैं, क्या डाइट में चेंज करने हैं, और फिर ट्रीटमेंट?
2: देखिए अगर स्पाइनल डिफॉर्मिटी स्ट्रक्चरल है, जिसको जो है प्रॉब्लमेटिक है, और डॉक्टर के हिसाब से आपको जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो तो एक अलग हो गया। अगर किसी को नॉर्मल स्पाइन की कंडीशन है, जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, बैक पेन की डिस्क है या कुछ है, तो उसमें आपका जो है नॉर्मल डाइट, वेट रिडक्शन आपका होना चाहिए, रेगुलर आपको एब्डोमेन की भी और स्पाइन की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, पोस्चर कंट्रोल करना चाहिए, वेट उठाते हुए ध्यान रखना है कि ज्यादा वेट ना उठाएं, अगर आप वेट उठाना है तो झुक के ना उठाएं, घुटने के बल बैठ के जमीन पर उसको उठाएं, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए वेट को जो है क्लोजेस्ट टू द बॉडी रखें, रादर देन दूर रखने के बॉडी के बिल्कुल पास रख के उसको चीज उठाएं। तो ये डेली है, जितना चीजों को आप पुश कर सकें वो बेटर है रादर देन पुल खींचने के, तो ये सब चीजें जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म में हेल्प करती हैं।
1: जी और फाइनली डॉक्टर, आप कब किस मरीज को देखते हैं कि अब इसकी सिचुएशन ऐसी है, आपको जज करना है कि अब इसकी सिचुएशन ऐसी है कि हाँ इसको अब स्पाइनल सर्जरी देनी है हमें, और फिर इसका कितना लंबे मतलब कितने समय तक वो व्यक्ति सर्जरी के बाद जो है बेड रेस्ट पे रहेगा, कब उसको तैयार होना है और उसको आगे कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं?
2: देखिए नॉर्मली जो एब्सोल्यूट इंडिकेशन होती है सर्जरी की, अगर पैरों में कमजोरी आ रही है या लैटिन पेशाब का कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो ये तो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हैं कि इसमें हमें सर्जरी करनी ही करनी है। अगर ये सब नहीं है और पेन ही मेजर कंप्लेंट है, तो मैंने बताया कि पहले हम एक्सरसाइजेस से, दवाइयों से कोशिश करते हैं, अगर उससे नहीं फर्क पड़ता तो इंजेक्शन से ट्राई करते हैं, और अगर फिर भी फर्क नहीं पड़ता तो फिर हम सर्जरी के लिए सोचते हैं। सर्जरी के कई टाइप्स होते हैं, इसी तरह से स्पाइनल डिफॉर्मिटीज की अगर बात करें तो उसमें अगर एंगल जो है वो यूजली 40-50 डिग्री से ज्यादा का हो जाता है तो भी फिर हम सर्जरी के लिए प्लानिंग करते हैं। सर्जरी भी कई तरीके की होती हैं, बट यूजली हमारा एम ये रहता है कि हम मरीज को जितना जल्दी से जल्दी हो सके खड़ा करके चला दें। नॉर्मली हम जो है स्पाइन के पेशेंट्स को सेम डे ही हम बिठा देते हैं सर्जरी के बाद, और हमारी कोशिश रहती है कि सेम डे नहीं तो अगले दिन सुबह सुबह तक वी मेक देम वॉक, तो दैट इज वेरी गुड फॉर देयर अर्ली रिकवरी ऑल्सो एंड फॉर देयर जनरल हेल्थ ऑल्सो। तो ये नोशन की सर्जरी के बाद बिस्तर में लेटना पड़ता है वो सब आज की तारीख में नहीं है। टॉयलेट तो सेम डे या नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक जो है दे शुड बी अलाउड के वो टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, और यूजली आजकल अगर सिंपल स्पाइन सर्जरी है तो यूजली उसका स्टे जो है, इनफैक्ट हम लोग डे केयर बेसिस पे भी ये सर्जरीज कर रहे हैं आजकल।
1: मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से, और ये लिखते भी हैं और शायद जानना ही चाहते हैं कि रीढ़ की हड्डी हमने ज्यादा कार चला चला कर अपनी खराब कर ली, क्योंकि इन्हें भी इस दर्द की समस्या है।
2: देखिए अगर कार के सस्पेंशन ठीक नहीं है और आपकी पोस्चर अगेंस्ट बैठने का ठीक नहीं है और आप लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं, तो मैंने वही बताया आपको कि आप अपने वही 50 मिनट्स एन आवर का रूल फॉलो करिए कि हर एक घंटे में आपने ड्राइविंग की है तो फिर गाड़ी के साइड में लगा के 5-10 मिनट ब्रेक ले लीजिए, बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए और कार के चारों तरफ राउंड लगा के फिर उसको ड्राइव करिए।
1: ओके डॉक्टर, यहाँ पर एक और प्रश्न है कि अगर आप स्पाइनल डिफॉर्मिटीज की बात करें तो आपको ऐसे में ऑर्थो पेडिक्स के पास जाना चाहिए या फिर आपको न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए, कौन आपकी हेल्प कर सकता है?
2: देखिए, मैं कहूंगा कि स्पाइन सर्जन के पास जाना चाहिए। स्पाइन सर्जन ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हो सकता है, न्यूरो सर्जन भी हो सकते हैं। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें कि हम ऑर्थोपेडिक सर्जन न्यूरो सर्जन के साथ मिलकर कोशिश करते हैं, बट नॉर्मली जो लोग स्पाइन देखते हैं वो ट्रेनिंग दोनों तरफ से होती है और दोनों ही देखते हैं उसको।
1: जी, डॉक्टर का परिचय मैं आप सबसे एक बार पुनः कराना चाहूंगी। डॉक्टर भावुक गर्ग है हमारे साथ, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स से। तो अगर आप किसी समस्या को लेकर अगर दोबारा कनेक्ट करें तो आप डॉक्टर से एम्स में भी मिल सकते हैं, क्योंकि एक लिसनर हमारे साथ है और ये पूछ रही है कि डॉक्टर आपसे अगर मिलकर इलाज करवाना हो तो ये कहां मिले। बाकी रेडियो डॉक्टर के माध्यम से मुझे लगता है हमारे आज जितने भी लिसनर्स जुड़े और अपने प्रश्नों के माध्यम से जानने चाहे अपनी समस्या का हल, तो डॉक्टर ने बहुत बेहतरीन तरीके से उन्हें बताया कि किस तरह से आप अपनी स्पाइनल डेफोर्मिटीज को लेकर अलर्ट रहें और कब पहचान करें, क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, और ट्रीटमेंट के बारे में भी हमने बात करी। तो डॉक्टर, ट्रीटमेंट से जुड़े अगर बात करें तो इस फील्ड में, इस ट्रीटमेंट फील्ड में स्पाइनल डेफोर्मिटीज की क्या नई टेक्निक्स हैं जिनके जरिए इलाज किया जाता है?
2: आजकल स्पाइनल डिफॉर्मिटीज को, चूंकि मेजर कंसर्न इसमें नर्व्स का होता है, तो आजकल हम नर्व्स की मॉनिटरिंग करके सर्जरी करते हैं। तो हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे कि हम नर्व्स को मॉनिटर कर सकते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, कि नर्व्स के ऊपर कुछ प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नर्व्स के ऊपर कोई इंजरी हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरी बात, हमारे पास चूंकि स्क्रूज एंड रॉड्स डालते हैं इसके अंदर, और स्पाइनल डिफॉर्मिटीज में स्क्रूज डालना बहुत चैलेंजिंग होता है, तो इसके लिए हमारे पास इंट्रा ऑपरेटिव ड्यूरिंग हम सीटी स्कैन भी यूज करते हैं, तो स्क्रूज डालने में हेल्प करता है। रोबोट है हमारे पास आज की तारीख में, रोबोट भी हमारी हेल्प करते हैं। एनेस्थीसिया के प्रोटोकॉल्स काफी चेंज हुए हैं, तो ये सब चीजें जो है इससे काफी सेफ हो गई है स्पाइन सर्जरी। तो आजकल जो हम बात करते हैं स्पाइन सर्जरी की, हम स्पाइन सर्जरी की बात नहीं करते, हम सेफ स्पाइन सर्जरी की बात करते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि लोगों के दिलों में ना अगर इस समस्या के बारे में अगर कुछ अगर प्रॉब्लम है भी, तो वो

0: मानते हैं कि एक बार उनकी सर्जरी हो गई तो फिर वो बेड रेस्ट पे रहेंगे या फिर वर्क नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसी भ्रांतियां भी हैं, डर है एक्चुअली।
1: आज की तारीख में काफी सेफ है और ये डर ठीक नहीं है। अगर आपको स्पाइन सर्जरी की जरूरत है और स्पाइन सर्जरी करते हैं तो उसके बेनिफिट हर चीज में बेसिकली आपको रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना पड़ता है, और अगर बेनिफिट ज्यादा है तो स्पाइन सर्जरी आज की तारीख में काफी सेफ है
0: जी। डॉक्टर, कुछ पॉस्चर्स आप जनरली, जैसे क्योंकि आप रेडियो पे ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन उठने बैठने में कुछ और पॉस्चर जो कि आपको इस डिफॉर्मिटीज से बचा सकते हैं?
1: जैसे कि मैंने बताया कि आप जैसे बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले झटके से नहीं उठना है, पहले पैरों को आप जो है एक तरफ के बिस्तर की तरफ लटका के फिर आप उठेंगे, तो ये सब चीजें बड़ी हेल्प करती हैं। इसके अलावा जब भी आप बैठे हैं स्ट्रेट बैठे, सामने देखें, शोल्डर्स को बिल्कुल जो है वो जैसे मिलिट्री पोजीशन इसको कहते हैं ना कि आप पूरा ऊपर करके आप बैठेंगे, तो वो आपको जो है ओवरऑल पॉस्चर करेक्ट करने में ठीक करेगा। जितना स्ट्रेट बैठ सकते हैं उतना वो आपकी हेल्प करेगा। काउच में स्लाउच करके नहीं बैठे, लेट के नहीं पड़े, लेट के टीवी नहीं देखें, तो ये सब चीज जो है आपके लॉन्ग टर्म उसमें हेल्प करेंगे
0: जी। राहुल जानना चाहते हैं कि अपनी हाइट बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा लटकने जैसे जो है काम करे हैं, एक्सरसाइजेस करी हैं, जिसकी वजह से अब इन्हें दर्द रहने लग गया है, तो आप राहुल को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे?
1: नहीं, ये तो कोई कारण नहीं हुआ बैक पेन के कॉज का, बट अगर आपकी एज जैसे मैंने बताया अगर 18 साल से कम है और आपको बैक पेन हो रहा है तो फिर आई विल सजेस्ट कि एक बार आप डॉक्टर को देखें। बट अगर आप नॉर्मल बात करें तो बैक पेन लटकने से नहीं होता, ऐसा तो कोई कारण नहीं है
0: जी। डॉक्टर, आपने भी बातों के दौरान जब आप हमने विषय पर बात कर रहे थे, विषय को जानना शुरू किया था, तो आपने बताया था स्कूल्स में आप कुछ ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिनके जरिए वहीं पर पहचान कर ली जाए, तो इस पर हम थोड़ी सी और बात करना चाहेंगे आपसे।
1: जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीमेल्स में ये ज्यादा कॉमन होता है, गर्ल्स में ज्यादा कॉमन होता है, 7:1 का रेशियो है और पता नहीं चलता, लेट स्टेज में पता चलता है, तो ऐसे में हमारी जो सोसाइटी है, स्पाइन की सोसाइटी है, उन्होंने हमने एक ऐप भी डिजाइन किया है और हम लोग जाते हैं वहां पर, स्कूल्स में जाते हैं। यूजली हम जो है 6-8 क्लास के बच्चों में यूजली इस एज ग्रुप में ज्यादा कॉमन होता है, तो उनको हम जो है स्क्रीन करते हैं। बहुत ही सिंपल है, 1 या 2 मिनट लगते हैं हमें देखने में कि उनके शोल्डर्स का बैलेंस कैसा है, शोल्डर्स ऊपर नीचे तो नहीं है, उनके हाथ के और जो बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक तरफ ज्यादा तो नहीं है, उनका कूला कोई ऊपर नीचे तो नहीं है, और ये सब चीजें हम देख के और उनके ऐप की हेल्प से भी हम लोग जो है ये पता कर सकते हैं कि इसको पोटेंशियल प्रॉब्लम है कि नहीं है, और जिनको हमें लगता है फिर हम उनके एक्सरेज कराते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि इसको ट्रीटमेंट चाहिए, कि क्या ट्रीटमेंट चाहिए, तो चूंकि हम जल्दी पिकअप कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट फिर एक्सरसाइज से और ब्रेसेस से किया जाता है, रादर लेट स्टेज में जब पता चलेगा तो फिर हमें जो है सर्जरी के लिए जाना पड़ता है
0: जी। सभी लिसनर्स को आप सर डॉक्टर टिप ऑफ द डे क्या देना चाहेंगे?
1: देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि बैक पेन कोई ऐसा नहीं है कि आप सुबह एक्सरसाइज कर लेंगे, शाम को एक्सरसाइज कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बैक पेन जो है, बैक केयर जो है वो 24 घंटे चलती है और 24 घंटे आपको अपनी बैक का ध्यान रखना चाहिए।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतने वाइड टॉपिक को हमारे लिसनर्स के लिए इतने सरल शब्दों में समझा दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हमारे साथ डॉक्टर भावुक गर्ग जुड़े आज के रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में, जिनसे कि हमने जाना स्पाइनल डेफोर्मिटीज के बारे में, कुछ मिथ्स को भी डॉक्टर ने बिल्कुल खारिज किया और कुछ अवेयरनेस जो बहुत जरूरी थी आप सभी लिसनर्स के लिए डॉक्टर ने हमें बताई, तो मुझे लगता है हमारे जितने भी लिसनर्स आज हमारे प्रोग्राम से जुड़े और उन्होंने जाना भी, तो वो ऐसे में अवेयरनेस अपने और भी सुनने वालों को बताएंगे, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, जिनसे कि वहां भी जहां अवेयरनेस की जरूरत है वे भी इस विषय से परिचित हो जाएं। स्पाइनल डेफॉर्मिटीज टाइप कॉजेज एंड ट्रीटमेंट पर हमने बात की आज रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से। यही मैं सृजन राजपूत आप सभी से लेती हूं अनुमति। यूं ही जुड़े रहे आकाशवाणी रेनबो 102.6 के मैजिकल फ्रीक्वेंसीज के साथ सभी ज्ञानवर्धक प्रोग्राम्स के लिए। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, Always wherever you are, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी रेनबो पर अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी सहित अन्य नेताओं ने शिक्षकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। वो कल गृह मंत्रालय के विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कोयला मंत्रालय ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाली योजना के तहत कोई आवेदन नहीं मिलने की खबरों को खारिज किया है। मध्य प्रदेश में भोपाल

देवास रोड पर स्थित फांदा टोल प्लाजा पर बैरियर मुक्त टोल वसूली प्रणाली की पायलट टेस्टिंग शुरू हो गई है। भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने व्यापक तैयारियां शुरू की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। डेनमार्क और यूरोपीय संघ के 4 अन्य देशों ने यूरोपीय संघ से बाहर के देशों में प्रवासियों की वापसी के लिए केंद्र स्थापित करने की एक रूपरेखा पर सहमति जताई है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस पर गिद्धों के संरक्षण पर बल दिया है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। बिहार में गंगा, गंडक और कोसी नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और महिला एशिया कप 2026 में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। ये थे अब तक के AIR मुख्य समाचार।

हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लम्हे प्रोग्राम में और मैं हूँ आपका आरजे चेतन। आसपास के वातावरण साफ सुथरा हो तो किसे अच्छा नहीं लगता है, और इसमें नगर निगम और स्वच्छता कर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो तो अपने तरफ से पूरा योगदान देते हैं, परंतु इसके बावजूद कुछ लोग गंदगी और कचरा करने से बाज नहीं आते। वो भी इंसान ही है, आखिर कितना साफ करेंगे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास को साफ रखने की जिम्मेदारी स्वयं ही करना है, ताकि साफ सफाई से हम स्वस्थ रहे और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहे। आसपास की रखो सफाई, इसमें हम सबकी भलाई। स्वच्छ रखेंगे वातावरण, स्वस्थ रहेंगे हम हर पल हर क्षण। घर को हर दिन करें सफाई। हमें हमारे घर के हर रोज सफाई करना चाहिए। वह कचरा इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, इससे कीटाणु पनपते हैं और बीमारियां फैलती है। घर में कुछ ऐसे कोने होते हैं जिसे नियमित रूप से सफाई करना चाहिए, जैसे रसोई घर। रसोई घर जहां हमारा भोजन इत्यादि बनता है, उसकी सफाई नियमित होना चाहिए। बर्तन को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। गैस स्टैंड बर्तन रखने की जगह सभी जगह साफ करना चाहिए। रोज किचन की झाड़ू लगाना चाहिए, ताकि खाने के साथ हम कोई गंदगी अपने खाने में आने न दे और साफ सुथरा भोजन ही खाए, साफ सुथरा किचन रखे। नियमित पोंछा और धोने जैसे सामान को धोए। बाथरूम को रोज साफ करें, दीवारें साफ करें, कुछ अच्छे से एंटीमाइक्रोबियल यूज करके साफ करें तो और भी अच्छा है। जहाँ हम हमारी गाड़ी रखते हैं, वहाँ रोज झाड़ू लगाए और बगीचे में सफाई रखे हो। कोई भी कचरा और प्रयोग में न आने वाले सामान को इकट्ठा न होने दे। यदि हम हमारे किचन, बाथरूम और पूरे घर में साफ सफाई नहीं रखेंगे, तो चचुंडर, कॉकरोच, मक्खी, चींटियां, मच्छर आदि पनपते हैं। और साफ सफाई में अगर हम लापरवाही बरतते हैं, बर्तन और अन्य सामानों के साथ ये गंदगी हमारे मुंह में जाते हैं, जिससे हमें कई तरह की बीमारियां पकड़ लेते हैं। यदि मच्छर पनपते हैं तो मलेरिया, कॉलरा, निमोनिया, पीलिया या सब बीमारी होती है जो कि गंदगी की वजह से फैलती है। इसीलिए हमें हमारा घर और आंगन की सफाई पर नियमित ध्यान देना चाहिए। इसीलिए पूरे घर पर नियमित झाड़ू और पोंछा लगाना चाहिए।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। धूल इत्यादि को पहुंचने और बगीचे में कहीं भी पानी नहीं होने देना चाहिए। किसी भी तरह की गंदगी बीमारी का लक्षण होता है, इसीलिए बचना चाहिए और नियमित साफ सफाई करना चाहिए। कुछ लोगों का सोचना है कि जहां गरीब व्यक्ति रहते हैं वही ज्यादा गंदगी होती है, परंतु ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गरीबी और साफ सफाई का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। गरीबी तो इंसान की मजबूरी है, परंतु सफाई तो उसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए अमीर या गरीब मायने नहीं रखता, और घर की साफ सफाई में सबकी बराबरी से हाथ बांटने की मंशा होनी चाहिए। केवल घर के बड़े, जिसमें माँ होती है, माँ घर के हर काम को करती है, तो क्या ये घर केवल माँ का होता है? उसमें रहने वाले सभी सदस्यों का नहीं होता है। इसीलिए सभी सदस्यों को मिलजुल कर इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए, और ये सोच परिवार के हर सदस्य के नजरिए पर निर्भर करता है। बचपन से ही बच्चों की देखभाल माता पिता और घर के अन्य सदस्य करते हैं, लेकिन बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उन्हें आपको सिखाना होगा कि साफ सफाई रखना जरूरी है। बचपन से ही उसे अपनी सफाई की शिक्षा दे, साथ ही उसे अपने आसपास की जगह को साफ रखना सिखाए। उसे बताए कि अगर साफ सफाई नहीं रखी जाएगी तो बीमारी होगी, और बीमारी होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए उसे बताए कि अपनी साफ सफाई रखे और अपने आसपास की जगह को भी साफ रखे। साफ सफाई में अपने बड़ों की मदद करे, इससे वह भी साफ सफाई करना सीखेगा और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। साफ सफाई इंसान की फितरत होती है। वह अपने घर के आसपास तो साफ रखते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं घर ही को अपना समझते और अपने घर के बाहर झूठा और जो भी कचरा होता है उठाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी केवल घर के अंदर तक ही सीमित है। इसीलिए अपना फर्ज भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि सड़क, अपने घर का बगीचा साफ रखना उनकी जिम्मेदारी है। सड़क से ही गंदगी हमारे घर तक आती है, और इसके साथ ही कई तरह की बीमारियां भी लेकर आती है। इसीलिए स्वयं साफ सफाई रखें, और जो कर्मचारी और नगर निगम की गाड़ियां आती है उसमें अपने घर को साफ रखकर उन्हें अपना पूरा योगदान प्रदान करें। इस प्रकार हम हमारे घर के और आसपास की सफाई, हमारे स्वास्थ्य के साथ ही वातावरण को भी साफ रखते हैं, और इसका प्रथम पाठ हम हमारे घर से ही मिलता है। यदि हम हमारे घर को और हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखेंगे तो धीरे धीरे शहर और शहर, देश, सभी जगह सफाई दिखने लगेगा। प्रदूषण में जमा हमारे देश की गिनती निचले स्तर पर की जाती है, वही हमें आगे और आगे प्रथम स्थान पर लाना होगा, और इसकी शुरुआत हमें हमारे आसपास के वातावरण से शुरू करना होगा। देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है। क्या इसमें नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है? हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। विद दिस लवली कोट, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे इन लम्हे प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका। इस बार लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम अल्फा जैन। सैटरडे का दिन है, जानते हैं आप, सैटरडे को हम इस प्रोग्राम में कहते हैं लेट्स डिटॉक्स, जो कि काफी जरूरी है। डिटॉक्स उन थॉट्स का जो दिमाग को परेशान कर रहे हैं, डिटॉक्स बॉडी का ताकि हेल्थ बेटर हो सके। डिटॉक्स बहुत सारी चीज़ों का होता है और ये बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाले हफ्ते के लिए, आने वाली खूबसूरत ज़िंदगी के लिए हम खुद को तैयार कर सकें। इसलिए बीच बीच में डिटॉक्स करना, खुद को वक्त देना, खुद को रिफ़्रेश महसूस करवाना, रिचार्ज करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। अब किस बारे में यहाँ पर आज मैं बात करने वाली हूँ बताऊंगी आपको। फिलहाल सोनू निगम की आवाज में इस खूबसूरत से गाने के साथ करते हैं इस शो की शुरुआत। आप थाम लीजिए मेरा हाथ और निकल पड़िए इस सफर पर मेरे साथ।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं? इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय काले खान स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खान से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: आकाशवाणी FM रेनबो, आप हैं दीपिका के साथ। प्रोग्राम आप यहाँ पर आज सुन रहे हैं अल्फा जैन, जहाँ सैटरडे को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लेट्स डिटॉक्स। अब देखिए लेट्स डिटॉक्स में सबसे जरूरी चीज पता है क्या है, कभी कभी पॉज लेना, जो हम नहीं लेते हैं, लेना चाहते हैं तो नहीं ले पाते हैं, कभी जिम्मेदारियों में उलझे रह जाते हैं, कभी जिंदगी की उलझनों में इस तरह उलझते हैं कि अपने लिए ही वक्त नहीं निकाल पाते, कभी कुछ तो कभी कुछ। पर भागती दौड़ती जिंदगी में हमें कभी कभी लाइफ से पॉज भी लेना चाहिए और देना चाहिए एक दिन खुद को खुद के नाम। आप सोच रहे होंगे, आप नहीं सोच रहे होंगे बल्कि अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि भागदौड़ से भरी जिंदगी है हमारी, रोज तो काम करना ही है, ऐसे में एक दिन काम ना करके या एक दिन ब्रेक लेकर क्या फर्क पड़ जाएगा। बहुत फर्क पड़ जाएगा मेरे दोस्त, यकीन मानिए एक दिन हमें लगता है, लेकिन जब वो एक दिन का वक्त हम खुद को देते हैं ना, तो जिंदगी बहुत हद तक बदलती है। कैसे एक दिन का ये ब्रेक हमें मेंटली और फिजिकली रिचार्ज कर सकता है, करूंगी बात इस बारे में। फिलहाल के लिए एक और ब्यूटीफुल सा ट्रैक पहुंच रहा है आप तक, एंजॉय कीजिए और दीपिका के साथ अपने इस साथ को बनाए रखिए। 4:22 हो चुके हैं राइट फ्रॉम द स्टूडियो क्लॉक, आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है यहाँ मेरे साथ।

0: हम कहते हैं लेट्स डिटॉक्स। वेल दोस्तों, बात मैंने छेड़ी कि कैसे जरूरी है वीक में या फिर बीच में कभी भी जब आपको लगे तो एक दिन का ब्रेक लेना, वो ब्रेक जो आपको मेंटली रिचार्ज कर सकता है आने वाले हफ्ते के लिए, आने वाले वक्त के लिए, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आपको रिचार्ज कर सकता है। ये जो पॉज डे है ना, इसकी बहुत ज़रूरत होती है, यकीन मानिए। अब आपको सोचिए, अगर आप अपने फ़ोन को लगातार इस्तेमाल करते रहें, उसे चार्ज नहीं करें तो क्या होगा, बैटरी ख़त्म हो जाएगी ना। हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस ये है कि हम मशीन नहीं है तो हम ये बता नहीं सकते हैं कि बैटरी ख़त्म हो गई, लेकिन हम महसूस कर रहे होते हैं। हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारे इमोशंस लगातार इस्तेमाल होने के बाद रिचार्ज मांगते हैं। इसीलिए एक दिन अपने नाम करना कोई सेल्फिश डिसीजन नहीं है, बल्कि खुद की केयर करने का एक ज़रूरी हिस्सा है। एक ऐसा दिन जब आप चीज़ों को परफेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप सुबह आराम से बैठे हैं, अपनी मर्जी से उठे हैं, हाथ में चाय है, कॉफ़ी है, फ़ोन नहीं है, कुछ मिनट आप खिड़की के पास बैठे हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपने मन की बात कर सकते हैं, जिन दोस्तों से बात नहीं हुई है उनसे बात कर सकते हैं, या कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक दिन आप अपने नाम कर सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है, यकीन मानिए मेरी बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: आकाशवाणी FM रेनबो, दीपिका के साथ हैं, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं अल्फा जैन।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
6: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
7: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
6: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
9: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
6: म्यूजिक मस्ती।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM रेनबो, आपके साथ मैं हूँ दीपिका। और प्रोग्राम यहाँ पर आप इस वक्त जो सुन रहे हैं उसका नाम है अल्फा जैन, जहाँ आज मैं आपसे कह रही हूँ कि कितना जरूरी है मेंटली और फिजिकली खुद को रिचार्ज करने के लिए थोड़ा सा पॉज लेना। कभी कभी जरूरी नहीं होता है कि आप हर नोटिफिकेशन का जवाब दें, हर ट्रेंड को जाने, इसलिए कभी कभी फोन को साइड में रख देना भी बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि कई बार दुनिया के सारे नोटिफिकेशंस को म्यूट करके आपको खुद को सुनना चाहिए। और ये कोई अचीवमेंट हासिल करने की जरूरत नहीं है आपको आराम करने के लिए कि ये हो जाएगा तब हम आराम करेंगे, या फिर ये सारी चीजें निपट जाए एक बार उसके बाद रेस्ट करेंगे। नहीं, बीच बीच में चुपचाप बैठना, रेस्ट करना एक हीलिंग होता है, वो हीलिंग जो आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करती है आने वाले वक्त में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए, अपने इमोशंस को समझने के लिए और एक बेहतर हेल्थ के लिए।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, ये है आकाशवाणी FM रेनबो 102.6, जहां आपके साथ जुड़ी हुई हूँ मैं दीपिका। और अभी बस वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन हाँ, जो बातें मैंने कही हैं उन्हें जरूर याद रखिएगा। भागती दौड़ती जिंदगी में से कुछ लम्हे चुराइएगा अपने लिए और आप खुद अंतर महसूस कर पाएंगे कि कितना फिजिकली और मेंटली आप खुद को रिचार्ज फील करेंगे, अपने काम करने के तरीके में बदलाव महसूस करेंगे। और ये ब्रेक आपका हक है, तो आपको ये वाला हक जो है ये खुद को देना ही चाहिए। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर मुझे इजाजत देनी होगी। 5 बजे से आपके साथ जुड़ेंगे शाहिद, लेकर आएंगे प्रोग्राम सिटी लाइट, शहर की हलचल से करवाएंगे आपको रूबरू। तो उनके साथ बनाए रखिएगा अपना साथ। यहाँ अभी दीपिका को इस प्रोग्राम में दीजिए इजाजत, जल्दी ही फिर होगी मुलाकात। जाते जाते वही कहूंगी जो हर बार कहती हूँ, हम सभी यूं ही हंसते हंसाते, गाते गुनगुनाते, जिंदगी के हर एहसास को गले लगाते, आने वाली खुशियों को सजाते और उम्मीदों से हाथ मिलाते रहेंगे। और दोबारा कभी सिर्फ यही मिलेंगे, क्योंकि यही अपना ठिकाना है, हमें और कहाँ जाना है।

शाम के 5 बज गए हैं। पेश है FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को

0: पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में बाढ़ और तेज बारिश की स्थिति की समीक्षा की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में भी तेज बारिश हो रही है। महिला एशिया कप क्रिकेट में आज शाम 8 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग से होगा। इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो

102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम शुरू हो गया है सैटेलाइट्स। मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद। तो सबसे पहले तो हम अपने सभी लिसनर्स को आज के बहुत ही स्पेशल दिन की, शिक्षक दिवस की, टीचर्स डे की शुभकामनाएं देते हैं। शिक्षक हमारे चरित्र निर्माता होते हैं, वे हमें अनुशासन, संस्कार, सत्य और कर्तव्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसे में सभी विद्यार्थी अपने शिक्षकों का सम्मान करते हुए उन्हें उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हैं। तो सभी को आज के शिक्षक दिवस, टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका बहुत बड़ा रोल है हमारी तरक्की में, हमारे डेवलपमेंट में।

मुसाफिर से ये एक्साइटिंग ट्रैक केके की शानदार आवाज, आप सुन रहे मेरी आवाज, मेरा नाम है शाहिद। 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो, दिल से दिल तक सिटी लाइट्स, आप सुन रहे हैं मेरे साथ। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए दिल्ली पुलिस ने स्ट्रिक्ट अरेंजमेंट कर लिए हैं। और सिक्योरिटी सिर्फ भारत मंडपम जो वेन्यू है वहीं तक ही लिमिटेड नहीं रहेगी, वीवीआईपीज के आने जाने वाले सारे रूट्स को भी सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा। 4000 से ज्यादा पुलिस पर्सनल्स सिक्योरिटी संभालेंगे, जिसमें से 1000 से ज्यादा जो ट्रैफिक पुलिस पर्सनल्स हैं वो प्रोमिनेंट रोड्स पर, क्रॉसिंग्स और जंक्शंस पर रहेंगे तैनात मुस्तैदी के साथ। वीवीआईपी काफिले के गुजरने के दौरान जरूरत के मुताबिक ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा। ये भी कोशिश रहेगी कि आम जनता का जो कम्यूट है, रोजाना का आना जाना है एक जगह से दूसरी जगह अपने ऑफिस या अपने काम के लिए, उनके काम पर, उनके आने जाने पर कम से कम इसका असर पड़े। आपको बता दें कि 12 से 13 सितंबर तक होने वाली ब्रिक्स समिट के दौरान दिल्ली में मल्टी लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रहेंगे इन द प्लेस, और आपको आगे बताएंगे कि किस किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं, जो भी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं इस बड़ी ब्रिक्स समिट के लिए।

18वें ब्रिक्स समिट जो होने जा रहा है दिल्ली के भारत मंडपम में 12-13 सितंबर, उसके लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है और तैयारियां चल रही हैं उसकी पूरी तरीके से मेकओवर और ग्रीनरी को लेकर। NDMC इस काम में पूरी तरीके से अपना काम कर रहा है, योगदान दे रहा है और दिल्ली पूरी तरीके से ग्रीन और ब्यूटिफिकेशन की तरफ जा रही है। मेजर 41 ऐसे कॉरिडोर्स हैं, 41 की रोड्स हैं जिनको 14 सर्कल में डिवाइड किया गया है, जहां पर पूरी तरीके से एक अच्छे तरीके से लैंडस्केपिंग और सफाई का काम हो रहा है और मेंटेनेंस किया जा रहा है राउंड द क्लॉक। इसके अलावा 17 ऐसे मेजर राउंड अबाउट्स हैं दिल्ली के, जहां पर 23 फ्लावर फाउंटेन्स सेटअप किए गए हैं और जहां पर 15 प्रोमिनेंट फूलों के बोर्ड्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं और स्पेशलाइज्ड डेकोरेशंस की जा रही है इन 17 बड़े राउंड अबाउट्स पर। इसके अलावा दिल्ली के कुछ पब्लिक स्पेसेस पर, लोकल पार्क्स और फुटपाथ पर और सेंट्रल वर्ज पर भी पूरी तरीके से हॉर्टिकल्चर विंग्स जो है वहां पर एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, उनको अपग्रेड किया जा रहा है, उसको खूबसूरत बनाया जा रहा है। साथ ही साथ लाइटिंग और ब्रांडिंग का भी काम चल रहा है। 350 इलेक्ट्रिकल पैनल बॉक्सेस लगाए जा रहे हैं मेजर रूट्स को, उनको कवर किया जा रहा है डेकोरेटिव फ्लेक्स स्टिकर्स के साथ। साथ ही वहां पर डिजिटल मीडिया स्क्रीन भी लगाए जा रहे हैं और आर्टिस्टिक म्यूरल्स भी लगाए जा रहे हैं कल्चरल हब्स के नजदीक, जैसे कि नेशनल म्यूजियम और तालकटोरा गार्डन। तो दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है वेलकम करने के लिए डिग्निटरीज का ब्रिक्स समिट के लिए, जो हो रही है 12-13 सितंबर दिल्ली के भारत मंडपम में।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
7: आज की रात मजा,
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
9: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।
10: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो, शाहिद के साथ सैटेलाइट्स। और ये जलवा लगेगा लगातार जारी 6 बजे तक, और ऐसे एक्साइटिंग ट्रैक्स मिलेंगे आपको बैक टू बैक। जलवा

बात सिटी लाइट्स में अगर मौसम की ना हो तो ये तो सही बात नहीं होगी। तो इसलिए अब मैं आगे बढ़ूं और आपको और कुछ अपडेट्स दूं सिटी की, तो मैं आपको बता दूं कि जन्माष्टमी के दिन कल दोपहर से जो शुरू हुई है बारिश, उसका जो सिलसिला वो आज सुबह से भी जारी है और अभी भी काफी तेज बारिश हो रही है दिल्ली में। हालांकि आकाशवाणी के स्टूडियो में जहां मैं बैठा हूं उसके पीछे भी मैं देख रहा हूं तो फिलहाल यहां तो नहीं लेकिन आसपास बारिश जरूर हो रही है और मूसलाधार बारिश ने गर्मी को धोकर एक तरफ डाल दिया है और ह्यूमिडिटी से भी बहुत ज्यादा राहत मिल चुकी है। इस राहत के साथ साथ जगह जगह ट्रैफिक जैम या वाटर लॉगिंग तो ऐसे में कॉमन है। लेकिन जो अच्छी बात हुई है वो ये कि एयर क्वालिटी जबरदस्त तरीके से इम्प्रूव हो चुकी है दिल्ली की, और आपको यकीन नहीं आएगा कि इस वक्त जो एयर क्वालिटी है वो है 56। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर 56 है इस वक्त दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और टेम्परेचर गिरकर के आ चुका है 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो दिल्ली इस वक्त काफी अच्छे मौसम का कर रही है अनुभव। यह है लाइव एयर क्वालिटी और वेदर को फोरकास्ट जो आईएमडी की तरफ से आ रहा है वो आपको बता देता हूं मैं अभी। फिलहाल जो आज आपने और कल जो बारिश देखी, जबरदस्त तूफानी बारिश, जबरदस्त बारिश जिसने पूरा मौसम बदल के रख दिया, आने वाले अगले 5 दिनों में फिलहाल जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि कोई बारिश नहीं होगी और अच्छी खासी धूप निकलने वाली है। हालांकि आज रात तक के लिए रेड अलर्ट है बारिश का, लेकिन आने वाले दिनों में नहीं है। तो अभी जो मौसम का बदलाव है उसको आप करते रहें एंजॉय, और साथ ही साथ करते रहें एंजॉय मेरे साथ सिटी लाइट्स की सिटी अपडेट्स और ये एक्साइटिंग बैक टू बैक ट्रैक्स। मेरा नाम है शाहिद।

गरम मसाला से ये गरम गरम ट्रैक सोनू निगम की आवाज आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, मेरा नाम है शाहिद। और अब क्या है कि जैसे जैसे मौसम बदलेगा ना, दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा मौसम के बदलने के साथ साथ। जैसे जैसे ठंड नजदीक आएगी पोल्यूशन भी बढ़ता चला जाएगा, और उसे बढ़ाने में सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार बनेगा वो बनेगा व्हीक्यूलर पोल्यूशन। सो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पहले से ही इसे कंट्रोल करने के लिए एक्शन शुरू कर चुकी है, और नॉर्थ रेंज में वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना चल रही गाड़ियों के खिलाफ थर्सडे को स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव भी चलाई जा चुकी है, और सिर्फ इसी रेंज में ही लगभग 250 चालान भी काटे गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है कि इस कैंपेन का मोटिव लोगों को परेशान करना नहीं, चालान काटना नहीं है, बल्कि मेन पर्पस लोगों को पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए अवेयर करना है। लेकिन अगर वो फिर भी रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्ती भी बरती जाएगी, और ये ऑपरेशन जारी भी रहेगा आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में। इसलिए आप भी, आपसे मैं कह रहा हूं, अपनी अपनी गाड़ियों की रेगुलर पोल्यूशन टेस्टिंग कराएं, और टेंशन फ्री पोल्यूशन फ्री

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम सैटेलाइट्स आप सुन रहे हैं शायद के साथ एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर यू।

एनिमल से बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, विशाल मिश्रा की आवाज, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, मेरा नाम है शाहिद। और उसके बाद आएगा एक और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, लेकिन उससे पहले एक अपडेट। गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए वेस्ट टू आर्ट इनिशिएटिव को प्रमोट कर रहा है। इस मिशन में कबाड़ से बनी हुई, यानी कि आपके जो फालतू सामान है उससे बनी हुई कलाकृतियां शहर के प्रमुख स्थानों की शोभा बढ़ाएंगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बताया है कि शहर को साफ, स्वच्छ, सुथरा बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है और लगातार काम जारी है इसे आपके लिए यानी जनता के लिए बेहतर से बेहतर बनाने की। इसी सीरीज में वेस्ट टू आर्ट को भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बढ़ावा दे रही है। इकट्ठे किए गए लोहे, एल्यूमिनियम, खराब टायर्स के जरिए वैरायटी ऑफ आर्टवर्क तैयार किए जा रहे हैं और फिर इन्हें शहर की कुछ प्रोमिनेंट स्पॉट्स पर भी लगाया जाएगा ताकि आप इनका आनंद भी ले सकें। फिलहाल मनोरंजन से बहुत ही खूबसूरत ट्रैक जोनिता गांधी और शाहिद मालिया की आवाज है। एंजॉय द ट्रैक।

Johnny De Gandhi, Shahid Malia, Sachi Mohabbat from the movie Man Marziya. आप सुन रहे मेरी आवाज, मेरा नाम है शाहिद और एक और अपडेट साउथ दिल्ली से। बेसिकली साउथ दिल्ली से नहीं, वहां का रेगुलर ट्रैफिक जाम जो सबसे बड़ी है प्रॉब्लम। साउथ दिल्ली को ट्रैफिक जाम से आजादी दिलाने के लिए मां आनंदमयी मार्ग से एमबी रोड तक 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर पर जल्द ही काम शुरू हो सकता है और इसकी मंजूरी पर आखिरी मोहर लगना भी लगभग अब तय है। तो ये ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए इसके तहत ओखला स्टेट मार्ग और मां आनंदमयी मार्ग की क्रॉसिंग पर क्राउन प्लाजा के पास करीब 400 मीटर लंबा अंडरपास बनाया जाएगा। मां आनंदमयी मार्ग के 5.5 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच को पूरी तरह से सिग्नल फ्री करने का है प्लान। अब जाहिर है सिग्नल फ्री होगा तो फिर ट्रैफिक तेज चलेगा, कंजेशन नहीं होगा, ट्रैफिक जाम नहीं होगा। लेकिन एक बात और भी साथ साथ हो सकती है कि लोग इसका फायदा उठा करके शायद अपनी गाड़ियों को तेज भगाएं, रूल्स फॉलो ना करें और स्पीड लिमिट पर कंट्रोल ना करें। तो इसलिए हमारी सबसे बस यही है गुजारिश हमेशा की तरह से कि आप जब अपनी गाड़ियां निकालते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि ट्रैफिक की सिचुएशन को समझते हुए ही आप बाहर निकलें गाड़ियां लेकर के। अदरवाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो का सदुपयोग करें। और अगर गाड़ी निकालना हो जरूरी तो याद रखें कि 2-व्हीलर पर आपको हेलमेट लगाना है जरूरी, आप भी जो राइड कर रहे हैं और पिलियन राइडर जो पीछे बैठे हैं, क्योंकि हेलमेट लगाने से आपकी हिफाजत आपकी है, सेफ्टी, सर सलामत तो जिंदगी सलामत। और जब आप कार लेकर के निकले अपना 4-व्हीलर तो फिर आप सीट बेल्ट जरूर लगाएं, उससे बहुत बड़ी सेफ्टी है। गाड़ी को स्पीड लिमिट में चलाएं और रूल्स रेगुलेशंस को जरूर जरूर फॉलो करते रहें। फिलहाल शायद इज नाउ साइनिंग ऑफ, आगे आ गई हैं लेकर मैसेज मसाला मिक्स, आपका फेवरेट इवनिंग शो मसालेदार मैसेजेस के साथ एम्ब्रीन खान। सो सिटी लाइट्स में शायद साथ इतना ही और ये एक्साइटिंग ट्रैक आपके लिए मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। टेक केयर, बाय बाय, सुनते रहें रेनबो दिल से दिल तक।

नमस्कार, पूरे छह बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच में स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल में बाढ़ और तेज बारिश की स्थिति की समीक्षा की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में तेज बारिश हो रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉ निखिल टंडन ने कहा है कि मोटापे से निपटने का सबसे अच्छा तरीका वजन बढ़ने से रोकना है। महिला एशिया कप क्रिकेट में आज शाम 8 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से होगा। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ, यानी FM रेनबो, दिल से दिल तक। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: 6:02 और पूरे 42 सेकंड हो गए हैं। जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक प्रोग्राम है आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स लेकर आ गई हूँ मैं आपकी अपनी एम्ब्रीन। जी हाँ दोस्तों, और आपको तो पता है ना हमारे इस शो में हमें खूब सारी बातें करनी होती हैं, खूब सारी अपनी दिल की जितनी चीज़ें हैं वो एक दूसरे तक पहुंचानी होती हैं, दिल के राजों को बताकर दिल को हल्का करना होता है ना। तो बस पहले तो सबसे पहले बताएं कैसे हैं आप, फटाफट बता दीजिए जल्दी से कि मैं बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, अच्छा हूँ, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ताकि इस दिल को करार आ जाए। ठीक है, और कहाँ मैसेज भेजना है 9868107070 पर जल्दी से बता दिया है। ठीक है, तो कहीं मत जाएं, बने रहें क्योंकि इस एक घंटे में हम बहुत बहुत बहुत दिलकश बातें करेंगे। तो जब दिलकश बातें होनी है तो बस उसके लिए तो बने रहना ना हमारे साथ। किसके साथ? आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक के साथ।

चुपके चुपके किसके दिल मिल रहे हैं, किसके मिल रहे हैं? चुपके चुपके हम सबके दिल मिल रहे हैं, और बल्कि चुपके चुपके नहीं, हमारे दिल मिल चुके हैं। आप सुन रही हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम है आपका अपना, मैसेज मसाला मिक्स। और भुवनेश का मैसेज आया है, देखा देखा ये होती हैं दिल से दिल की बातें, ये होती हैं दिल से दिल के जज्बात, के आपने फील किया ना। और देखिए आ गई मैं, ओए होए पक्की वाली दोस्ती हो गई है ना क्योंकि दिल से दिल के जज्बात मिलने लगे हैं ना अब इसलिए। और भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, और सब ने कह रहे हैं कि जी बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। और जिसका मैसेज है ये यशवंत जी का भी मैसेज आ चुका है, कहते हैं बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, अच्छी बात है, सब अच्छे अच्छे रहे तो बस मज़ा ही आ जाता है ना। और गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग किशन, नीलम का और किशन का, स्वाति और किशु का भी मैसेज आ चुका है आनंद विहार से, शो जो है सुन रहे हैं। और क्या लिखा है इन्होंने, शुभकामनाएं, हम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारी अटेंडेंस लगा दीजिए। ओ माय गॉड अटेंडेंस तो लग गई है, आज टीचर्स डे है भाई, तो उसमें अटेंडेंस आपने लगा दी और हमने भी अपनी अटेंडेंस लगा दी है। तो सबसे पहले तो ना शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस मैं आने वाली हूँ आज, अब चलो शुभकामनाएं, ये था कि मैसेज आया तो मैं जो प्रोग्राम अपना जो मैं कुछ पूछने वाली थी उसमें देती, कोई बात नहीं, अब जब हो गया है प्रोग्राम शुरू तो ठीक है। इन्होंने अटेंडेंस की बात बोली सब, तो मैंने सोचा अटेंडेंस लगा दी जाए अब। और संजय का भी मैसेज आ चुका है, गुना का भी मैसेज आ चुका है, बस थोड़ा सा इंतजार करिए, बस अभी टॉपिक पर आ रहे हैं, बात शुरू करने वाले हैं फटाफट। और पहला गाना ही मजा आ गया सुन के, मजा आ गया है ना विजेंद्रा, अच्छी बात है, जब सब साथ हो, समा अच्छा हो, गाने अच्छे हो, हमारी बातें प्यारी प्यारी हो, दिल से दिल मिलते हो, तो सारी चीजें ना अच्छी लगने लगती हैं। और किसका मैसेज है, जोया का मैसेज है, अच्छा इन्होंने जोया एक काम करती हूँ, अभी नहीं बोलती हूँ है ना, नहीं तो फिर तो पता चल जाएगा। मैं काम करती हूँ, जो भी तुमने बात कही है उसको मैं अगले वाले शो में ना, जो मेरा नेक्स्ट शो होगा मैसेज मसाला मिक्स में, पक्का पक्का पक्का ठीक है, यही इसी पर, मतलब ये बात मैं ज़रूर शेयर करूंगी और इसी बात पर करूंगी ठीक है, लेकिन आज नहीं, आज तो हम जिस बारे में बात करेंगे आज तो आपको उसका जवाब देना होगा, लेकिन नेक्स्ट के लिए बिल्कुल बिल्कुल पक्का, बस मैं भूल लेनी चाहिए ठीक है, समझ तो गए होंगे ना तुम, ये सरप्राइज रखा है मैंने इसलिए कि ये सरप्राइज अभी मेरे और दोस्तों को ना पता चल जाए ठीक है जोया। और ये मैसेज किसका है, लालगिरी, हेमलता, हिना और हर्षित, खुशी गोस्वामी, इन लोगों ने मैसेज किया है, सभी को जो है शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। और शो सुन रहे हैं, बस शो सुनते रहें और उसका आनंद उठाते रहें। और अब मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं ये पूछने जा रही हूँ, अच्छा ये लिखा है पहला गाना बहुत अच्छा चला है, बहुत खूबसूरत विजेंद्रा, ये फटाफट इन्होंने मैसेज और भेजा है और कहा है बिल्कुल सही बात है सही तो हम सब कहते हैं, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, बस कई बार वक्त ऐसा हो जाता है कि किसी को हमारी बातें समझ नहीं आती हैं तो बस वहीं दिल जो है ना गम में हो जाता है, लेकिन गम को हमें दूर रखना है, फिलहाल हम हैप्पी हैप्पी वाली बातें करें। अब बात पूछ ही ली जाए क्योंकि सब कह रहे हैं कि क्या बात पूछनी है आज, क्या क्या मतलब किस पर हमें आज जवाब देना है, जवाब नहीं बात करनी है जनाब, ये बताइए अच्छा मुझे आज, क्योंकि टीचर्स डे है, बहुत सारे बच्चे टीचर्स वगैरह बने, और हम लोगों को भी जब हम लोग स्कूल में रहे होंगे, हम लोगों ने जब स्टडी की थी तो

बहुत सारे टीचर्स हमें मिले है ना, और पढ़ाया जिन्होंने, कुछ बहुत फेवरेट भी रहे, किसी किसी से डर भी बहुत लगता था, हर तरह मतलब हर तरीके से टीचर्स तो हमारा अच्छा ही चाहते थे, तो बस हम ही कई बार कर जाते थे शरारते ये सब चीजें। तो अब मुझे ये बताइए चलिए कि आपके फेवरेट टीचर की ऐसी कौन सी बात है जो आज तक आपके दिल पर असर रखती है, चाहे वो टीचर आपको बहुत डांटती भी हो, चाहे वो आपकी फेवरेट फेवरेट फेवरेट रहती हो। तो बस मुझे ये बताना है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपके दिल पर आज तक असर रखती है, कि जब भी कभी टीचर्स की बात हो या हम अपने स्कूल टाइम को याद करें तो बस फलां टीचर जो है उसकी ये बात हमेशा आज तक मुझे मतलब याद रहती है, और बहुत मतलब जिसको सोच सोच कर भी आज तक मुझे बहुत अच्छा लगता है। जवाब जो है ना बहुत कम शब्दों में दें ताकि मैं सबके मैसेज शामिल कर सकूं, क्योंकि शिकवे शिकायतें के जो मैसेज होते हैं ना वो मेरे दिल पर जो है ना बहुत ज्यादा लगते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, तो इसलिए छोटे छोटे जवाब दें ताकि मैं फटाफट फटाफट सबके मैसेज शामिल करूं। ये मैं बार बार कह रही हूं, 9868107070 पर जल्दी से अपने नाम के साथ मैसेज छोटा सा जो भी है शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कीजिए, और मैं अपने दोस्तों तक सब चीजें आपकी ये सारी बातें सब शेयर करूंगी कि हाँ फला का मैसेज आया मेरे उस दोस्त का, उसको अपने उस टीचर की ये बात आज तक जो है याद है, और बस जब भी वो बात याद आती है तो दिल करता है कि बस टीचर से मिलने चले जाएं या फिर वही वक्त लौट कर आ जाए। सुनते रहे आकाशवाणी FM, रेनबो दिल से दिल तक।

6:20 और पूरे 44 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक का प्रोग्राम, आपका अपना मैसेज मसाला। मिक्स एम्ब्रीन आपके साथ है। और देखिए ना, मयूर विहार से रजत का मैसेज आया है। इन्होंने लिखा है कि एक बार मैं अपने स्कूल में लंच ले जाना भूल गया था और उस दिन मेरे टीचर ने, मतलब उन्होंने अपना लंच मुझे खाने को दे दिया। आज भी मैं ये बात मतलब याद करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओ माय गॉड, देखो वही वाली चीज़ें होती है ना कि जब आप अपनी वो वक्त, अपनी वो बातें याद करो तो ऐसा लगता है कि काश के हम या तो उसी वक्त में जो है ना वो चले जाएं, है ना, लगता है ना। और कितना ज़बरदस्त उन्होंने एक सीख दी कि अपना लंच आपको दिया, कितना सेक्रीफिकेशन वाली जो चीज़ है वो सिखाई। यहाँ पर जो एक शिक्षा मिली वो ये कि सेक्रीफाइस किया अपने लंच का, कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं भूखी या भूखा रह सकता हूँ, लेकिन जो सामने जो मेरा स्टूडेंट है, जिसका भविष्य जो है वो अब बनने जा रहा है, ठीक है, उसके साथ किसी भी तरीके की, चाहे वो खाने पीने के हो, चाहे वो पढ़ाई से, कोई भी हो, वो नहीं बर्दाश्त। आहा, क्या बात है। ये होती ना जो बातें याद आती हैं तो सच में दिल करता है कि बस उन बातों को याद करके या तो हम दोबारा से उन टीचर से मिलने जाएं और भी बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिले। और गाजियाबाद से किसका मैसेज आया है, या हरिओम पवार का ये कहते हैं कि मेरे संस्कृत के मास्टर जी थे और वो मेरे से अक्सर कहा करते थे कि आदमी की जो ब्यूटी होती है ना, वो बालों से, कपड़ों से या शरीर से नहीं होती है, उसकी जो सुंदरता है उसके बोलचाल, उसकी जुबान से होती है। और वो बात जब आज भी याद करते हैं तो उसे फॉलो करते हैं। क्या बात

क्या बात है, सही में आप किसी से अगर कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, दो शब्द भी जाए, तो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला जो है वो इंसान आपसे इतना इतना इम्प्रेस हो जाए कि दिल करे कि हम जो है इन्हें बार बार सुनते रहें, फॉलो करते रहें। ये खासियत, ये खूबी हमारी जुबान में होनी चाहिए वाकई। और देखिए कितनी अच्छी बात कही, क्योंकि कई बार होता है कि भाई बहुत ऐसे लोग हैं कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब वो बात करते हैं तो उनके अंदर इतना एटीट्यूड, इतना एटीट्यूड होता है, तो क्या हम उन्हें पसंद करते हैं? नहीं, हम तो दिल से, दिल की भाषा, दिल की जुबान, वो मीठी जुबान जिससे अपनाइयत का एहसास हो, उसको पसंद करते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखिए टीचर्स जो शिक्षा देगा वो मतलब काबिले तारीफ ही होगी। और ये नरेंद्र सोनी का मैसेज है, इन्होंने कहाँ से, पटियाला से लिखा है। गुड इवनिंग जी, एम्ब्रीन हमारी एक इंग्लिश की टीचर हुआ करती थी, बिना मैं, उनकी एक बात हमें हमेशा याद आती है, जब भी कोई उनसे कोई सवाल पूछता था तो वो पहले बोलती थी सॉरी, क्या बोला हर बात में वो सॉरी सॉरी क्या बोला बोला करती थी। कोई भी, ये तो बड़ा कॉमेडी है वाकई। ऐसी बातें भी बहुत याद रहती है कि अगर अब तुम बहुत सही बात कह रहे हो कि कभी कुछ पूछ रहे सॉरी क्या बोला, अब तो मुझे भी ऐसे ही लगेगा सॉरी क्या बोला आपने होता है, होता है। अच्छी बात है, टीचर्स के कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंस भी हम लोगों को हमेशा याद रहते हैं, कि जिन्हें बाद में हमें सोचकर बहुत ज्यादा हंसी आती है, लेकिन उस टाइम पे के अरे ये क्या अभी बोलने वाले हैं सॉरी क्या बोला, चलिए गए। अच्छी बात है, लेकिन उससे एक चीज शिक्षा तो मिलती है कि सॉरी जरूर बोला हमेशा, एक हम्बलिंग, एक झुकाव, ये वाली जो चीज होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है। आप डाउन टू अर्थ जितना रहेंगे, जितना इन अल्फाज से यूज टू रहेंगे, उतना ही जो है ना हर चीज बहुत अच्छी होती है। कम से कम लड़ाइयाँ वगैरह कुछ नहीं होती हैं। सॉरी है, थैंक्स है, बहुत अच्छे अल्फाज हैं जिनसे बातें जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, और कई प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया जाता है। ये इतने अच्छे वर्ड्स होते हैं। खैर, और ये मैसेज किसका है, हीरामणि का मैसेज है, छत्तीसगढ़ से। इन्होंने कहा है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। क्या बात है, मेरे प्रिय टीचर द्वारा कही ये बातें मुझे आज भी याद आती हैं, और आज मैं अपने बच्चों को यही कहता हूँ। बिल्कुल सही कहते हैं। देखिए टीचर्स ने जो आपको सिखाया वो आज आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। ये होती है एक टीचर की खासियत, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ियों को तैयार करती है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और ये किसका मैसेज है, टीचर्स डे की तो शुभकामनाएं भी दी हैं, और मेरठ से मैसेज है, किसका, रूपाक्षी का मैसेज है। ये कहती हैं कि मैं अपनी टीचर कौन सी, मुझे हमारी, अच्छा अपनी टीचर बहुत अच्छी लगती है मेरे को। उन्होंने यही सिखाया था कि याद करो, जब याद करने लग जाओगे तो सब कुछ याद होगा। और मेरे को उनसे बहुत डर भी लगता था, पर वो मेरी हिस्ट्री की टीचर थी और मैं सब कुछ, मतलब वो, ये जो है रूपाक्षी यही कहना चाह रही है कि कई बार चीज़ें याद नहीं होती थी, अब हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट वाकई में बहुत सारी चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं, और कई चीज़ें याद नहीं होती थी, लेकिन एक टीचर्स ने कितना अच्छा पॉजिटिव मोटिवेट किया कि याद करोगे तो सब कुछ याद होगा। और इससे देखिए उन्होंने आपके फोकस को बढ़ाया, आपके कंसंट्रेशन को जो है एक जगह वो करने को कहा कि जब आप कंसंट्रेट करेंगी तो सब कुछ याद होगा। ये होता है टीचर, ये होती है टीचर द्वारा दी हुई शिक्षा। क्या बात है, कितनी जबरदस्त बातें निकल कर आ रही है ना। ये आज भी अगर हम इन बातों को याद करें तो देखिए बहुत जरूरी है, जब हम फोकस करने लग जाएंगे, जैसे कि बताया कि याद करोगे तो याद होगा। एक जो मैसेज आया था, उन्होंने बोला कि मैं खाना लेकर जाना भूल गया और खाना दे दिया, जिससे शेयरिंग वाली एक शिक्षा जो है वो सामने आई। और बहुत भी जो अगर आप जाग जाओगे, खूब एजुकेशन की तरफ रहोगे तो खूब पाओगे, नहीं तो सोने वालों का कोई, मतलब कितनी सारी चीजें हम लोग आज याद कर रहे हैं अपने टीचर्स की, तो वो अगर हम बार बार सोचते रहे ना और बताते रहे, तो वाकई जो आने वाली पीढ़ी है और हम उसको बताएं, तो बहुत बहुत बहुत उनके लिए भी ये सब चीजें बहुत हेल्प हेल्प करेंगे, सच बता रहे हैं हम। और ये किसका है कि, नमस्कार जी, नमस्कार, मैसेज किसका है, ये यशवंत जी का मैसेज है। इन्होंने लिखा है कि हमारे पिताजी हमारे टीचर हैं, और कई बार बहुत देर से हमें स्कूल जैसे पहुंचने पर बहुत कड़ी शिक्षा देते थे। सही में टाइम का जो वैल्यू है वो सिखाया टीचर ने यहाँ पर, आपके फादर ने।
कि टाइम का कितना जबरदस्त वैल्यू है। कड़ी शिक्षा यही होती है कि भाई जैसी भी हैं जो भी हैं हर चीज़ वक्त पर होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैसेज आंशी शर्मा का है, इन्होंने लिखा है कि जब फेवरेट टीचर की बात आती है तो इन्होंने सुनीता मैम, वंदना मैम एंड मोहिनी मैम, काश कि ये सब टीचर सुन रहे हो

शिक्षा लेने की कि हमें भी जो है ना हार्ड वर्किंग जो है हार्ड वर्कर होना चाहिए। देखिए जितनी टीचर्स की हम अपने फेवरेट टीचर्स की यहाँ बात तो कर रहे हैं और उनकी वो बातें, तो उन बातों से आज भी अगर हम उन बातों को फॉलो कर रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं ना, ये हमारा रिविजन चल रहा है, रिवाइज करेंगे तो हमारे दिमाग में बैठेंगे, अरे हाँ फलां टीचर ये कहा करता था, अब किसी और फ्रेंड की टीचर कुछ बोल रही है तो अब हमारे दिमाग में आ गए कि नहीं हम ये भी ऐसा भी कर सकते हैं। याद करेंगे तो सारी चीजें याद होंगी और उस पर अमल करेंगे तो सब चीजों पर अमल करते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे। आप सुन रही हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक, और टीचर्स डे है क्योंकि, तो टीचर्स की कौन सी बातें जो आज भी हमें जब भी हम याद करें तो बस लगता है कि याद करते रहें, उन्हें फॉलो करें, वो टीचर्स भी हमारे सामने आ जाएं। तो जल्दी से शेयर कीजिए, 9868107070 पर एम्ब्रीन इंतजार कर रही है आपके मैसेज का। बस बार बार कह रही हूँ, मैसेज थोड़ा सा छोटा करें ताकि मैं जल्द से जल्द सारे मैसेज शामिल कर सकूं। बने रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, न मोभारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
6: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
5: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
6: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमोभारत, घंटों का सफर मिनटों में।
7: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
8: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
9: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
10: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
11: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
7: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
12: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक का प्रोग्राम, आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स। और जी टाइम क्या हो गया है, टाइम हो गया है 6:36, अब पूरे 5 सेकंड हो गए हैं। मैसेज भी बहुत सारे आ रहे हैं, सबको मुझे लगता है कि अपनी टीचर्स की सारी सारी बातें याद हैं, और सब बातें जो है ना अपनी जो शेयर कर रहे हैं वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। रेड्डी सर, वो उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैसेज किसका है, प्रवीण चौहान बता रहे हैं कि रेड्डी सर का जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत बढ़िया था, हमें कंप्यूटर कोडिंग वगैरह इतने आसान तरीके से समझाते हैं कि हर कोई समझ जाता था। ये भी बहुत कला होती है एक टीचर में कि किसी भी टिपिकल मुश्किल से मुश्किल बात को या चीज को इतने आसान तरीके से समझा दो कि स्टूडेंट्स के जो सर में है ना, एक मिनट में घुस जाए। और कई बार तो टीचर्स का पढ़ाने का जो तरीका है वाकई इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि जिस सब्जेक्ट से डर लगता है उस सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाती है ना। कई बार होता है ना, मैथ से डर लग रहा है, साइंस से, और पता चला टीचर इतना अच्छा, इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है। तो वाकई में टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका होता है वो उसकी जो तकदीर है ना वो बना देता है। पता चला मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, साइंस में नहीं है, मैथ्स साइंस में इंटरेस्ट बन गया, आहा आगे चलकर इतना इंटरेस्ट बना कि मेडिकल साइंस में चले गए। तो ये तरीका जो है ना, ये वाकई में बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, बहुत अच्छी बात। और ये मैसेज किसका है, ये मैसेज है जसपुर रोड से महबूब साहब, बेगम साहिबा और मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस और अलसी अंसारी का मैसेज है। इन्होंने खैर बहुत बड़ा मैसेज लिखा है, क्योंकि मैंने कहा था कि छोटे छोटे लिखिए, जल्दी जल्दी वो होगा, मैं ले सकूंगी। एक अच्छा शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं है बल्कि वो छात्र के भीतर छिपी हुई प्रतिभा को पहचानकर उसे निखारता है, और जीवन के सफर में आपका साथ होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, मैसेज बहुत बड़ा है आपका, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं वाकई में यही है कि जो एक अच्छा टीचर है उसकी जो पढ़ाई

है, जो वो पढ़ाता है, वो कभी जो है नहीं भूली जाती है, हमेशा याद रहती है और वो काम ही आती है, काम ही आती है सही में। और ये मैसेज किसका है? राजेश ढींगरा का मैसेज है। और राजेश जो है कह रहे कि मतलब उन्होंने संस्कृत आचार्य, अच्छा जो है संस्कृत, राजेश ढींगरा राजस्थान से संस्कृत आचार्य हैं। अच्छा, इन्हें भी शुभकामनाएं दीजिए। ओके ओके जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं टीचर्स डे पर आपको। बस ऐसी ही जो शुभकामनाएं हैं आपको मिलती रहें और आप जो है देश के भविष्य को खूब खूब खूब आगे बढ़ाते रहें और तरक्की करवाते रहें, यही यही आपके लिए कामनाएं और दुआएं हैं। और अगला मैसेज जी किसका है? ये मैसेज है, हाँ ये नाम नहीं लिखा, प्रवीण कुमार। नाम तो आपका मुझे मिल गया लेकिन मैसेज नहीं आया है, तो प्लीज़ मैसेज भी अपना शेयर करें, अपनी फेवरेट टीचर के बारे में बताएं कि कौन सी बात आज तक आपको याद रहती है जो दिल के करीब है। भुवनेश का भी मैसेज आ चुका है और इन्होंने अपनी टीचर, जो इनकी फेवरेट टीचर थी वो थी रिचा मैम। अच्छा, क्यों फेवरेट थी? क्योंकि चॉकलेट मिला करती थी इनके बर्थडे पर। ये भी बहुत अच्छा लगता है वाकई में, क्योंकि जब साल में एक दिन हमारा अपना वो स्पेशल डे होता है बर्थडे, और उस बर्थडे पर जब हमारी टीचर, वो भी फेवरेट टीचर, हमें कुछ चॉकलेट दे या कुछ अच्छी अच्छी बातें हमको बताए या आशीर्वाद दे, तो कितनी दिल को खुशी होती है ना। समझ सकती हूँ भुवनेश, फेवरेट टीचर है ना, समझ सकती हूँ, अच्छी बात है। और ये किसका मैसेज है? देहरादून से आलोक परवार पंवार और मिनी का मैसेज है, शिक्षक दिवस की पूरी एफएम टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। गुरु से बढ़कर कोई नहीं, माता पिता हो या फिर माता पिता और फिर शिक्षक, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। वाकई गुरु का वो दर्जा होता है हमारी ज़िंदगी में कि जिसकी हम, जिसके बारे में शायद कुछ बोलें वो शब्द भी कम पड़ जाएं, वो शब्द भी कम पड़ जाएं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी को संवारने में, ज़िंदगी को बनाने में शिक्षक की बहुत बहुत बहुत भूमिका होती है। और सबसे पहले शिक्षक कौन है वो तो सभी को पता है, वो हमारे घर में सबसे पहला स्कूल हमारा घर, सबसे पहली शिक्षक हमारी माँ, और उसके बाद जो हमें स्कूल से जो शिक्षक, शिक्षकों से जो ट्रेनिंग मिलती है, जो पढ़ाई, जो हमें ऐसी बे, जिसे बोलते हैं ना बेशकीमती चीज़ मिलती है, उसकी तो हम, जिसे बोलते हैं ना कि अल्फाज भी हमारे कम पड़ जाएं शुक्र शुक्र करने के। क्या बात है, आज तो मतलब मज़ा आ गया, अच्छा लग रहा है आप सबकी बातें सुनकर। वाकई में बहुत प्राउड फील हो रहा है कि टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं और कितनी मेहनत करके देश के भविष्य को वो आगे पहुंचाने का और देश की तरक्की करवाने में कितना कितना कितना ज़बरदस्त योगदान होता है, अच्छी बात है। और ये मैसेज किसका है? गुड इवनिंग जी, मोहम्मद इम्तियाज का मैसेज है, कीर्ति नगर से। कहते हैं मैं 8th में पढ़ रहा था और सेकेंड टर्म के पेपर नहीं दिए, 4 महीने में स्कूल से दूर, और हमारी प्रिंसिपल मैम अमरजीत, अच्छा जो भी हैं, नाम समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने कहा अभी मैं आपके पूरे मैसेज को दोबारा से पढ़ती हूँ, क्योंकि वो इतना इतना मिला हुआ है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोशिश करती हूँ। तो आप सब मैसेज करते रहिए, बताइए जल्दी से फटाफट, क्योंकि 6:41 हो गए हैं, मुझे मैसेजेस का इंतज़ार है आपके कि कौन कौन अपने टीचर्स की वो बात जो आज तक आप याद करें वो दिल के करीब है और उसे आप फॉलो करते हैं। फटाफट मैसेज कीजिए प्लीज़, थोड़ा सा छोटा मैसेज कीजिए ताकि मैं सबके मैसेज शामिल कर सकूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ सुनते रहें आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशन।

0: Productions.
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, और अमरीन आपके साथ है। आपके मैसेज, आपके जो आज दिल की जो वो बातें हैं ना, वो सब आज मेरे पास हैं। और मेरे पास क्या है, सब इंजॉय कर रहे हैं। पता है जो मैसेज आ रहे हैं उसमें ये भी मैसेज आ रहे हैं कि हमारे जितने भी दोस्त हैं, अपने जितने आरजे हमारी, ये हमारी जितनी भी ये एफएम रेनबो की पूरी जितनी फैमिली है, जितने दोस्तों के सबके मैसेज आ रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जो जो अपने टीचर्स के बारे में बता रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं आज शो को। क्या बात है, ऐसे ही बस इंजॉय करते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, यही तो अच्छा लगता है। और क्या है जिंदगी में, क्या है, बस इधर से उधर अगर रूठे रहो, मनाते रहो सब एक दूसरे को, तो कुछ नहीं रखा। ऐसी बातें कीजिए ना कि जिससे दिल जो है वो हर टाइम खुश रहे। अगर हर टाइम नहीं, लेकिन बनाया जा सकता है, उस समा को बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है ना। अच्छा, जो मैसेज आया था मोहम्मद इम्तियाज का, वो बीच में छूट गया था क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। ये मैसेज में उन्होंने लिखा है कि मैं 8th में जब पढ़ रहा था और सेकंड टर्म के पेपर किसी वजह से, किसी कारणवश जो है वो छूटे और मैं स्कूल से दूर हो गया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल मैम थी उस स्कूल की, उन्होंने कहा मेरे फादर से दोबारा गए होंगे कि ये लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत तेज है, तो हम फिर से जो है इसको एडमिट जो है वो कर लेते हैं, ले लेते हैं। और फिर दोबारा से उन्होंने मुझे चांस दिया, मुझे लिया बीच में, और फिर जो है मैं पास हुआ। तो आज जो है जब मैं मतलब इस बात को याद कर, तो वाकई में बहुत खुशी होती है। ये होते हैं टीचर्स कि किसी भी बच्चे का जो भविष्य है ना वो अंधकार में ना हो, किसी रीजन से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन दोबारा से मौका दिया, मौका दिया, और मौका भी क्या दिया, स्टूडेंट जो था, जो उन्होंने बोला अपने आप को और दोबारा पढ़ने की अपनी जो भी है, जो भी रीजन था, वो अपनी जो इच्छा है वो जाहिर की, और उस इच्छा को टीचर ने फौरन फौरन फौरन उसको जो है कैश किया। यही तो होती है बात टीचर्स की, अच्छा लगा ना। और शिक्षक दिवस की बहुत बहुत आप सबको दिल से बधाई, और मीठी मीठी बातें हमें हमारे टीचर्स की खूब याद रहती हैं, और इंग्लिश के टीचर ने हमें खूब इंग्लिश सिखाई है, बंसल कुमार, क्या बात है। एक लैंग्वेज का सीखना और जब टीचर सिखाता है, वाकई में बहुत बहुत काबिल तारीफ बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सुनीता शर्मा का भी मैसेज आ चुका है, हैप्पी टीचर्स डे सभी को, अच्छी बात। और हमारी संस्कृत की टीचर हुआ करती थी, उन्होंने बताया स्नेह वाधवा, अच्छा आपकी संस्कृत की थी, आपके टीचर के नाम से याद आया तो मुझे भी याद आ गया, हमारी भी टीचर हुआ करती थी स्नेह वाधवा, लेकिन वो हिंदी की थी, बहुत पसंद थी, बहुत गुस्से वाली थी, मेरी भी स्नेह वाधवा मैम बहुत गुस्से वाली थी लेकिन प्यार भी बहुत करती थी, ये बात है। ये तो बिल्कुल सेम सेम हो गया, बस सब्जेक्ट का फर्क हो गया, आपको संस्कृत पढ़ाती थी, मुझे हिंदी पढ़ाती थी, तो वो जो है वो बहुत प्यार करती थी, और हमें सही रास्ते पर भी उन्होंने चलना सिखाया। यही तो चीज़ है, टीचर हमेशा अच्छी ही बातें सिखाता है और फॉलो करने के लिए बोलता है। और ये सुदर्शन मुक्ति का, अनीता और सिमरन मुक्ति का मैसेज है, लिखा है हमारी ओर से सभी को बहुत बहुत शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और माता पिता पहले गुरु होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, माता पिता तो पहले गुरु होते हैं, और अच्छे संस्कार अनमोल चीजें, अनमोल चीज जो है हमें सबसे पहले जो हमारे गुरु माता पिता होते हैं उन्हीं से मिलती हैं, जो हमें फिर उसके बाद जो है वो शिक्षक से हमें हर एक चीज़ मिलती है। अच्छी बात, बिल्कुल, ये तो मैं बार बार कह रही हूँ कि पहला स्कूल हमारा घर, पहले शिक्षक हमारे माता पिता, उसके बाद जो हमारे टीचर्स,

0: सब बहुत अच्छी ही शिक्षा देते हैं, जिससे हमारा जो वो है ना भविष्य सबका, वो बहुत अच्छे से अच्छा बन सके। वेस्ट बंगाल से मैसेज है शुक्ला का, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शुक्ला बाला। और आपने तो बताया नहीं, आप भी तो बताइए कि अपनी टीचर्स की कौन सी ऐसी बात आप याद करते हैं जो आज तक आपके दिल को जो है ना वो छू लेती है। सुनते रहे आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम, आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स जो है वो चल रहा है, आ रहा है और हमेशा चलता ही रहेगा। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। बस इस ब्रेक के बाद ही वाला गाना, आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक सुनते रहिए।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

जी हाँ दोस्तों, देखिए आज वक्त जो है कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला ना। ऐसे ऐसे बातें हुई, बातों में बातें, बातों में बातें, तो वक्त जो है ऐसी गुजर जाता है जब प्यारी बातें होती हैं। और बात चल रही है जब बच्चों के भविष्य की और शिक्षा की, तो बस जितनी जितना टाइम होना उतना ही कम पड़ जाए। मैं फिलहाल, मुझे अमरीन को दीजिए इजाजत। आज बहुत अच्छी बातें रही, मज़ा आ गया अपने टीचर्स की बातों को याद करके। मुझे भी अपनी टीचर्स की बहुत बातें याद आ रही थी, अच्छा लग रहा था। कई बातें आपकी और मेरी बिल्कुल सेम सेम हो रही थी, तो मुझे भी अपनी चीज़ें याद आ रही थी। तो अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास का खास ख्याल रखिए, और हमेशा फोकस जो है अपनी पढ़ाई पर, जो भी स्टूडेंट्स हैं सुन रहे हैं, वो करते रहिए। जो सफलता है ना, सफलता वो हमेशा जो है आपके हाथ ही लगेगी, कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि मेहनत जो है ना, हमेशा मेहनत में कामयाबी ही मिलती है। कभी ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम डिसअपॉइंट हो जाएं, कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो हमेशा हमेशा हमेशा काम ही आती है। फिलहाल अमरीन को दीजिए इजाजत, आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग,

0: पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: Welcome back. You are tuned into Saturday Sizzlers with me, Suhasini. And time is actually running away. But we have few more messages. And we have a message from Tulsipur, Nepal, from Dinesh Kumar Bhandari says, live program, like it. And of course, you... And also, let's move on to the next track that's coming up. Coming up next is Kylie Minogue singing Can't Get You Out of My Head. And the Chainsmokers singing Paris.

नमस्कार, पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक महाकुंभ स्टेट टीचर्स अवार्ड में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 118 शिक्षकों को सम्मानित किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत कल नई दिल्ली में मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से असम, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचआईए ने केरलम के त्रिशूर में कल रात एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले कॉलेज के 8 विद्यार्थियों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन विकियोंग से होगा। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ दोस्तों, आपकी वाणी आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम आपका अपना कौन सा, म्यूजिक मस्ती। और जी हाँ, म्यूजिक मस्ती में मैं यानी एम्ब्रीन आपके साथ रहेगी इस एक घंटे में। तो बस कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ यानी आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक सुन रहे हैं आप और प्रोग्राम है आपका अपना म्यूजिक मस्ती और एम्ब्रीन आपके साथ है। देखिए ना, जब हम सब मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, बातें होती हैं, म्यूजिक भी होता है, एंटरटेनमेंट होता है, तो वक्त का पता ही नहीं चलता, कैसे भाग जाता है वक्त फटाफट। तो ऐसे ही होता है और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम सब बैठ कर बात करें, अपनी कुछ बातें आप शेयर करें, कुछ मैं अपनी शेयर करूं और साथ में कुछ एंटरटेनमेंट होता रहे, तो खुशी का जो वो लम्हा होता है ना, वो हमें फौरन बटोरते रहना चाहिए। इसलिए हमेशा कहती रहती हूँ कि अच्छे लम्हे, जो भी चीज़ें, उनको इंजॉय कीजिए, ताकि हमें बाद में कभी भी किसी भी चीज़ का मलाल ना हो। सुनते रहें आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

8:27 और पूरे 50 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। और एक जो है रक्तदान के लिए एक बहुत ही तत्काल अपील की गई है। एक 15 वर्षीय बच्ची को सफदरजंग अस्पताल में जो है तत्काल 2 यूनिट रक्त की आवश्यकता है। तो किसी भी ब्लड ग्रुप के डोनर रक्तदान कर सकते हैं। और रक्तदान करने या अधिक जानकारी के लिए आप जो है जो नंबर मैं बता रही हूँ उससे संपर्क करें प्लीज़, 8267827088। आई रिपीट, 8267827088। दोस्तों आपका रक्तदान किसी की भी जिंदगी बचाने में ना मददगार हो सकता है, साबित हो सकता है। तो 15 वर्षीय बच्ची की

0: एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्च है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपको बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे और कहते क्या थे, करते थे और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

0: है बधाई जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

8:44 अब पूरे 32 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक और म्यूजिक मस्ती में अमरीन आपके साथ है, आपके पास है और आप मुझे मालूम है कि गानों को पूरा पूरा पूरा एंजॉय कर रहे हैं, कर रहे हैं ना एंजॉय। तो बस हमारा काम है कि हम जो है हर लम्हे को एंजॉय करें और उसको एक यादगार बना दें। तो बस बने रहिए हमारे साथ यानी आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक के साथ।

कहा था कि एक 15 वर्षीय बच्ची को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में तत्काल 2 यूनिट रक्त की आवश्यकता है। तो किसी भी ब्लड ग्रुप के डोनर रक्तदान कर सकते हैं, और रक्तदान करने या अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, 826-78-270-88। मैं फिर से बता रही हूँ, 826-78-270-88। भैया, आपका रक्तदान किसी की भी जिंदगी बचाने में मदद कर सकता है। सुनते रहें आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। और फिलहाल एम्ब्रीन के भी जाने का, कहाँ, घर जाने का वक्त आ गया है। जब तक जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे, हमेशा यही कहती हूँ। तब तक वही अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास का खास ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं। सुनिए इस वक्त की अहम खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में कहा कि महाविद्यालय ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक महाकुंभ स्टेट टीचर्स अवार्ड में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 118 शिक्षकों को सम्मानित किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत कल नई दिल्ली में मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज उत्तर मुंबई के कांदिवली में दूसरे कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से असम, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनवीए ने भारत की पहुंच और लाभ साझाकरण एबीएस ढांचे के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके अंतर्गत कुल एबीएस वितरण 200 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने केरलम के त्रिशूर में कल रात एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले कॉलेज के 8 विद्यार्थियों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिए हैं और मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ।

जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और दिल से दिल तक के सफर में मैं नबिता हूँ आपके साथ, क्योंकि आपकी याद आती रही।

दिल कहा लिख ही देना चाहिए, कह भी देना चाहिए, बात कहने से तो बात बनती है। वैसे दिल वालों की बात अलग है, आंखों से कहते हैं, आंखों से पढ़ते हैं, कुछ कहने सुनने की जरूरत कहाँ रहती है।

0: एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: और दोस्तों, अब आपसे एक जरूरी अपील। एक 15 वर्षीय बच्चे की सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में तत्काल 2 यूनिट रक्त की आवश्यकता है। किसी भी ब्लड ग्रुप के डोनर रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करने के लिए नंबर है 8267827088। एक बार फिर नंबर 8267827088। याद रखिए, आपका रक्तदान किसी की जिंदगी बचाने में मदद कर सकता है।

जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। हैं एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक। मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में। एहसास आपके, अल्फाज हमारे, नगमे सदाबहार, क्योंकि आपकी याद आती रही।

दिलवाले रुकते कहाँ हैं जमाने के रुकने से। नहीं, दिल जो कहता है बस उसी राह पे चल पड़ते हैं। मोहब्बत की राह जिंदगी को खुशनुमा बनाती है, खूबसूरत बनाती है। रंगों से भर देती है।

0: दिल से दिल तक का सफर इतना मुश्किल भी नहीं होता है ना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्चा, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
7: ठीक है?
6: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR खर्चा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
4: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
8: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
4: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
5: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
4: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
5: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
4: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
5: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
4: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
5: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
0: और दोस्तों एक अपील फिर से दोहरा रही हूँ। एक 15 साल की बच्ची को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में तत्काल 2 यूनिट रक्त की आवश्यकता है। किसी भी ब्लड ग्रुप के डोनर रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने या अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8267827088 पर। नंबर एक बार फिर याद रखें 8267827088। आपका रक्तदान किसी की जिंदगी बचाने में मदद कर सकता है।

प्यार तो हम सब करते हैं एक दूसरे से, रिश्ते नातों की डोर इसी प्यार की कड़ी से तो जुड़ी है। लेकिन जब दो दल एक सफर पर एक मंजिल के लिए साथ साथ चल पड़े तो एहसास कुछ खास है।

0: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: मंगल भवन मंगल हारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

और दोस्तों वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल से दिल मिलाते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मिलेंगे आपसे भी एक घंटे बाद रंगे महफिल लेकर। तो रहिएगा हमारे साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम बैक, यू ट्यून टू द वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज एंड द टाइम बाय स्टील क्लॉक इज 10:02 एंड 15 सेकंड्स। द नाइट इज रनिंग अवे एंड द प्रोग्राम यू ट्यून्ड इनटू इज इन द ग्रूव विद मी सुहासिनी। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द नेवर एंडिंग सॉन्ग बाय कॉनन ग्रे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। कैसे डिपॉजिट करेंगे? डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंदे पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। आप हैं FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफ़र में। अगर तलाश करूँ कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूँ कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आँखें हमारी कहाँ से लाएगा।

मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो, है ना। चलिए, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल से दिल मिलाते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, और लीजिए अब सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की द्विपक्षीय यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंचे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश के आसार। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। अमरीकी सेना ने कहा है कि क्षेत्रीय जल क्षेत्र में 2 अमरीकी नौसैनिक युद्धपोतों पर IRGC के बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले के बाद उन्होंने 3 ईरानी कच्चे तेल के टैंकरों पर हमला किया। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 12:03:09। और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम जीरो आर शो। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो लीजिए ये कुछ खूबसूरत से गीत आप सभी के लिए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6।

0: but
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर और लीजिए अब पेश है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की द्विपक्षीय यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंचे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों बिहार पूर्वी राजस्थान दिल्ली और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश के आसार। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। अमरीकी सेना ने कहा है कि क्षेत्रीय जल

क्षेत्र में दो अमरीकी नौसैनिक युद्धपोतों पर IRGC के बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले के बाद उन्होंने 3 ईरानी कच्चे तेल के टैंकरों पर हमला किया। और अब कुछ समाचार खेल से। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, श्रोता सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 MHz पर। और लीजिए, अब आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम सुहानी रात। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी आपके साथ, आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो साथियों, कुछ खूबसूरत से प्यारे से गीत आपके लिए, बातें ज्यादा ना करते हुए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

लीजिए पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया वैश्विक अनिश्चितता के बीच जीडीपी में 7.8% की वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की द्विपक्षीय यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंचे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश के आसार। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। अमरीकी सेना ने कहा है कि क्षेत्रीय जल क्षेत्र में 2 अमरीकी नौसैनिक युद्धपोतों पर IRGC के बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले के बाद उन्होंने 3 ईरानी कच्चे तेल के टैंकरों पर हमला किया। और अब खेल समाचार। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्रोता, कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आप सुन रहे थे बुलाए न बने। मुझे यानी अलमास रजा को दीजिए अनुमति, 3 बजे आपके साथ होंगी सुप्रिया। आप सभी को मेरा नमस्कार।

लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया वैश्विक अनिश्चितता के बीच जीडीपी में 7.8% की वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की द्विपक्षीय यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंचे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश के आसार। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। अमरीकी सेना ने कहा है कि क्षेत्रीय जल क्षेत्र में 2 अमरीकी नौसैनिक युद्धपोतों पर IRGC के बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले के बाद उन्होंने 3 ईरानी कच्चे तेल के टैंकरों पर हमला किया। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी

0: करता है सलाम, इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बाद जीडीपी में 7.8% की वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त कर किया गया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह 4 दिन की द्विपक्षीय यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंचे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश के आसार। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात में खेले गए 2020 एशियाई कप में ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आय हाय,
1: तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की

फुलवारी तक। हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: Dunga X.
1: नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बाद बीच जीडीपी में 7.8% की वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। उत्तर पूर्व के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की द्विपक्षीय यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंचे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज बारिश के आसार। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बने। अमेरिकी सेना ने ईरान के कच्चे तेल के 3 टैंकरों पर हमला किया। कहा, क्षेत्रीय जल क्षेत्र में 2 अमेरिकी नौसैनिक युद्ध पोतों पर IRGC के बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले के बाद कार्रवाई की गई है। और खेल जगत की बात करें तो महिला क्रिकेट में 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।